एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज वीरवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 8 अक्टूबर सन 2026। प्रातः के 5:58 और 42 सेकंड हुए हैं। अब हमारा आज का प्रसारण शुरू होता है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन 10 तारीख तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। IMC 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। ये डिजिटल नवाचार अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
2: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
1: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा भी कल काशी में सम्पन्न हो गई है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिन का शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने तथा वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाने के उपायों का आह्वान किया गया है। 15 भागीदार देशों द्वारा हस्ताक्षरित ये संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR ने कल रात जारी किया। बयान में देशों ने बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों को समाप्त करने सहित संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन को खत्म करने के उपाय करने का आह्वान किया। आज वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है इंडियन एयरफोर्स इनफेलेबल इम्प्रेटेबल एंड प्रिसाइज, यानी अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कैरोलिना मुचावो का सामना निकोला बार्तुनकोवा से होगा, वहीं मीरा एंड्रीवा का मुकाबला एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा से होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

अहंकार एक ऐसा बोझ है जिसे मनुष्य स्वयं उठाता है और फिर उसी बोझ से परेशान भी होता है। हर बात अपने अनुसार हो, हर जगह अपनी प्रशंसा मिले और हर व्यक्ति हमारी बात माने, ये अपेक्षा मन को बेचैन करती रहती है। इसके विपरीत विनम्रता मन को हल्का करती है। वह हमें सिखाती है कि हर बात पर स्वयं को सही साबित करना जरूरी नहीं और हर सफलता का श्रेय अकेले लेना भी उचित नहीं होता। कभी किसी से सीख लेना, कभी अपनी गलती स्वीकार करना और कभी किसी दूसरे की सफलता पर खुशी मनाना, ये छोटे छोटे भाव मन को सुंदर बनाते हैं। जब मैं थोड़ा कम हो जाता है तो हम का भाव बढ़ता है और जहाँ अपनापन बढ़ता है वहीं जीवन में सच्ची शांति आने लगती है।

आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला मनुष्य दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को बदलने का प्रयास करता है। वह दूसरों में दोष खोजने से पहले अपने भीतर झांकता है और धीरे धीरे उसके जीवन में एक अनंत शांति का अनुभव होने लगता है।

प्रेम भक्ति वह पवित्र और अनन्य मार्ग है जिसमें साधक बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के केवल प्रेम के भाव से अपने आराध्य में लीन रहता है।

तो श्रोताओ, ये थी भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना की अंतिम प्रस्तुति। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

भरत के शील तथा यश को निर्मल चंद्रमा की संज्ञा देते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने कवि की सुबुद्धि को चकोरी के समान माना है। श्री रामचंद्र से भरत के गुण छिपे नहीं हैं, जो उन्हें धर्म की धुरी धारण करने वाला मानते हैं। पिता की अकाल मृत्यु से उत्पन्न स्थिति में राज्य का कार्यभार, कुल की प्रतिष्ठा, धर्म की मर्यादा, पृथ्वी, धन तथा घर परिवार का पालन करके ही सूर्य कुल की रक्षा की जा सकती है। अनुज भरत के लिए श्री राम की आज्ञा है कि वे ऐसा ही करें।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारी आज की प्रसारण सभा में प्रसारित व रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओ, अब से थोड़ी देर बाद सुबह ठीक 7:10 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुहानी। सुबह 8:00 आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे। 8:30 पर सुनेगा लोक संगीत का कार्यक्रम हिम गुंजन। 9:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण किया जाएगा, जिसे आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। सुबह 9:50 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 10:00 सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां। पहाड़ों के सुर लोकगीतों का ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 10:30 पर। 11:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे और 11:05 पर आज आप सुनेंगे पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 11:30 पर प्रसारित किया जाएगा। 12:00 समय रहता है कार्यक्रम सैनिकों के लिए का। 12:30 पर आज बहनें सुनेंगी अपना साप्ताहिक कार्यक्रम मिंजरा। 1:10 से लेकर 5:00 तक आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। 5:10 पर आपको सुनवाएंगे फिल्मों से कुछ चुनिंदा भजन। 5:25 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा मंच। 6:05 पर सुनना ना भूलेगा सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरमई सांझ। 6:30 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां। 7:10 पर किसान व बागबान भाई बहन सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुन सकते हैं 8:00। देशभक्ति गीत आपको सुनवाएंगे 8:30 पर। 8:45 पर समाचार संध्या और 9:00 News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 9:15 पर एक ही कलाकार के अंतर्गत आज आप सुनेंगे अभिनेता अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। 9:30 पर आनंद लीजिएगा रंगे गजल का। 10:00 सुनिएगा हिमाचली लोकगीत और 10:30 पर पुराने फिल्मों से गीत आपको सुनवाए जाएंगे। कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। 6:00 और 7:45 पर समाचार प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। कार्यक्रमों की रूपरेखा में बस इतना ही। हम आकाशवाणी

के धर्मशाला के इंट्रो से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः 25-वर्षीयं सेवासङ्कल्पं सम्मानयितुम् एकः अवसरः अस्ति। भारतर्तु विज्ञानविभागेन अद्य केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तराखण्ड, पश्चिमबंगाल, सिक्किम चेत्येतेषां स्थलानां केषुचित् क्षेत्रेषु प्रबलवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ ये आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। IMC 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। ये डिजिटल नवाचार अगली पीढ़ी कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। इनमें 5G और 6G, अगली पीढ़ी के AI नेटवर्क, सेमीकंडक्टर, गैर स्थलीय नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्वांटम संचार, उद्यम परिवर्तन, सर्कुलर इकोनॉमी और ESG तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण शामिल हैं। आयोजन में 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप तथा 900 विचारक और विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा कल काशी में संपन्न हुई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में आयोजित समापन समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में काशी और पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुए बदलाव देश के सामने हैं। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने तथा वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाने के उपाय करने का आह्वान किया गया है। 15 भागीदार अर्थव्यवस्थाओं द्वारा हस्ताक्षरित ये संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR ने कल रात जारी किया। बयान में देशों ने बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों को समाप्त करने सहित संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन को खत्म करने के उपाय करने का आह्वान किया। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिसमें पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि उसने रियाद के उत्तर में एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक दिया और यमन की राजधानी सना में उस प्रक्षेपण स्थल को नष्ट कर दिया, जिसका इस्तेमाल सऊदी राजधानी को निशाना बनाने के लिए किया गया था। इस बीच हूती अधिकारियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख इलाकों धुबाब अल जदीद और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। आज वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है इंडियन एयरफोर्स इनफेलिबल इनपेंट्रेबल एंड प्रिसाइज, यानी अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि इस वर्ष एक्सरसाइज वायु

0: सुबह सुहानी।
1: रात की ढलती हुई चांदनी और ठंडी हवाओं की सरगम के बाद अब वक्त हो चला है सूरज की पहली किरण के साथ एक नई उम्मीद जगाने का। आइए इस बेहद खूबसूरत और सुहानी सुबह का स्वागत एक प्यारी सी मुस्कान के साथ करते हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरह हमारी ये सुबह खूबसूरत होती है ना, वही हमारे पूरे दिन का रूप तय करती है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुबह सुहानी में, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सचिता। हम जानते हैं दोस्तों कि सुबह सुबह काम का कितना बोझ होता है, कितनी भागदौड़ रहती है, लेकिन फिक्र मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका काम चाहे किचन में हो, घर के किसी भी कोने में हो, ऑफिस के टेबल पर हो, खेत खलियानों में हो या फिर सफर में, आप बड़ी ही आसानी से हमें सुन सकते हैं। और इतनी भागदौड़ में भी आप हमारे लिए समय निकालते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोतो, वैसे रेडियो सुनने से तो आपका काम रुकने वाला नहीं है और ना ही हमारा ये कार्यक्रम रुकने वाला है। आइए मिलकर अगले कुछ पलों को शानदार बनाते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं इस सुविचार के साथ। श्रोतो, जो बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करना सीखिए, जो बदल सकते हैं उसके लिए प्रयास कीजिए, और इन दोनों के बीच का अंतर समझ लेना ही जीवन की बड़ी समझदारी है। जी हाँ श्रोताओ, जीवन में हर परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं होती। कुछ बातें ऐसी होंगी जिन्हें हमें स्वीकार करना पड़ेगा बिना शिकायत, बिना पछतावे के, लेकिन जहाँ बदलाव की गुंजाइश हो वहाँ सिर्फ इंतजार करने की बजाय एक छोटा सा प्रयास भी जरूरी होता है, क्योंकि समझदारी इस बात में नहीं कि हम हर चीज़ को अपने मुताबिक कर लें, बल्कि समझदारी तो ये पहचानने में है कि कहाँ प्रयास करना है और कहाँ मन को समझा कर आगे बढ़ जाना है। जी हाँ श्रोताओ, क्योंकि जिंदगी दो पल की है और इस जिंदगी को हम किस तरह से मुस्कुरा कर जीते हैं ये हम पर ही निर्भर करता है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और आपकी इस सुबह को और भी सुहाना बनाते हैं।

आकाशवाणी धर्मशाला से श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं सुबह सुहानी। और आज 8 अक्टूबर है। आइए जानते हैं कि 8 अक्टूबर का ये दिन अपने साथ क्या क्या खास लेकर आया है। 8 अक्टूबर सन 1919 में श्रोताओं, महात्मा गांधी की यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन आज ही से शुरू हुआ था। और 1919 में ही दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय एयर रेस की शुरुआत भी आज ही के दिन हुई थी, जिसमें 63 विमानों ने भाग लिया था। 1952 में चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में श्रोताओं, पहली बार आज ही के दिन इंसान के शरीर के अंदर आंतरिक पेसमेकर का प्रत्यारोपण किया गया था। हिंदी सिनेमा के मशहूर और दिग्गज अभिनेता राजकुमार का जन्म आज ही के दिन हुआ था सन 1926 में। 1922 की बात करें तो भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भौतिक वैज्ञानिक जी एन रामचंद्रन का जन्म आज ही के दिन हुआ। और आपको बता दें कि इन्होंने प्रोटीन संरचना को समझने के लिए रामचंद्रन प्लॉट की खोज भी की थी। भारतीय नौसेना के पहले भारतीय वाइस एडमिरल रामदास कटारी का जन्म आज ही के दिन हुआ था 1911 में। अब बात करते हैं उन प्रमुख हस्तियों की जिनका निधन आज ही के दिन हुआ। तो आपको बता दें श्रोताओं की कमलापति त्रिपाठी का निधन आज ही के दिन हुआ सन 1990 में। वे भारतीय राजनीतिज्ञ, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। श्रोताओं, कार्यक्रमों में जानकारियों का ये सिलसिला चलता रहेगा। हम आपको सुनवा रहे हैं एक और प्यारा सा गीत, और गीत के बाद फिर से वापस लौटेंगे कुछ और जानकारियों के साथ।

जी हाँ, अगर हमारे श्रोता हमें कहें कि हमें आपसे मोहब्बत है, तो हम तो भी दिल खोल कर कहेंगे कि हमें भी अपने श्रोताओं से मोहब्बत है। इस तरह से बहाने तो हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानकारी साझा करते हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज हम मना रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में बिहार के सीता बदियारा गांव में हुआ था। 1921 में इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भी गए और वहाँ लगभग 7 वर्ष रहे। भारत लौटने के बाद वे स्वतंत्रता आंदोलन और समाजवादी विचारधारा से जुड़े। जयप्रकाश नारायण ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कई आंदोलनों में हिस्सा लिया और वे जेल भी गए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उनकी भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही। हजारीबाग जेल से निकलने के बाद श्रोताओं, उन्होंने भूमिगत आंदोलन

0: को संगठित किया और आजाद दस्ता के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजाद दस्ता का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष को आगे बढ़ाना था और इस दौरान जयप्रकाश नारायण ने अंग्रेजों की गिरफ्त से बचते हुए भूमिगत गतिविधियों में सक्रिय होने का फैसला लिया। आज़ादी के बाद जयप्रकाश नारायण ने धीरे धीरे सक्रिय दलीय राजनीति से दूरी बना ली और विनोबा भावे के भूदान आंदोलन तथा सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। 1954 के बाद उन्होंने अपना अधिक समय सामाजिक परिवर्तन और जनसेवा को समर्पित कर दिया। कुछ वर्षों के बाद श्रोता उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। 1970 के दशक में उनका ये आंदोलन देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण जन आंदोलन के रूप में सामने आया। एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और जन नेता की आज पुण्यतिथि पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
3: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
4: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
5: हमेशा पूछो WHY Why? कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
4: आपका साइबर रक्षक।
0: जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम सुबह सुहानी इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई। हिमाचल ने जीत पाई।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
3: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
2: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
3: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
2: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
3: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
4: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सुबह सुहानी में। श्रोताओ, कहते हैं दुनिया को देखने के लिए सिर्फ आंखें होना ही काफी नहीं, बल्कि उन आंखों की सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। हमारी आंखें हर पल हमारे साथ हैं। सुबह की पहली किरण से लेकर रात को सोने से पहले मोबाइल की स्क्रीन तक। 8 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर आज हमारे साथ मौजूद हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप महाजन जी, जो हमें आज के इस दिन के बारे में विशेष जानकारी देंगे। आइए इनका स्वागत करते हैं। हेलो।
6: हेलो
5: जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
6: नमस्कार। नमस्कार
5: जी। सर, विश्व दृष्टि दिवस के बारे में आप हमारे श्रोताओं के साथ क्या जानकारी साझा करना चाहेंगे?
6: सबसे पहले मैं आकाशवाणी धर्मशाला के सभी श्रोताओं को विश्व दृष्टि दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आंखें हमारे शरीर का केवल एक अंग नहीं है, आंखें हमारे लिए दुनिया को देखने, समझने और महसूस करने की खिड़की है। प्रकृति ने हमें जो सबसे अनमोल उपहार दिए हैं उनमें दृष्टि का स्थान सबसे ऊपर है। इसलिए इस वर्ष विश्व दृष्टि दिवस पर मेरा संदेश बहुत सरल है, अपनी आंखों से प्यार कीजिए, अपनी दृष्टि को बचाइए। आज की हमारी जीवन शैली में आंखों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है स्क्रीन। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टेबलेट, टेलीविजन, हमारा जीवन स्क्रीन से घिर गया है। खासकर बच्चों और युवाओं में स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। लंबे समय तक लगातार स्क्रीन देखने से हम कम पल में झपकाते हैं, इससे आंखों की सतह सूख जाती है और ड्राई आई डिजीज हर किसी को हो रही है, खास करके बच्चों में, जिसके लक्षण है आंखों में जलन का होना, खिरखिरापन, पानी आना, भारीपन, लालिमा और कभी कभी धुंधला दिखाई देता है। इसलिए मेरा पहला सुझाव है स्क्रीन का इस्तेमाल बंद करना संभव नहीं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना संभव है। हम स्क्रीन तभी यूज करें जहां बहुत जरूरी है। लगातार स्क्रीन ना देखें, बीच बीच में आंखों को आराम दें, पलके झपकाते रहें और बच्चों के स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करें। ये आपके द्वारा मैं संदेश देना चाहता हूँ स्कूल के शिक्षकों को, माताओं को और पिताओं को, कि वो बच्चों को स्क्रीन से जितना संभव हो सके बचाए, क्योंकि आजकल जो दृष्टि दोष है हमारी पिया चश्मा लगना, एक छोटे से बच्चों में चश्मा लग जा रहा है और चश्मा लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चों के साथ ऐसा वातावरण घर में करें कि बच्चे बाहर जाएं, धूप में उनके साथ खेलें और उनके सामने ऐसा उदाहरण दें कि खुद भी स्क्रीन ना रखें बच्चों के सामने। तो एक तो संदेश है कि बच्चों को बचाएं स्क्रीन से, और दूसरा बच्चों को फास्ट फूड से बचाएं, और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको जो ड्रग्स जिसको चिट्टा बोलते हैं उसमें भी सरकारें और हम मिलकर प्रहार करें, अपने बच्चों को बचाएं। इसके अलावा जो वयस्क हैं, जो ब्रेक हो चुके हैं, वो भी आंखों की अपनी नियमित जांच कराएं। सफेद मोती एक ऐसी बीमारी उम्र के साथ आता है जिसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसका ऑपरेशन इतना सरल हो गया है कि कुछ मिनटों में मशीन के द्वारा उसका ऑपरेशन ठीक टाइम पे करवाया जाए तो पूरी पूरी नजर वापस आ जाती है। लेकिन दूसरी बीमारी है काला मोतिया, जिसको एक ऐसा चोर बोलते हैं, नजर चुराने वाला, जिसका हमें पता नहीं लगता। हम चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कि चाहे जितने मर्जी अमीर क्यों ना हो, तो आंखों की जांच यदि करवाएंगे तो काला मोतिया का शुरू में पता लग जाएगा और उसका दवाइयों से या लेजर द्वारा उसको, इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। मधुमेह और उच्च जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर और शुगर, वो हर किसी को हो रहा है। हमारी जो जीवन शैली जो बदल गई है, तो जब शुगर होती है और आंखों की नजर ठीक है तो हम सोचते हैं कि चलो शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जब शुगर का दुष्प्रभाव आंखों के ऊपर पड़ता है तो आंखों की नजर जाने पर डर रहता है। तो शुगर के मरीजों को भी मैं संदेश देना चाहता हूँ इस दिवस पर कि वो नियमित रूप से आंखों की जांच कराएं, क्योंकि ये ऐसी खिड़की है जिसके द्वारा हम आई स्पेशलिस्ट जो हैं वो आंखों की जो नसें हैं बारीक सबरी, उनकी जांच कर सकते हैं। यदि शुगर का दुष्प्रभाव आंखों की नसों पर पड़ रहा है तो ये समाप्त, ये पक्का निश्चित है कि उसका असर हमारे दिल पे, हमारे किडनी पे, हमारे ब्रेन में, जहां जहां खून की नसें जा रही है उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा होगा। तो हम मरीज को बता सकते हैं कि शुगर को बड़ी अच्छी तरह से नियंत्रित करना पड़ेगा और आंखों का जो शुगर में दुष्प्रभाव हुआ है उसका जल्दी से जल्दी इलाज कर सकते हैं, जो कि सरल भी होगा, सस्ता भी होगा। यदि बीमारी बढ़ जाएगी तो पैसा भी ज्यादा लगेगा और नजर को बचाने में थोड़ी मुश्किल आएगी। तो मैं एक और नारा मैंने दिया है, यदि दृष्टि है तो सृष्टि है और सृष्टि है तो दृष्टि है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी जीवन शैली वैसे ही अपनाएं जैसे हमारे पूर्व 100 साल पहले, 50 साल पहले चलाते थे। हम जो भी ये लग्जरी विलासिता की चीजें हैं, स्क्रीन, एयर कंडीशन, फास्ट फूड, इसका कम से कम सेवन करें और बाहर जाएं, बाहर खेलें, धूप का आनंद लें। हमारे हिमाचल प्रदेश में इतनी अच्छी धूप है सर्दियों में, बच्चों को एक साथ बाहर बैठे और पौष्टिक आहार लें, फल फ्रूट लें, सब्जियां लें। हम अपनी मिल के

श्रोताओं, आंखें हमारे शरीर का बेहद अनमोल हिस्सा है, इसलिए आंखों में परेशानी होने का इंतजार ना करें, उनकी नियमित देखभाल करें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

जी हाँ श्रोताओ, 8 अक्टूबर का दिन हिंदी साहित्य के उस महान लेखक को याद करने का दिन भी है जिनकी कलम ने साहित्य को आम आदमी के जीवन से जोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की, जिनकी पुण्यतिथि आज हम मना रहे हैं। प्रेमचंद के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता थी जीवन की सच्चाई। उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में केवल कल्पना

की दुनिया नहीं रची बल्कि अपने आसपास के समाज को शब्द दिए। किसान की गरीबी, मजदूर का संघर्ष, स्त्री की पीड़ा, सामाजिक भेदभाव और आम इंसान की छोटी बड़ी खुशियां सब उनके साहित्य का हिस्सा बने। और आपको बता दें कि एक और खास दिवस आज के दिन हम मना रहे हैं, भारतीय वायुसेना दिवस। जब देश की सरहदों की बात आती है श्रोताओ, तो हमारी नज़रें सिर्फ ज़मीन तक सीमित नहीं रहती, क्योंकि आसमान की हिफाजत का जिम्मा भी हमारे वीर जवानों के कंधों पर है। हमारे वीर जवान हमेशा डटे रहते हैं अपनी ड्यूटी पर। श्रोताओ, आज 8 अक्टूबर है और आज का दिन देश की सुरक्षा में आसमान के प्रहरी बनकर डटे रहने वाले हमारे वीर वायु योद्धाओं को समर्पित है। आज हम मना रहे हैं भारतीय वायुसेना दिवस। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। शुरुआत में इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1950 में इसके नाम से रॉयल शब्द हटा दिया गया और ये भारतीय वायुसेना कहलाने लगी। भारतीय वायुसेना आज बहुत ही आधुनिक तरीकों से हमारे देश की हिफाजत करती है। आज भारतीय वायुसेना अत्याधुनिक विमानों और तकनीक के साथ देश की वायु सीमाओं की रक्षा करती है। युद्ध हो या प्राकृतिक आपदा, राहत और बचाव का कार्य हो या देशवासियों तक सहायता पहुंचाने की चुनौती, हमारे वायु योद्धा हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। वायुसेना दिवस हमें उन सभी वीर जवानों के साहस, अनुशासन और समर्पण को नमन करने का अवसर देता है जो अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए देश की रक्षा में जुटे रहते हैं। कार्यक्रम में फिर से समय है एक और गीत सुनने का।

कार्यक्रम सुबह सुहानी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 7:50 हो चुके हैं और अब आपको देंगे कुछ जानकारी प्रमुख खबरों की।

आज भारतीय वायुसेना अपनी 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस बार का मुख्य आधिकारिक परेड और शानदार फ्लाइट पास्ट यानी एयर शो उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद में आयोजित किया जा रहा है, जहां आसमान में वायुसेना के लड़ाकू विमान अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भव्य उद्घाटन करेंगे। इस 4 दिवसीय इवेंट में 6G तकनीक, AI, सेमीकंडक्टर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसे भविष्य के डिजिटल बदलावों पर दुनिया भर के विशेषज्ञ अपनी चर्चा करेंगे। खेल जगत में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 65वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत आज से हो रही है, जो 11 अक्टूबर तक चलेगी। आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एक नई हेल्थ टीम की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम होगा जोश। ये टीम मुख्य रूप से कार्य करेगी टीबी के खिलाफ अभियान में सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की। तो श्रोताओ, ये थी आज की कुछ ताजा तरीन खबरें।

जी हाँ, श्रोतो, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में अब हम पहुंच गए हैं जहां हम बात करते हैं मौसम की। 8 अक्टूबर को उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम ने करवट लेने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में गरज चमक, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो 8 अक्टूबर को प्रदेश में भी कहीं गरज के साथ बौछारें और बिजली चमकने की स्थिति बन सकती है।

तो श्रोताओ, अब हमारा ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आज की ये सुबह आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। इसी के साथ अब अपनी रेडियो दोस्त सचिता को ये कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: सुबह सुहानी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानुष शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ ये आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
1: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। यह कार्यक्रम 4 नए क्षेत्रों स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। हमारे संवाददाता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी।
2: इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार जीएसटी व्यवस्था में सुधार के अगले चरण के लिए एक 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। इन प्रस्तावों में प्रशासनिक को स्वचालित और आसान बनाना शामिल है, जिससे खासकर छोटे कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम हो सके। इस योजना के तहत प्रक्रिया और संरचनात्मक सुधार, जीवन और कारोबार को आसान बनाना तथा सेवाओं के निर्यात और ई कॉमर्स से जुड़े बदलाव शामिल हैं। प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में खरीदार और विक्रेताओं के बीच इनवॉइस का स्वतः मिलान, कागजी कार्रवाई कम करना और छोटे कारोबारियों के लिए कई राज्यों में पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजारी नीतियों पर रोक लगाना है। ये कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवाकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। बयान में कहा गया है कि दुनिया के कई देश अपनी स्थानीय उद्योगों, श्रमिकों और अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी व्यापारिक विकृतियों से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। सभी देशों ने जोर दिया है कि आपसी सहयोग, सूचना के आदान प्रदान और मिलकर की गई कार्रवाई से इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 15 भागीदारों में भारत और अमेरिका के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, पोलैंड, तुर्की और ब्रिटेन शामिल है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: दाँत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका

0: स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे किए हैं। उनकी ये यात्रा सेवा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की मिसाल रही है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको ऐसी ही एक पहल के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें सेवा और सुशासन की ये सोच धरातल पर दिखाई देती है। ये पहल है केरलम में शुरू की गई कोच्चि वाटर मेट्रो सेवा।
1: कोच्चि के जलमार्ग हमेशा से शहर की पहचान रहे हैं। आज वही जलमार्ग कोच्चि वाटर मेट्रो के जरिए यात्रियों की एक नई पीढ़ी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया और अगले ही दिन वाटर मेट्रो ने यात्रियों के लिए सेवा शुरू कर दी। तब से ये शहरी सार्वजनिक परिवहन में एक नई पहल के तौर पर उभरी है जो कोच्चि के द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाटर मेट्रो से कोच्चि में ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी।
2: वाटर मेट्रो से कोच्चि के इर्द गिर्द के अनेक द्वीपों में रहने वाले साथियों को सस्ता और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ये जेटी, बस टर्मिनल और मेट्रो नेटवर्क के बीच इंटर मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। इससे कोच्चि की ट्रैफिक समस्याएं भी कम होगी और बैक वाटर टूरिज्म को भी नया आकर्षण मिलेगा।
1: कोच्चि के लेखक टीएन वेणुगोपाल ने बताया कि वाटर मेट्रो ने शहर में जल परिवहन को बदल दिया है।
3: वाटर मेट्रो ने कोच्चि में जल परिवहन की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। ये अलग अलग द्वीपों और मुख्य भूमि के बीच पहुंच प्रदान करती है। परिवहन के किफायती साधन के तौर पर वाटर मेट्रो धीरे धीरे आम आदमी के लिए एक लग्जरी सुविधा के रूप में उभर रही है। इसने पर्यटन क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है क्योंकि अब देश विदेश के पर्यटक कोच्चि के बैकवाटर्स में वाटर मेट्रो की यात्रा को अपनी यात्रा की योजना का अहम हिस्सा मानते हैं, जिससे सड़कों पर यातायात की समस्या काफी हद तक कम करने में सहायता मिलेगी।
1: कोच्चि भारत का पहला शहर है जहां वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये वाटर मेट्रो 15 रूटों पर चलाई जा रही है। वाटर मेट्रो एयर कंडीशनड और बैटरी से चलने वाली नाव है जिनमें चार्जिंग की खास सुविधाएं और यात्रियों के लिए आधुनिक टर्मिनल बने हैं। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस साल 2 अक्टूबर तक वाटर मेट्रो में 77 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। 2 अक्टूबर को ही 11,670 यात्रियों ने इस सेवा का लाभ उठाया। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात आबदान में कोटे डी आइवर के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तेने बिरहामियामा आउट उतारा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास, क्षमता निर्माण और साझा हितों पर आधारित बढ़ती रक्षा साझेदारी पर चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षण और संस्थागत स्तर पर आदान प्रदान बढ़ाने सहित रक्षा और आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। आबिजान में हुई ये बैठकें डॉक्टर जयशंकर की घाना, कोटे डी आइवर और इथियोपिया की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा का एक हिस्सा है। इस यात्रा का उद्देश्य इन तीनों अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन दागे। यूक्रेन पर किए गए हमले में कल 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन की सेना ने 44 मिसाइलों को रोक दिया और 117 ड्रोन को निष्क्रिय किया, लेकिन वह पूरे हमले को रोकने में सफल नहीं रही। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा के जानबूझकर किए गए प्रदर्शन का रूप बताया। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हुती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इस बीच हुती अधिकारियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख इलाकों धुबाब अल जदीद और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एक श्रद्धांजलि।
4: मैं इंडस्ट्री का हूँ नहीं, मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं गांव खेड़े का हूँ और वही का रहूंगा और वही अच्छा लगता है। जरूरतें सीमित होना तो बहुत आसान हो जाता है, एसी है नहीं, बड़ा बड़ा मजा आता है।

0: अपने यहाँ शहर में जैसे दीवारें होती है ना, घर में हमारे यहाँ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़, इस तरफ बीच में हम रहते हैं।
1: अपनी काबिलियत और दमदार अभिनय से सबके दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं हैं। सबकी आंखें नम है, फिल्म उद्योग से लेकर उनके फैंस के बीच शोक की लहर है। अभिनेता नाना पाटेकर ने 1978 में आई फिल्म गमन से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। नाना ने करीबन 8 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष किया। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को लोगों ने काफी सराहा।
2: न भाई, न बहन, न बीवी, न बेटा,
3: कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। अब्दुल
1: फिर आई 1994 में क्रांतिवीर, जहां उनके दमदार अभिनय को नई पहचान मिली। इसके बाद अग्नि साक्षी, तिरंगा, डॉक्टर प्रकाश, बाबा आमटे द रियल हीरो, नट सम्राट और वेलकम जैसी फिल्मों ने उनकी विरासत को और मजबूत किया। फिल्म अग्नि साक्षी में उनके नेगेटिव किरदार को खूब सराहा गया।
4: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें?
1: अभिनेता नाना पाटेकर फिल्मों में अभिनय से 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं।
3: कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को, किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी।
1: इसी के साथ उन्हें 3 बार अपनी एक्टिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

0: नाना पाटेकर ने हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी सिनेमा में भी अपना लोहा मनवाया। और अब मौसम का समाचार। मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही आज बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। खेलों में पेचिंग में मनोज शाह और दिया चिताली ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मनोज और दिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी बन गई हैं। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 साल पूरे होने का समाचार कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री का संकल्प प्रकाशित किया है, भारत के विकसित होने तक ना थकूंगा ना रुकूंगा। दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रधानमंत्री मोदी की वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात का भी चित्र प्रकाशित किया है। RBI द्वारा त्योहारों से पहले रेपो दर बढ़ाने का समाचार भी कई अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, रेपो दर में 0.25% की वृद्धि, कर्ज की किश्त बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने आज भारतीय वायुसेना दिवस पर खबर दी है, जहां हौसलों की उड़ान वहीं भारतीय वायुसेना, 94 साल में बदली वायुसेना की रणनीति। दैनिक जागरण लिखता है, छठी कक्षा में देखा सपना और ऑपरेशन सिंदूर से फलक पर छा गई व्योमिका। नाम के अनुरूप आकाश में उड़ान भरने वाली, देश का गौरव है लखनऊ की बेटी, बनी फौजियों के गांव की बहू। ठंडे इलाके के बजाय गर्म क्षेत्र में आ रहे जीव जंतु, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने किया शोध, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानुष शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट 10th इंडिया मोबाइल कांग्रेस एट यशोभूमि इन न्यू दिल्ली दिस मॉर्निंग। 57 GST काउंसिल मीटिंग टू बी हेल्ड एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली टुडे। Veteran actor Nana Patekar passes away in Goa. India joins US and 13 other economies in signing joint ministerial statement to address global excess capacity and production in key manufacturing sectors. IMD forecasts heavy rain in Kerala, Tamil Nadu, Puducherry, Uttarakhand, West Bengal and Sikkim today. And in table tennis, Manoj Shah and Dia Chitali create history, become first Indian mixed doubles pair to reach Grand Smash final, semi-final, I beg your pardon, at China Smash in Beijing. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 10th edition of India Mobile Congress, IMC, at Yashobhumi in New Delhi today. The event will showcase India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries, reflecting India's growing capabilities in digital innovation, next generation connectivity and technology-led growth. The four-day event, which began yesterday, is being jointly organized by the Department of Telecommunications and the Cellular Operators Association of India. More from our correspondent.
3: India Mobile Congress 2026 has brought together global technology leaders, policy makers, industry experts, startups, investors and innovators to explore emerging opportunities across the digital ecosystem. This year's edition will cover 9 established anchor sectors, including 5G and 6G, next generation AI networks, semiconductors, non-terrestrial networks, cybersecurity, quantum communication, enterprise transformation, circular economy, and ESG and electronics manufacturing. The event will also expand its sectoral focus to 4 new domains, which are smart mobility, stadium experiences, industrial robotics, and transport technology. With Dipendra Kumar, Dilnashi Arzu, Akashwani News, Delhi.
2: The 57th GST Council meeting will be held at Bharat Mandapam in New Delhi today, chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman. The meeting will discuss policy reforms to resolve GST disputes and improve the flow of input tax credit with the aim of reducing the time and cost of compliance. Sources in the Finance Ministry said that the government will propose a five-pronged plan for the next set of reforms to the GST system. The proposal covers process reforms, structural reforms, ease of living and doing business, exports of services and e-commerce. These reforms are aimed at automating and easing a lot of the current administrative bottlenecks in the GST system and reducing the compliance burden, especially for small businesses. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the Kochi Water Metro services in Kerala.
4: The waters of Kochi have always been part of the city's identity. Today, those same waterways are carrying a new generation of commuters aboard the Kochi Water Metro. Inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on April 25, 2023, the Water Metro began passenger services the following day. It has since emerged as a new dimension in urban public transport, connecting Kochi's islands with mainland through modern electric hybrid boats. Prime Minister Narendra Modi said the water metro would help ease traffic congestion in Kochi.
5: Water metro se Kochi ke idgird ke anek dweepon mein rehne wale saathiyon ko sasta aur aadhunik transport milega. Ye JT bus terminal aur metro network ke beech intermodal connectivity bhi pradan karegi. Isse Kochi ki traffic samasyaye bhi kam hogi aur backwater tourism ko bhi naya aakarshan milega.
4: Kochi-based writer T.N. Venugopalan says the water metro has transformed water transport in the city.
6: The water metro

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: पापा की जमा पूंजी, उनकी सीख
2: और हमेशा हमारी फिक्र करना।
3: वैसे उनकी एक जमा पूंजी बैंक में भी है,
1: पर क्लेम करना मुश्किल होगा।
2: अब और भी आसान हो गया है। बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स जमा करो, 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ और नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने और भी आसान।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: यार 2 दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
7: और ये त्वचा पे काला निशान।

0: बीपी की जांच और दवाइयां मुफ्त मिलती हैं।
1: आज ही अपना बीपी चेक कराए, नमक कम खाए, रोज टहले, तनाव से दूर रहे और हाई बीपी को कहे अलविदा।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: स्वस्थ हिमाचल, मजबूत हिमाचल।
3: इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम है हिम गुंजन और इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। पिंको देवी का गाया हुआ ये लोकगीत अब आपको सुनवा रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे दयालु राम और साथियों का गाया हुआ ये लोकगीत।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर रोग एक खतरनाक बीमारी है।
3: इसमें बार बार पेशाब आना, थकावट महसूस होना, ज्यादा भूख लगना इत्यादि इसके लक्षण हैं। इसका शुरुआत में ही पता लगाना बहुत जरूरी है।
4: प्रदेश के हर स्वास्थ्य उपकेंद्रों में शुगर की मुफ्त जांच का प्रावधान है, अतः आप तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी शुगर की जांच करवाएं और अपनी आंखों और गुर्दे की गंभीर बीमारी होने से बचाएं।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: दीदी आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
6: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
5: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
6: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
7: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: लोक संगीत का कार्यक्रम हिम गुंजन इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

अभी आपने कृष्णा शर्मा और सखियों का गाया हुआ लोकगीत सुना। कार्यक्रम हिम गुंजन में अब आपको सुनवा रहे हैं वनिता शर्मा और दिव्या पांडे का गाया हुआ ये अगला

श्रोताओं, अभी आपने सुनील राणा और मान सिंह का गाया हुआ ये लोकगीत सुना। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं ये लोकगीत, जिसे गाया है प्रदीप परदेसी और फौजा सेन ने।

इसी लोकगीत के साथ हमारा आज का ये हिमगुंजन कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता, सुबह के 9:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 21वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, राष्ट्रीय सामर्थ्य और सुरक्षा में आत्मनिर्भरता। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के पूर्व महानिरीक्षक MP नथेनियल। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पब्लिक सर्विस के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। 13 वर्ष उन्होंने गुजरात सरकार का नेतृत्व किया मुख्यमंत्री के रूप में और फिर 12 वर्ष से अब वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और इस अवसर पर हम एक नई श्रृंखला आप तक ला रहे हैं, जन सेवा से देश सेवा। आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय सामर्थ्य और आत्मनिर्भर सुरक्षा। और इस बहुत ही अहम विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास अतिथि आज आमंत्रित हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और डिफेंस एनालिस्ट MP नथानियल, जो CRPF के पूर्व IG हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी और डिफेंस एनालिस्ट MP नथानियल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी स्टूडियोज में।
2: थैंक यू।
1: राज शुक्ला जी, पहले आपके पास आते हैं। पिछले 12 वर्षों में आप कैसे देखते हैं जो वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया है, क्या आपको लगता है उसके प्रमुख पहलू हैं?
2: तो देखिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा में जिस सुधार की आप बात कर रही हैं, इसकी एक पृष्ठभूमि है और उससे मैं आपको परिचय करा दूं। इसके मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? सर्वप्रथम, वैश्विक भू राजनीति के रूप स्वरूप में गहरी तब्दीली नजर आ रही है। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ दोज वंस इन 2-3 सेंचुरी मोमेंट्स, ये है वो। और इस बदलाव के केंद्र में है राष्ट्रीय सुरक्षा की क्षमताएं। आप देखिए किस प्रकार से डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स $1.5 trillion, युद्ध का दायरा किस तरह से बढ़ रहा है। टुडे देयर 3 मैरिटाइम चोक पॉइंट्स जो बंद हैं, बाबल मंडप, हॉर्मुज, ब्लैक सी। और दूसरा जो बिंदु है वो है तकनीकीकरण का, उसकी जो विशेष उपलब्धियां हैं राष्ट्रीय सुरक्षा। सो टेक्नोलॉजी इज ड्राइविंग नेशनल सिक्योरिटी लाइक नेवर बिफोर। तो इसको मद्देनजर रखते हुए 2014 से, लगभग उस समय से, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के मूल ढांचे में संपूर्ण बदलाव की ओर कई कदम उठाए हैं। इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर आप जाएं, अभी भी PMO की वेबसाइट पे अवेलेबल है, 2014 में एक संबोधन है प्रधानमंत्री जी का कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, उसमें ये जो बदलाव है, संपूर्ण बदलाव, उसकी रूपरेखा उन्होंने पेश की है। इट्स पब्लिकली अवेलेबल और एक बहुत ही मेरे समझ में विचारशील दस्तावेज है। इट्स अ वेरी थॉटफुल डॉक्यूमेंट विच आउटलाइंस एवरीथिंग। और जो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा में जो बदलाव हुआ है, इट फ्लोज फ्रॉम दैट डॉक्यूमेंट। उसमें आप देखिए सबसे पहले क्या हुआ, आपने सुना होगा, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ द CDS DMA, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। इसकी मांग जो है सशस्त्र सेनाएं 1980-1970 से कर रही थी, और इसका कार्यान्वयन हुआ 2020 में। इसके पीछे देखिए सोच क्या थी। सोच ये थी कि जो सरकार है या जो नेतृत्व है, उसने सशस्त्र सेनाओं को स्पष्ट संदेश दिया कि आपकी कुशलता में हमें पूर्ण विश्वास है, आप ही में से हम एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त करेंगे और उनको स्वतंत्रता देंगे कि आप सोच विचार करें और राष्ट्रीय सुरक्षा में जो बदलाव है उसकी दिशा, उसकी गति, उसके क्या प्रमुख स्तंभ होने चाहिए ये आप तय करें। आप सुन रही होंगी थिएटराइजेशन, इंटीग्रेशन, क्रॉस पॉलिनेशन।
1: थिएटराइजेशन का मतलब थोड़ा सरल,
2: थिएटराइजेशन का मतलब ये है कि अभी देखिए the services exist in silos, army, navy, air force. So there are army commanders for each area, there are naval commanders for each area, there are air force commanders for each area. Theatrization ka matlab hai ki aap do ya teen theaters banaye, ek theater which looks at the western horizons, so pashchimi tat ki or, ek at the eastern horizons ya china, western horizons pakistan and beyond, aur ek maritime theater. और दो तीन, जैसे स्पेस इज अ थिएटर, साइबर इज अ थिएटर, बट वंस यू से वेस्टर्न हराइजंस, अब उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, दे विल बी इंटीग्रेटेड इनटू दिस वन थिएटर कमांडर। अब देखिए CDS इज द सिंगल पॉइंट एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द गवर्नमेंट, टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। सो इट्स नॉट आर्मी टेकिंग इट्स प्लान, नेवी टेकिंग इट्स प्लान, इट इज इंटीग्रेटेड प्लान विच द CDS टेक्स। सिंदूर में देखिए क्या हुआ, So the CDS, the service chief briefed him and the CDS took the integrated plan to the Prime Minister. Aur iske piche bhi ek lamba itihas hai, prashthbhumi hai. So that is optimizing all available resources for best combat outcomes.
1: आपको लगता है कि जो वर्तमान सरकार है उनका जो एक whole of government approach है वो हमेशा कहते हैं कि सबको साथ में मिलकर चलना चाहिए, तो उसी का एक ये एक प्रारूप है जो हम डिफेंस फोर्सेज में देख रहे हैं?
2: आपने बहुत सही सवाल पूछा. देखिए क्यों, इवन आफ्टर अपॉइंटिंग द CDS, you have appointed a CDS, but अगर आप इसकी तुलना करें, the United States had a permanent chairman in 1949. उसके बाद दे इंटीग्रेटेड द थिएटर्स. तो आपने गल्फ वॉर वन में सुना होगा, वी हैड नेटवर्क सेंट्रिसिटी. गल्फ वॉर टू में वी मूव टू इंटीग्रेशन, वेयर अ टैंक कमांडर कुड कॉल फॉर द फायर ऑफ एन F-16. आप देखें उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में दे शुड बी सिविल सर्वेंट्स, सोल्जर्स, टेक्नोलॉजिकल माइंड्स, इनोवेशनिस्ट, क्रॉस पॉलिनेशन. और फिर जिसका आपने बात की, होल ऑफ गवर्नमेंट, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, नॉट एन आर्मी मैन फॉर एन आर्मी जॉब. सो दोज आर द स्टेप्स. टूडे वी आर इन वॉट वी कॉल कोऑर्डिनेटेड जॉइंटनेस, देन यू हैव टू गो टू इंटीग्रेशन, देन क्रॉस पॉलिनेशन, देन सिविल मिलिट्री फ्यूजन, विच इज होल ऑफ गवर्नमेंट. मैं आपके इसको दो उदाहरण देता हूँ. एक महीने पहले चाइना की जो सिंगवा यूनिवर्सिटी है, इट हैज पिक्ड अप एन अमेरिकन कॉल्ड ओमार यागी, नोबेल लॉरेट इन केमिस्ट्री. किस लिए? सिंगवा यूनिवर्सिटी में एक AI डिपार्टमेंट है फॉर एडवांस मटेरियल्स, जिसमें PLA का 30% रिप्रेजेंटेशन. तो एकेडमिया, PLA एंड नोबेल लॉरेट काइंड ऑफ टैलेंट, दैट इज सिविल मिलिट्री फ्यूजन. तो ये अभी एक लंबा सफर है. CDS पहला पड़ाव था, इंटीग्रेशन थिएटराइजेशन दूसरा पड़ाव होगा. And that is the way we will grow if we have to become a power of consequence. But jo CDS aur DMA hai, jaise maine kaha, this is the beginning of that journey. Aur dekhiye iska ek aur iski mahatvapurna upalabdhi kya hai, jo civil military relationship ka dhancha tha
1: ji,
2: usme ek ye mahatvapurna pherbadal. Dekhiye pehle kya hota tha ki a service chief would go to the raksha mantri through the defense secretary, so political executive, but the serf soldier could get to him only through the bureaucratic ear.
1: The hierarchy had to be.
2: Now it is equals. Defense secretary, CDS, both, so that the Raksha Mantri gets the best advice. Iska, that is the logic. Aur jaise maine kaha, iske jo ab hum civil military fusion ki or agrasar hai.
1: Ji.
2: Aur iske meel patthar kya honge? Pratibha, talent. Maine uska ek udharan diya aapka. Innovation, navachar. Today you can't have outdated processes. देखिए क्या हो रहा है यूक्रेन में, drones, AI, ये सब हकीकतें हैं. And along with innovation, deregulation. जब मैं आर्मी कमांडर था, प्रधानमंत्री जी आए थे, मेरे को अभी तक याद है, he said private sector और startups के सिलसिले में, he was telling us that release the forces of innovation, energy and enterprise from the scourge of process and procedure, नियमों का जाल. So CDS DMA is a symbol. पर इसके पीछे गहरा सोच है.
1: सॉरी टू इंटरप्ट, बट आपको लगता है कि शायद उनकी दूरदर्शी सोच थी? आप कह रहे हैं कि 2014 में ही इस तरह का जो सोच है वो सामने आ गई थी, तो इन टाइम इट वाज टेकन जो डिसीजन.
2: इट इज अ रिवॉल्यूशनरी स्टेप इन द सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप. इट इज बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप एंड द मिलिट्री. सो देयर आर कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हियर. दूसरा जो केंद्र बिंदु है बहुत महत्वपूर्ण, आत्मनिर्भरता एंड डिफेंस. देखिए हम हमेशा आत्मनिर्भरता की बात करते थे, बट पहला जो आत्मनिर्भरता था, इट डिपेंडेड ऑन दी PSUs, DRDOs. अब हुआ क्या है, जो युद्ध का चरित्र है, द कैरेक्टर ऑफ वॉर, उसमें आमूल परिवर्तन हुआ है. सो टुडे इफ यू सी यूक्रेन वगैरह में पॉलीमैथ्स जो है उस युद्ध के जो दायरा है उसको बढ़ा रहे हैं. आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ क्या हुआ, it is such a powerful military, there is no military which can project power two oceans away. But abhi ek report nikli hai Washington se ki why the US has not delivered an epic fury. Epic fury ne uska kaam itna acha nahi raha, because it was slow to learn the lessons of ukraine se jo seekh thi, drones, AI, wo nahi kar paye. To their US navy, usne iranian navy ke 160 ships ko dhwast kar diya, but it was not small enough, agile enough, autonomous enough to operate in the strait.
1: तो आप जो चरित्र की बात कर रहे थे कि चरित्र चेंज हो गया है
2: इस तरह से, तो अब इस चरित्र चेंज हो रहा है, यू नीड द इनोवेशन एजिलिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड स्टार्टअप्स। अब आप देखिए हमारे यहाँ क्या है, बिकॉज ऑफ रेगुलेशन

0: and process procedure. HAL is promising you AMCA only by 2030.
1: अंग्रेजी में एक कहावत है दैट टुडे क्या हो रहा है दैट मल्टीबिलियन डॉलर कैपेसिटीज विच आर डिलीवर्ड इन 10 इयर्स दे आर बीइंग ओवरटर्न्ड बाय इनोवेशन इन 6 to 8 वीक्स. यूक्रेन में ये हो रहा है. सो दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव टू मूव टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर एंड स्टार्टअप्स. मैं आपको बता दूं, जब मैं कर्नल था, अगर मैं कोई देख भी लेता प्राइवेट सेक्टर के साथ, तो मेरी वो जो क्या कहते हैं प्रोफेशनल करियर, व्यावसायिक जो जिंदगी है, उसका अंत हो जाता. We are not supposed to interact. आज आप देखिए, जो हमारे नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल स्वामीनाथन, वो सार्वजनिक मंच से he was telling the CEO startups youngster कि आप आए मुझसे कल मिलें और हमें मिलकर स्पेस का इस्तेमाल करना है फॉर मैरिटाइम प्रोग्रेस. इतने मैं आपको गिना दूं, देखिए सर्वम AI, गैलेक्साई, मल्टी स्पेक्ट्रल स्पेस इमेजरी, पनियन टर्बोफैन इंजन, थर्ड आई टेक, न्यू स्पेस, दीज आर यंग बॉयज एंड गर्ल्स.
2: रिलायंस को जो बढ़ावा मिला है,
1: हवा मिला है
2: जी
1: स्टार्टअप से, ये भी एक बहुत ही जिसे कहते हैं इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेप. रक्षा मंत्री जी कल परसों बात कर रहे थे कि नॉट ओनली द फिफ्थ जनरेशन फाइटर बट द सिक्स्थ जनरेशन फाइटर. तो ये आप देखें बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है.
2: फ्यूचर रेडी जिसे हम काफी ये शब्द सुनते
1: आज
2: हैं.
1: really. जो हमारे भारतीय कारखाने हैं इंडियन नेवल शिपयार्ड्स, उसमें 42 शिप्स का निर्माण हो रहा है, वॉरशिप्स. But we have a long way to go because China has got 500 ships. But ये दो तीन चीजें जो हैं, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, जिसमें निजी क्षेत्र का प्रवेश हुआ है, स्टार्टअप्स का प्रवेश हुआ. और एक आखिरी चीज मैं बोल दूं,
2: जी बिल्कुल,
1: हमारी जो सामरिक सोच है, जो नीति है, उसमें भी देखिए नए स्तंभ. आप देखें ये जो आतंक पर प्रहार हुआ है, और देखिए इसमें जो हमने किया है उसमें दो चीजें हैं. एक तो पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश गया है कि देखिए आपकी जो सामरिक नीति है, अगर उसमें आप आतंक उसका केंद्र बिंदु होगा तो हम आपको घर में घुस के मारेंगे. एंड इट इज जस्ट नॉट अ फ्रेज, वी हैव डन इट. हमने कैसे किया? चेतावनी और प्रभावी जवाब के द्वारा. आपको याद होगा कि ये जो शैली है पलटवार की, देखिए किस प्रकार से हमने इसको किया. जब उड़ी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक्स, 6 से 8 किलोमीटर हमने पहली चेतावनी दी कि साहब मत करिए. फिर आपने किया पुलवामा, इस बार हमने कहा पीओके नहीं, पीओके बाहर बालाकोट में आपको जाके मारा. और फिर भी जब आप नहीं माने और आपने पहलगाम किया तो हमने सिंदूर दिया. आप 10 मई 2025 का स्मरण करें, पाकिस्तान डिफेंसेस ले बैटर्ड, इट्स सॉवरेनिटी ले शैटर्ड. हमने तो ये जो टारगेट्स है ना 40-50 टारगेट, हमने तो सिर्फ मैप्स पे मारे थे. पहली बार हमने हकीकतन मारा रावलपिंडी, रायविंड, नूरखान. नूरखान 1.5 किलोमीटर था जीएचके से. पाकिस्तान नोज इट दैट दे वर बैटर्ड एंड शैटर्ड. Now look at the message that we have given.
2: So Mr. Nathaniel, coming to you, आप क्या कहेंगे? ये जो पिछले 12 वर्षों में बहुत उपलब्धियां रही हैं, जैसे अभी लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने भी बताया डिफेंस सेक्टर में, अगर हम नक्सलिज्म की बात करें, नक्सलवाद जिस तरह से खत्म हुआ है और इसी वर्ष डिक्लेरेशन हुई 31 मार्च को कि अब नक्सल मुक्त है भारत, इसको आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? कितनी बड़ी चुनौती थी हमारे देश के लिए और क्या लगता है आपको किस तरह ये संभव हो पाया?
3: इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलिज्म पहले तो 67 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद CRPF ने काफ़ी जोरों से वहाँ काम किया बंगाल में, क्योंकि दार्जिलिंग वगैरह के आसपास था ज़्यादातर. वहाँ पर जब तकरीबन ख़त्म हो चुका था तो ये जो नक्सलाइट थे इन्होंने मूव किया नांद्रा की तरफ, दूसरे इलाकों में. तो वहाँ जाने के बाद इन्होंने धीरे धीरे अपना जड़ जमाया वहाँ पे, खासकर अबुजमांड एरिया में. वहाँ पे दिक्कत ये थी फोर्सेस को कि कहीं पे भी अगर ऑपरेशन करना हो तो उन्हें 20-30 किलोमीटर लगातार जाना पड़ता था, और वापसी में जब आते थे तो काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके होते थे, और वापसी में ही ये लोग नक्सल जो थे वो अटैक करते बड़े तादाद में, 200-300 के तादाद में 70-80 आदमी पे अटैक करें. उससे क्या था कि काफ़ी हमें नुकसान पहुंचा शुरू में, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने भी देखा कि इसको किसी तरह ख़त्म करना है, तो ये एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया कि 31 मार्च 2026 तक हमें ये ख़त्म करना ही है. और ये जो डायरेक्टर जनरल थे उन स्टेट्स के और CAPF के, CAPF मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जिसमें BSF, CRPF, CISF, ITBP ये सब उसमें आते हैं, SSB भी है, तो इन लोगों को बता दिया गया कि ये हमारा डेडलाइन है, इससे पहले आपने ख़त्म करना. उसके हिसाब से जो दिक्कतें आती हैं ऑपरेशन में, ये गवर्नमेंट को इसके बारे में बताया गया. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कम्युनिकेशन जो रोड कम्युनिकेशन है वो नहीं। जंगलों में आप कितने देर जाएंगे, 20 किलोमीटर गए वापसी में ये अटैक कर देते थे। और गांव वाले जो है नॉर्मल गांव में रहते हैं, आपको पता नहीं लगेगा ये नक्सल है कौन है। तो सबसे बढ़िया कदम ये लिया गया सबसे पहले कि इन्होंने सड़क बनानी शुरू की। शुरू में जब इन्होंने कोशिश की सड़क बनाने की, तब इनके ऊपर अटैक होता था, कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो भाग जाते थे, काम छोड़ के निकल जाते थे, तो इस वजह से सड़क बन नहीं पाई। गवर्नमेंट ने फिर क्या सोचा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इसमें इन्वॉल्व करो, क्योंकि इट इज़ मोर और लेस लाइक अ पैरामिलिट्री है। तो उसमें उनको बुला के जब रोड बिछाना शुरू किया तो कुछ हद तक उन्होंने कुछ स्ट्रिच बना दिए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स आने शुरू हो गए और उनको CRPF का प्रोटेक्शन दिया गया। इस हिसाब से फिर काफ़ी दूर तक अबुजमांड एरिया के अंदर भी सब जगह ले जाने रोड्स बिछाने लग गए। इन रोड्स के बिछाने की वजह से ट्रूप्स भी अंदर जाने लगे, CRPF के कई जगह फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस बनाने शुरू हुए, जिसको हम FOB बोलते हैं। उन FOB में जब कंपनियां आके बैठ गई, कंपनी में करीब 100-150 आदमी होते हैं और उनके पास कोई 15-20 गांव उनकी जिम्मेवारी का इलाका बनता था, और जब वो वहां जम गए CRPF और बाकी फोर्सेस भी, तो इंटेलिजेंस आना बहुत आसान हो गया। उससे पहले इंटेलिजेंस हमें आसानी से मिलती नहीं थी, हम ज़्यादातर टेक्निकल इंटेलिजेंस पे निर्भर कर रहे थे। लेकिन जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है नक्सलाइट्स को ही पता है,
2: जब सड़कें बनी तो आपका वहां पर पहुंच बनी
3: बिल्कुल
2: जी।
3: तो फोर्सेस जब वहां जम गए तो लोगों के अंदर जो पहले भय था नक्सलाइट्स से, तो उस भय को दूर कर दिया गया और वो खुद आके बताने लग गए कि फलाने फलाने जगह यहाँ पे नक्सलाइट का मूवमेंट हो रहा है। और इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आने लग गए, ऑपरेशन काफी जोरों से किया गया और उस वजह से उन लोगों के काफी कैजुअल्टीज होने लग गए। और इससे ये भी हुआ कि कैजुअल्टीज जो फोर्सेस के थे वो तकरीबन समाप्त हो गए। और सबसे बड़ा एक ऑपरेशन किया गया कारेकुटा हिल्स, जो कि काफी 15-20 किलोमीटर तक चल रहा था और उसमें CRPF के महानिदेशक महोदय खुद भी थे। और ऑपरेशन लगातार 15-20 दिन चलाए गए, जंगलों के अंदर काफी कठिन इलाका था और कोबरा बटालियंस भी वहां पे पहुंचा दिए गए, हेलीकॉप्टर और बाकी सब तैयार रखे गए ताकि अगर कुछ कैजुअल्टी होता है तो उनको इवैक्यूएट किया जाए, और हेलीकॉप्टर से ही उनको खाना पानी वगैरह ही पहुंचाया जा रहा था। उस कारेगुटा ऑपरेशन ने इतना बड़ा कमाल किया कि ये जितने भी नक्सलाइट थे उन्होंने कारेगुटा हिल्स को खाली कर दिया और कई तो आंध्रा की तरफ भाग गए। आंध्रा में भी जो पुलिस थी उनको पहले ही इसकी खबर थी कि यहाँ ऑपरेशन चल रही है, तो हो सकता है वो उनके तरफ बढ़े, तो वहां पे उन लोगों ने भी ऑपरेशन जोरों से शुरू किया और उसके वजह से कई पकड़े गए। सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि DRG जो है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की अपनी फोर्स है
2: जी,
3: उन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि एक जगह उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि उनका जनरल सेक्रेटरी बसवराजू वो किसी जगह जंगल में छुपा हुआ और उसके साथ 20-25 और उनके बॉडीगार्ड वगैरह थे। उस ऑपरेशन में सभी को मार दिया गया बसवराजू के साथ और वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई। जब उनका जनरल सेक्रेटरी जो टॉप लीडर है वही मारा गया तो उनका जो फ्रेमवर्क है वो खत्म हो गया। उसको देखते हुए उनमें पहले से ही कई लीडर थे जो चाह रहे थे कि हम सरेंडर कर दें, सरेंडर पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाया स्टेट गवर्नमेंट्स ने, और ये इतने एल्यूरिंग पॉलिसीज थे कि अगर आप सरेंडर कर दो आपको इमीडिएटली 50,000 दिया जाएगा, सरेंडर करो आपको मकान बना के दिया जाएगा, आपको स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा,
2: सो रिहैबिलिटेशन के लिए पूरे प्रयास किए गए।
3: तो उसके वजह से कईयों ने सोचा क्यों ना हम निकल जाएं यहाँ से। और उसमें ये भी था कि जब इनके आपस में शादियां भी होती हैं नक्सलाइट्स जंगलों में रहते हैं, लेकिन दे के नॉट प्रोड्यूस एनी चाइल्ड, उनका स्टेरिलाइजेशन हो जाता था, लेकिन हर आदमी चाहता है भाई मेरे बच्चे भी हों और आगे मेरा संतान बढ़े। तो उसके वजह से कईयों ने सरेंडर किया, उनका रिवर्स किया गया स्टेरिलाइजेशन और मकान दिए गए, फैमिली ढंग से रहने लग गए, उनको ट्रेनिंग दिया गया स्किल ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद उनको काम भी दिया गया, और कई जो उनमें बड़े अच्छे थे उनको जो कि ट्रेंड आदमी थे उनको स्टेट पुलिस में भी लिया गया। वहां पर बस्तर बटालियन है और छत्तीसगढ़ का अपना CAFS छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स, उसके अलावा जैसे मैं बताया DRG भी है, जो अच्छे ट्रेंड थे और जिनकी लॉयल्टी क्वेश्चनेबल नहीं थी उन लोगों को फिर ऐसे फोर्सेस में भी लिया गया।
2: जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला में आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है राष्ट्रीय समर्थन और आत्मनिर्भर सुरक्षा, और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और डिफेंस एनालिस्ट एमपी नथानियल जो सीआरपीएफ के पूर्व आईजी हैं। सो मिस्टर नथानियल, अगर हम वहाँ जो रहते हैं लोग ट्राइबल्स, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो अब वो लोग भी मुख्य धारा में आएंगे?
3: अब बसत भी जाने लग गए, लोगों को आसान हो गया, राशन पहुँच रहे हैं वहाँ पे, और सीआरपीएफ एक ऐसा कम्युनिकेशन सेंटर बन गया है, इधर कोई तकलीफ है सीआरपीएफ में पहुंच जाएंगे, वहां से खबर पहुंच जाएगी डीएम तक, कहीं पे भी पहुंचाना खबर। तो अब वो इंटरेक्शन, क्योंकि सीआरपीएफ पहुंच गए हैं, पब्लिक का इंटरेक्शन सीआरपीएफ से हो रहा है और सीधे एडमिनिस्ट्रेशन से हो रहा है।
2: जी,
3: पहले जब किसी कैजुअल्टी को पहुंचाना होता तो बड़ा मुश्किल पड़ता था। जब मैं आईजी झारखंड था तो मेरे पास दो हेलीकॉप्टर रखे गए थे कि कभी भी कहीं कैजुअल्टी होता है इमीडिएटली, और कई ऑपरेशन, एक सरेंडा फॉरेस्ट हमने ऑपरेशन करवाया था झारखंड में, वो लगातार हफ्ते भर का चला, सब जवान जंगल में, तो वहाँ पे राशन वगैरह भी हम हेलीकॉप्टर से पहुँचा रहे थे, ताकि और उस सरेंडा फॉरेस्ट को हमने उस वक्त पूरा खाली करवा दिया। नहीं तो उससे पहले जब भी कोई फोर्स वहाँ जाती कैजुअल्टी होता और वापस आ जाती, लेकिन इस तरीके के फैसिलिटीज के वजह से वहाँ पर हम अंदर जा सके, एक दो कैजुअल्टीज हुए लेकिन उन लोगों का हमने पूरा खात्मा कर दिया वहाँ पे, उस जगह से उनको उखाड़ फेंका। तो ये क्योंकि फैसिलिटीज मिल रहे हैं, वेपन भी मॉडर्न वेपन सारे मिल गए, दैट वन एंड नाइट विजन डिवाइसेस वगैरह दिए गए, ताकि रात को एम्बुश में बैठे हैं अगर कोई आता है तो मालूम पड़ता है नाइट विजन डिवाइसेस, तो इन चीजों से हमें काफी फायदा। हालांकि ये पंजाब में भी हमने यूज किया हुआ था
2: जी
3: नाइट विजन डिवाइसेस, लेकिन ये काफी तादाद में जब वहाँ यूज किए, अब नाइट एंड डे ऑपरेशन में आपको रात के समय भी पूरे अलर्ट रहना पड़ता है। तो जंगलों में आप रह रहे हो, वहीं पे खाना खा रहे हो, वहीं पे कुकिंग चल रहा, सब कुछ चल रहा है, तो वैसे हालात में जरूरी है कि उनके पास ऐसे सारे मॉडर्न इक्विपमेंट वगैरह हो।
2: सो पूरे देश को आपको धन्यवाद करना चाहिए, डिफेंस फोर्सेस जो आप लोग वहाँ तैनात होते हैं, इसीलिए हम लोग आराम से सोते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो आप कह रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर का या एमएसएमईज या स्टार्टअप्स का आना डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत एक उत्साहजनक डेवलपमेंट है, तो इसमें जो डिफेंस एक्विजिशन रिफॉर्म्स हैं, डिफेंस प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि अभी क्या स्थिति है?
1: देखिए, डिफेंस एक्विजिशन में भी, और ये मैं कहना चाहूंगा, जो मौजूदा डिफेंस सेक्रेटरी साहब है, ही हैज डन सम आउटस्टैंडिंग वर्क। जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उनमें एक मूलभूत रूप से सुधार लाए, जैसे मैंने आपको बताया एचएएल की प्रतिस्पर्धा में टाटा एयरबस को खड़ा किया गया, सो दैट एचएएल स्मार्टन्स अप, सो दैट आरपीएसयूज आर चैलेंज। देखिए आज चीन में क्या हो रहा है, जो प्रतिस्पर्धा है, जब चीन में आज एक एंटरप्रेन्योर सुबह उठता है, ही डज नॉट बॉदर अबाउट द अमेरिकन कंपेटिटर, ही इज मोर बॉदर अबाउट द चाइनीज कंपेटिटर। प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है कि जो 100 कंपनीज हैं, 5 बचती हैं, और ये 5 कंपनीज वैश्विक स्तर पे कंपीट करने की काबिलियत रखती हैं। सो वी नीड डोमेस्टिक कंपटीशन सो दैट द क्वालिटी ग्रोज। तो ये इस क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ। और देखिए दूसरी बात जो मैंने कही, आज आप यूक्रेन देख लें, सॉफ्टवेयर इनोवेशन, पहली बात रक्षा क्षेत्र में हमेशा हम बात करते थे प्लेटफॉर्म्स की, Su-30s, Jaguars, एयरक्राफ्ट के लिए, आज बात हो रही है सॉफ्टवेयर की, मेवन क्लॉड का इस्तेमाल हुआ है वेनेजुएला में, मशीन इनेबल्ड टारगेटिंग, डेल्टा जो यूक्रेन में, इट इज एआई इनेबल्ड डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, लैटिस जिससे ड्रोन स्वॉर्मिंग हो रही है, आप देखते हैं आजकल 2000 ड्रोन ये ऐसे ही थोड़ी ना स्वॉर्म करते हैं, देयर इज सॉफ्टवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर में निवेश हो रहा है, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये 2 हफ्तों में तब्दील हो रहा है, हार्डवेयर 4 हफ्तों में तब्दील हो। अब जब ये तब्दीलियां हैं 2-4 हफ्ते की, दे कैनॉट बी ड्रिवन बाई अ प्रोसीजर विच यू परफेक्ट इन ईयर्स। अब ये हमारे सामने एक चुनौती है, प्रोक्योरमेंट में काफी रिफॉर्म्स हुए, और रिफॉर्म्स की जरूरत है। देखिए पहले क्या करती थी फौज, यूज टू ले आउट अ GSQR, जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट, कि साहब हमको इस प्रकार का जहाज चाहिए, उसके ये फीचर्स होंगे, आप बनाएं। आजकल जो बाहर प्रोड्यूसर्स हैं, पामर लकी कहते हैं, यू आर नोबडी टू टेल मी द प्रोडक्ट यू वांट, आई विल गिव यू अ प्रोडक्ट दैट यू कांट रिफ्यूज। ये हकीकत हो रही है। अब GSQR बाहर लोग बोलते हैं GSQR इज डेड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म बहुत हुआ है, बट कंसिडरिंग वॉट इज हैपनिंग इन द फ्यूचर वी नीड मोर रिफॉर्म। तो देखिए हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है डिफेंस एक्सपोर्ट्स, which is linked to procurement reform and all. मैं आपको बताऊं कैसे, हम जब बाहर जाते थे 2005-06 में, तो लोग कहते थे, we used to say we are the third world's third largest army. कहते थे बहुत बढ़िया है, आप ये हमको ये बताएं कि आप किस प्रकार के असले निर्यात करते हैं। हम कहते थे साहब ये हमारी नीति नहीं, देयर वाज नॉट अ पॉलिसी, वी डिडंट एक्सपोर्ट। टुडे

0: If the last figures were are right, in fact, I was hearing the Honorable Raksha Mantri, 38,000 crores.
1: Yes.
0: Agar aap iski tulna karein 2014 se, this is a 5,500% ki uchhal hai.
2: Aur 80 deshon mein ja raha hai.
0: 80 देशों में, जैसे आपने कहा, आर्मेनिया, थाईलैंड, इजिप्ट, बेल्जियम, कुछ यूएसए में भी कुछ हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं. 145 फर्म्स हैं, एमएसएमईज वगैरह सब मिला के, विच आर डीलिंग विद दिस. आप हथियार देख लें, ब्रह्मोस, आकाश, 155 तोपखाना, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, पैराशूट्स, प्रोटेक्टिव क्लोदिंग. और ये आप देखें, दिस इज ऑल्सो जियोपॉलिटिकल लीवर, जिसे कहते हैं भू राजनीतिक अस्त्र है. इट इज फॉर इन्फ्लुएंस, प्रभाव, फॉर लेवरेज. It is for strategic encirclement. हमने किस तरह से वियतनाम, फिलीपींस को ब्रह्मोस दे के चीन को भेजा है. So exports are a geopolitical lever. They are a source of revenue. They make so much sense. And I think this is one area where we have, in fact, we are moving from being importers from the world to exporters to the world.
2: In fact, जो positive indigenization lists आई हैं 10 अभी तक, जिसमें लगभग 5,500 से अधिक items हैं, आपको लगता है ये भी एक बहुत अच्छी पहल है? जब आप आत्मनिर्भर भारत बनने की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उस दिशा में जब आप इस तरह से एक ईयर मार्क करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स यही बनेंगे, तो एक विश्वास भी आप जता रहे हैं अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज में, और वो अब दिखाई भी दे रहा है एक्सपोर्ट्स.
0: विश्वास ही नहीं, अनिवार्य था. देखिए हो क्या रहा था, मैं आपको बताऊं हकीकतन हो क्या रहा था. मान लीजिए टैंक है भाई, हम तो अगर नवाचार नहीं, जुगाड़ में तो हम बहुत बढ़िया थे. हम कहते थे वी कैन यू नो क्रिएट एनीथिंग. बट हो क्या रहा था कि एक टैंक का पाइप, वॉशर, ट्रैक, हर चीज हम इम्पोर्ट कर रहे थे. एंड वी वर पेइंग एट डॉलर्स, वी वर पेइंग एट रूबल प्राइसेस, फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान हो रहा था. तो भाई एक नट क्यों नहीं बन सकता है भारत में? तो हमने पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन का तात्पर्य ये था कि भाई ऑल दीज थिंग्स यू विल नॉट इम्पोर्ट, आप यहीं बनाएंगे. और एमएसएमईज बना सकते हैं आजकल तो भाई, वी आर मेकिंग एडवांस्ड एयरक्राफ्ट के हम विंग्स, छोटे छोटे उसके पुर्जे बना रहे हैं. तो जब आपने ऐसे पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट बनाए कि ये आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, आप करेंगे, पहले लोग डराते थे कि सर अगर ये नहीं आए तो जहाज में क्या होगा. बट हम जो राजनीतिक नेतृत्व थे, उन्होंने कहा ये आएंगे नहीं, जब नहीं आए तो हमने बना लिए. सी इंडियंस आर वेरी गुड, हमने डीपीआई नहीं किया है, बट थोड़े आलसी हो जाते हैं कभी कभी. तो सो वी सेट पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन, ये आप सब इम्पोर्ट करेंगे नहीं, नो नोइंग फुल्ली वेल दैट वी कुड मेक इट. तो इसका बड़ा फर्क पड़ा है, जो हमारी इम्पोर्ट के खर्च था वो कम हुआ. एंड नाउ दैट वी आर मेकिंग इट हियर, वी विल परफेक्ट इट इन एक्सपोर्ट.
1: एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कितने बढ़
0: जाते हैं. देखिए बुनियादी सवाल क्या था, आई जी साहब ऑल्सो विल, पुरानी चर्चा क्या थी, डिफेंस वर्सेज डेवलपमेंट, सिक्योरिटी वर्सेज डेवलपमेंट. रॉन्ग, इट इज सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, डिफेंस एंड डेवलपमेंट, सिविल मिलिट्री फ्यूजन साथ चलना है. So, deep, जो मूल्यभूत जो चर्चा थी वही गलत थी. We have turned it around. We grew up in silos. Government, private sector, PSUs, private sector, academia अपनी दुनिया में. अरे भाई academia में आप invest नहीं करेंगे, R&D नहीं होगी, pure sciences नहीं होगा, कोई राष्ट्रीय सुरक्षा में तकनीकीकरण में तेजी आ ही नहीं सकती. Everybody has to integrate. So there is a larger conceptual change also which is driving all these, I would say, mega reforms.
2: So, ये जो conceptual change की बात आप कर रहे हैं, इसका एक और reflection FTI, जो defence में FTI को liberalize किया गया है 74% तक via automatic route and 100% via government. तो इसका थोड़ा सा बताएं सरल शब्दों में कि इसका क्या अर्थ है और ये कितना एक important reform है.
0: बिल्कुल. तो आप एक छोटी सी कहानी सुने. I was growing up 1980s, आपको भी याद होगा. We said space is an exquisite thing. Few countries to it. Countries, I'm emphasizing. So USSR, USA, India was also. But हम whispers में बात करें. हमारे सिलसिले में क्या होता है? That national security, only government can do it. Only DRDO because it is exalted, lofty. और उस दायरे के अंदर क्या हुआ कि in this PSU complex, a lot of, shall I say, slots slipped in, inefficiencies. और उसको protect करने के लिए हमने कहा नहीं, प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता. धीरे धीरे क्या हुआ, भारत में ही नहीं, वैश्विक स्तर पे प्राइवेट सेक्टर प्रूव दैट इट हैड एफिशिएंसीज ऑफ इट्स ओन. तो एफटीआई में भी यही था पहले. और इसको हमने पहले कैसे कहा, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा ही नहीं हो सकता. हमने कहा क्यों नहीं हो सकता, द प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट, क्षमता महत्वपूर्ण है, चाहे वो सरकार से आए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से आए, चाहे वो स्टार्टअप से आए. सो उस तरह से ये जो एफटीआई धीरे धीरे रिलैक्स किया गया है कंपनी स्ट्रक्चर्स में, पीएसयू स्ट्रक्चर्स में, टू

0: startups because they are agile. They are not bureaucratic. You know, ये जो चीजें आजकल जैसे मैंने बताया मेरे को तो ये लगता है ये सब पता नहीं क्या कहें कि सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ है AI और साइबर क्वांटम ये राष्ट्रीय सुरक्षा में हुआ है. And most of these technologies lie at the cusp of civil-military fusion, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा में है, civil space में भी है. आप देखिए 10 साल में कितना कमाल कर दिया. मैंने आपको ये नाम गिनाए थे. These are just IT engineers. किसी ने गैराज में शुरू किया, किसी ने कुछ किया, but they have delivered. And I am only talking of the defense space. In the civil space, तो और भी हुआ है. So I'll go back toward the Prime Minister. I think it was very important. Release the forces of innovation, energy and enterprise from the scourge of process and procedure. हमने जो इतने rules, नियम, शियम बना के रखे थे, that was throttling national security. उसको आजादी मिली है अभी.
1: सी चेंज है पूरे एटीट्यूड में अगर हम देखें पिछले 12 सालों में. मिस्टर थेतल, हालांकि हम इस पे बात कर चुके हैं लेकिन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है काउंटर टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर. ये कितना इवॉल्व हुआ है और इसमें मजबूती कितना एक इम्पोर्टेंट उपलब्धि है हमारे जैसे देश के लिए.
2: एक काउंटर टेररिज्म के बारे में बात करें तो इट कवर्स द एंटायर कंट्री राइट फ्रॉम J&K टू साउथ एंड इवन ईस्ट टू वेस्ट. और ज्यादा जो अफेक्टेड अभी है ये J&K है और नॉर्थ ईस्ट में भी तकरीबन खत्म ही हो चुका है सिवाय मणिपुर के जहाँ पे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है. लेकिन अभी कोबरा बटालियन वहाँ पहुँच गए हैं, उसी तरह कोबरा बटालियन अब J&K में ही पहुँच गए हैं. सो दैट आर्मी इज रिलीव्ड ऑफ दिस इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी एंड कोबरा बटालियन अलॉन्ग विद अदर CRPF बटालियन आर ऑपरेटिंग इन दोथ एरिया. अब वहाँ पे भी स्थिति मुझे लगता है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. और नॉर्थ ईस्ट में तो ऑलरेडी तकरीबन ठीक समाप्त हो गया है. हालांकि कुछ हैं, एक तो उल्फा है आसाम में जो कि अभी भी थोड़ा सा कुछ शरारत करता रहता है लेकिन हमारे काबू में है. वो ज्यादा कुछ बड़ा ऐसे हंगामा नहीं कर सकता. लेकिन J&K में जो है वहां पर आर्मी राष्ट्रीय राइफल तो रहेगी और उनके साथ मिलके सिविल पुलिस के साथ मिलके आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में वहाँ पे भी उसी तरह का पीस होगा जैसे कि 1989 से पहले था और लोग और भी जाना शुरू कर देंगे.
1: सो इस ऑप्टिमिस्टिक नोट पर इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं. लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला, मिस्टर नथानियल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और भारत का जो रक्षा क्षेत्र है किस तरह से इवॉल्व हुआ है पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उस पर आपने प्रकाश डाला. बहुत बहुत धन्यवाद.
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 21वें संस्करण में अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा राष्ट्रीय सामर्थ्य और सुरक्षा में आत्मनिर्भरता. इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के पूर्व महानिरीक्षक MP नथानियल. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.
4: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं. सुबह के 9:45 हुए हैं.
5: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे. हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है. साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है. हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह.
6: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी.
7: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई. क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स. असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी.
8: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई.
9: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई.
8: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है.

0: दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
1: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
0: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
1: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
0: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
1: लड़ी हक की लड़ाई,
0: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: क्या ऐसी कोई पॉलिसी है जो दे लाइफटाइम सम अशर्ड के 10% का एनुअल इनकम और शॉर्ट और फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म चूज करने की फ्रीडम?
3: है ना, LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी।
2: अच्छा, और अगर मुझे लिक्विडिटी की फैसिलिटी जैसे लोन अगेंस्ट पॉलिसी, टैक्स बेनिफिट और डेथ कवर भी चाहिए हो तो?
3: है ना, LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी।
2: अरे इतना सब कुछ एक ही पॉलिसी में? ये पॉलिसी है ऑलराउंडर।
4: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियाँ, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी। बिक्री समापन के पूर्व अधिक जानकारी और जोखिम घटकों, नियम और शर्तों के लिए विक्री पुस्तिका को ध्यान पूर्वक पढ़ें।
5: सर, 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
6: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
7: हमेशा पूछो WHY। Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
6: आपका साइबर रक्षक।
8: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
9: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:50 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल दौरा संपन्न, अब से कुछ देर बाद लौटेंगी दिल्ली। प्रदेश में अब मौके पर ही भर सकेंगे यातायात चालान, नहीं काटने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। बर्फीले क्षेत्रों में जनगणना 2027 का दूसरा चरण पूरा, जनगणना निदेशालय ने जताया आभार। और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने चुनाव आयोग से की मांग, वीरभद्र सिंह के नाम पर नई पार्टियों के पंजीकरण पर लगे रोक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपने 3 दिवसीय हिमाचल दौरे के बाद दिल्ली लौटेंगी। इससे पहले कल उन्होंने अटल टनल रोहतांग का दौरा किया और सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से टनल के निर्माण और तकनीकी विशेषताओं की जानकारी ली। राष्ट्रपति ने अटल टनल को इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट मिसाल बताते हुए कहा कि ये देश की अत्याधुनिक तकनीकी क्षमता और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के प्रयासों को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये टनल लाहौल स्पीति सहित सीमावर्ती क्षेत्रों को हर मौसम में देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बाद में राष्ट्रपति ने मनाली के हिडिंबा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। देर शाम राष्ट्रपति ने मनाली मॉल रोड की सैर की और बच्चों को चॉकलेट भी बांटी। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद कंगना रनौत व अन्य नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। प्रदेश में यातायात चालान भरना अब और आसान हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल शिमला में चालान टू पे पहल का शुभारंभ किया। इसके तहत अब वाहन चालक मौके पर ही चालान का रियल टाइम डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। इस सुविधा से लोगों को भुगतान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नई व्यवस्था के तहत परिवहन विभाग के अधिकारियों को एक्सिस बैंक द्वारा प्वाइंट ऑफ सेल यानी POS मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही है। इस पहल का उद्देश्य न केवल भुगतान को सुविधाजनक बनाना है, बल्कि चालान राशि के संग्रह में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी है। प्रत्येक लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा और राशि सीधे राज्य कोष में जमा होगी, जिससे राजस्व हानि को भी रोका जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और शासन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिरमौर जिला के ददाहू में सेवा संकल्प अभियान के तहत निशुल्क स्वास्थ्य जांच और रक्तदान शिविर लगाया गया। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों को उनके उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष सेवा संकल्प और सिद्धांतों के लिए जाने जाएंगे।
1: किस प्रकार से पिछले 25 वर्षों के दौरान उन्होंने जो जन सेवा की है, अपने बाल्यकाल से लेकर और राजनीति में भी 25 वर्षों का जो उनका कार्यकाल रहा, सेवा संकल्प और सिद्धि का जो कार्य उन्होंने किया, इस देश को आगे ले जाने का जो काम उन्होंने किया, और किस प्रकार से संघर्षमय जीवन व्यतीत करते हुए शीर्ष पद के ऊपर रहते हुए देश को आगे ले जाने में जो उनकी भूमिका रही, आज हम सबको ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम अपना बहुमूल्य योगदान इस देश की प्रगति में लगाएं।
0: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के 25 वर्ष पूरे होने पर शिमला के रिज पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने रंगोली और दीपों से सेवा उत्सव मनाया। कार्यक्रम में संगठन महामंत्री सिद्धार्थन ने सेवा ज्योति प्रज्वलित कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये 25 वर्ष केवल सत्ता या पद पर बने रहने की यात्रा नहीं, बल्कि सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र प्रथम की भावना को समर्पित है। प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना 2027 के दूसरे चरण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। क्षेत्रीय कार्य 1 सितंबर से 20 सितंबर और पुनरीक्षण कार्य 1 से 5 अक्टूबर तक डिजिटल माध्यम से मोबाइल ऐप के जरिए किया गया। इस दौरान अधिसूचित 40 प्रश्नों के माध्यम से बर्फबारी वाले क्षेत्रों में रहने वाले सभी व्यक्तियों की आवश्यक जानकारी एकत्रित की गई, जिसमें सामाजिक आर्थिक स्थिति, साक्षरता और प्रवासन से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े शामिल हैं। जनगणना निदेशालय ने इसे सफल बनाने के लिए सभी प्रगणकों, पर्यवेक्षकों और स्थानीय निवासियों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: यार, दो दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
3: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
4: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
3: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
4: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम के दुरुपयोग को रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके पति 6 बार मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कुछ लोग उनके नाम की साख का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।

0: पत्र में उल्लेख है कि राष्ट्रवादी वीरभद्र कांग्रेस, वीर कांग्रेस और राजा बुशहर जैसे नामों से नई पार्टियां बनाने की कोशिश हो रही है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उनके परिवार ने इसके लिए कोई अनुमति नहीं दी है और आयोग ऐसे किसी भी नाम से दल के पंजीकरण की अनुमति ना दें। कांगड़ा जिला में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए प्रशासन और महिला व बाल विकास विभाग ने मिशन भरपूर की शुरुआत धर्मशाला के रक्कड़ से की है। इसके तहत बच्चों को आयरन, जिंक, कैल्शियम और प्रोटीन युक्त वैज्ञानिक रूप से विकसित पूरक आहार दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
1: धर्मशाला के रक्कड़ से शुरू हुए इस अभियान के तहत बच्चों को वैज्ञानिक रूप से विकसित पोषण युक्त पूरक आहार उपलब्ध करवाया जाएगा। मिशन के तहत उपलब्ध करवाए जा रहे उत्पादों में आयरन, जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन सहित आवश्यक पोषक तत्व शामिल किए गए हैं। पहले चरण में 2 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर इस पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। बच्चों के पोषण स्तर और स्वास्थ्य मानकों में सुधार दर्ज होने के बाद अब इसे व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। अभियान के दूसरे चरण में 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भी उपयुक्त पोषण उत्पाद उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अभियान के तहत अभिभावकों को बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के साथ पर्याप्त समय देने, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग कम करने और उनके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास पर नियमित ध्यान देने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मिशन भरपूर 2.0 कुपोषण मुक्त बचपन और स्वस्थ भविष्य की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 6ठी से 8वीं के विद्यार्थी अब कौशल बोध कार्यक्रम के तहत बिना मिट्टी पौधे उगाना और बिना आग भोजन बनाना जैसे व्यवहारिक हुनर सीखेंगे। हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता ने बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू इस कार्यक्रम में 3 साल में 9 परियोजनाएं पूरी करनी होंगी।
2: सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी अब पढ़ाई के साथ खेती, तकनीक, भोजन और मानव सेवा से जुड़ व्यवहारिक कौशल भी सीखेंगे। कक्षा 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थी बिना मिट्टी के पौधे उगाने, बिना आग के भोजन पकाने, मशीनों के इस्तेमाल, पारिवारिक स्वास्थ्य पुस्तिका तैयार करने और विज्ञापन बनाने जैसी गतिविधियां करेंगे। इसके लिए प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में कौशल बोध कार्यक्रम शुरू किया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू किए गए इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जिले के पुस्तक वितरण केंद्रों में पुस्तकें भेज दी हैं। निदेशालय के निर्देशानुसार जल्द ही स्कूलों में इनका आवंटन किया जाएगा। पाठ्यक्रम के आधार पर विद्यार्थियों से अलग अलग परियोजनाएं करवाई जाएंगी ताकि वे विषयों को पढ़ने के साथ साथ करके भी समझ सकें। 3 वर्षों में प्रत्येक विद्यार्थी को कुल 9 कौशल आधारित परियोजनाएं पूरी करनी होंगी। हर शैक्षणिक स्तर पर कम से कम 3 परियोजनाएं करवाई जाएंगी। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हवाले से पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है, अटल टनल वैश्विक स्तर का इंजीनियरिंग चमत्कार, एचआरटीसी को देंगे 1500 इलेक्ट्रिक बसें शीर्षक से। दिव्य हिमाचल लिखता है, मुख्यमंत्री ने ऊना जिला में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने के दिए निर्देश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल दौरा संपन्न, आज से कुछ देर बाद लौटेंगी दिल्ली। प्रदेश में अब मौके पर ही भर सकेंगे यातायात चालान, नहीं काटने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। बर्फीले क्षेत्रों में जनगणना 2027 का दूसरा चरण पूरा, जनगणना निदेशालय ने जताया आभार। और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने चुनाव आयोग से की मांग, वीरभद्र सिंह के नाम पर नई पार्टियों के पंजीकरण पर लगे रोक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
3: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
4: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
3: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
4: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
3: जानकारी लें, अधिकार जाने।
4: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मिनी मे पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजे हैं। लीजिए पेश हैं फिल्म संगीत पर आधारित लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो रिमझिम।

नमस्कार, फिल्म संगीत के लाइफ ऑन इन कार्यक्रम हेलो रिमझिम में आप सभी का स्वागत है। और इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ भुवनेश्वरी। आज वीरवार है और हमारा ये कार्यक्रम रहता है लाइफ ऑन इन। तो इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं कुछ चुनिंदा फिल्मों के गीत। तो आज की जो फिल्में हैं उनमें शामिल हैं जुबैदा जख्म, ये तेरा घर ये मेरा घर, ये दिल आशिकाना, तुमको ना भूल पाएंगे, प्यार तूने क्या किया, प्यार इश्क और मोहब्बत, माँ तुझे सलाम, लज्जा और क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। यदि आप इन फिल्मों में से अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर है 2808034 और STD कोड रहेगा 0177। फिल्मों के नाम हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। आज की फिल्में हैं जुबैदा जख्म, ये तेरा घर ये मेरा घर, ये दिल आशिकाना, तुमको ना भूल पाएंगे, प्यार तूने क्या किया, प्यार इश्क और मोहब्बत, माँ तुझे सलाम, लज्जा और क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। जब तक आपके फोन कॉल्स हम तक पहुंचते हैं तब तक आइए सुने जोड़ी नंबर 1 फिल्म से ये गीत।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 10:04 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों का कारवां। आज के इस सफर में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त माया। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की सुबह भारतीय सिनेमा और पूरे देश के लिए एक बेहद दुखद खबर लेकर आई है। 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मरुड़ जंजीरा में जन्मे और सिनेमा की दुनिया में अमिट छाप छोड़ने वाले महान अभिनेता नाना पाटेकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। आइए उन्हें नमन करते हुए सुनते हैं उनका ये यादगार लम्हा।

श्रोताओं, एक वक्त था जब उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष देखा। पेंटर का काम किया, लेकिन कला के प्रति उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ। थिएटर के रंगमंच से अपने करियर की शुरुआत कर उन्होंने परिंदा, क्रांतिवीर, अग्निसाक्षी और अपहरण जैसी फिल्मों में अपनी दमदार आवाज़ और बेजोड़ संवाद अदायगी का लोहा मनवाया।

हिंदी सिनेमा के एकमात्र ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ खलनायक तीनों श्रेणियों में फिल्मफेयर पुरस्कार अपने नाम किए। लेकिन नाना जी सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं थे। नाम फाउंडेशन के जरिए सूखे से प्रभावित किसानों के लिए जो काम उन्होंने किया, उसने साबित किया कि उनका दिल कितना बड़ा था। तो आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओ, गीतों का कारवां, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं इस वक्त आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। आज नाना पाटेकर जी हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो आज का ये कार्यक्रम उनको श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित है। सिनेमा जगत में कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बावजूद उनका सादगी भरा जीवन, बेबाक भाषा और समाज के लिए समर्पण एक मिसाल बना रहेगा। तो आइए सुनते हैं उनकी याद में एक और खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, नाना पाटेकर ने अपने करियर की शुरुआत 1978 में फिल्म गमन से की थी, लेकिन उन्हें असली और बड़ी पहचान 1989 में आई निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म परिंदा से मिली। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके बोलने का अंदाज, उनकी आंखों का गुस्सा और एक मच्छर आदमी को या अच्छा है, बहुत अच्छा है जैसे संवाद आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। उन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय के लिए 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीता और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा था। नाना सिर्फ पर्दे के हीरो नहीं थे, वे प्रादेशिक सेना में शामिल हुए और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक मेजर के तौर पर सेवाएं भी दी थी। वे लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। तो आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत।

तीन नेशनल फिल्म अवार्ड्स और पद्मश्री से सम्मानित नाना पाटेकर आज श्रोताओं भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी फिल्मों, अपने किरदारों और अपने बेमिसाल डायलॉग्स के जरिए वे हमेशा अमर रहेंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों का कारवां, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पहाड़ों के सुर।

पहाड़ों के स्वर हिमाचली लोकगीत पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। अगला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं देवी चंद की आवाज़ में।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
2: कार्यक्रम का ये लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं धीरज शर्मा की आवाज़ में।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिली किए जाएंगे।

0: ध्यान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में यातायात चालान भरना अब और आसान हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल शिमला में चालान टू पे पहल का शुभारंभ किया। इसके तहत अब वाहन चालक मौके पर ही चालान का रियल टाइम डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। इस सुविधा से लोगों को भुगतान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नई व्यवस्था के तहत परिवहन विभाग के अधिकारियों को एक्सिस बैंक द्वारा पॉइंट ऑफ सेल यानी POS मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही है। इस पहल का उद्देश्य न केवल भुगतान को सुविधाजनक बनाना है, बल्कि चालान राशि के संग्रह में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और शासन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिरमौर जिला के ददाहू में सेवा संकल्प अभियान के तहत निशुल्क स्वास्थ्य जांच और रक्तदान शिविर लगाया गया। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों को उनके उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष सेवा संकल्प और सिद्धांतों के लिए जाने जाएंगे।
1: किस प्रकार से पिछले 25 वर्षों के दौरान उन्होंने जो जन सेवा की है, अपने बाल्यकाल से लेकर और राजनीति में भी 25 वर्षों का जो उनका कार्यकाल रहा, सेवा संकल्प और सिद्धि का जो कार्य उन्होंने किया, इस देश को आगे ले जाने का जो काम उन्होंने किया, और किस प्रकार से संघर्षमय जीवन व्यतीत करते हुए शीर्ष पद के ऊपर रहते हुए देश को आगे ले जाने में जो उनकी भूमिका रही, आज हम सबको ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम अपना बहुमूल्य योगदान इस देश की प्रगति में लगाएं।
0: प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना 2027 के दूसरे चरण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। क्षेत्रीय कार्य 1 सितंबर से 30 सितंबर और पुनरीक्षण कार्य 1 से 5 अक्टूबर तक डिजिटल माध्यम से मोबाइल ऐप के जरिए किया गया। इस दौरान अधिसूचित 40 प्रश्नों के माध्यम से बर्फबारी वाले क्षेत्रों में रहने वाले सभी व्यक्तियों की आवश्यक जानकारी एकत्रित

गई जिसमें सामाजिक आर्थिक स्थिति, साक्षरता और प्रवासन से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े शामिल हैं। पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम के दुरुपयोग को रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके पति 6 बार मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कुछ लोग उनके नाम की साख का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पत्र में उल्लेख है कि राष्ट्रवादी वीरभद्र कांग्रेस, वीर कांग्रेस और राजा बुशहर जैसे नामों से नई पार्टियां बनाने की कोशिश हो रही है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उनके परिवार ने इसके लिए कोई अनुमति नहीं दी है और आयोग ऐसे किसी भी नाम से दल के पंजीकरण की अनुमति ना दें। युवा संगम कार्यक्रम के तहत ओडिशा से पहुंचे 59 छात्र छात्राएं कल मनाली के मॉल रोड पर हिमाचल की संस्कृति और स्थानीय जीवन शैली से रूबरू हुए। ये विद्यार्थी ओडिशा के 32 जिलों से

मोड़ पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने विद्यार्थियों से मुलाकात कर हिमाचल की संस्कृति, पर्यटन और स्थानीय परंपराओं पर संवाद किया। कांगड़ा जिला में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए प्रशासन और महिला व बाल विकास विभाग ने मिशन भरपूर की शुरुआत धर्मशाला के रक्कड़ से की है। इसके तहत बच्चों को आयरन, जिंक, कैल्शियम और प्रोटीन युक्त वैज्ञानिक रूप से विकसित पूरक आहार दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे कांगड़ा जिला

0: से व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। अभियान के दूसरे चरण में 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भी उपयुक्त पोषण उत्पाद उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अभियान के तहत अभिभावकों को बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के साथ पर्याप्त समय देने, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग कम करने और उनके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास पर नियमित ध्यान देने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मिशन भरपूर 2.0 कुपोषण मुक्त बचपन और स्वस्थ भविष्य की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से इंडियन मोबाइल कांग्रेस के 10वें भाग का विशेष कार्यक्रम रिले किया जाएगा।
3: भारत में कंटेंट क्रिएशन की को भी डेमोक्रेटाइजेशन का कर दिया है। साथियों, आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए, उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है। जब मैसेज आए, तो उसे पता हो कि वह असली है या फेक। जब पेमेंट हो, तो उसे विश्वास हो कि उसका पैसा सुरक्षित है। जब वह किसी फॉर्म में अपना डेटा दे, तो उसे विश्वास हो कि उसका डेटा सुरक्षित है। साथियों, टेक्नोलॉजी स्केल तभी प्राप्त करती है जब वो ट्रस्ट हासिल करती है। और आप सभी जानते हैं कि साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम भी सीमाएं नहीं मानते। वो पहले ही बाउंड्री को बाहर चले गए। एक देश में बैठा व्यक्ति किसी दूसरे देश की मदद से किसी तीसरे देश में क्राइम कर सकता है। डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनीज, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाए जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके। भारत ने इस दिशा में अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा है और भारत अपने अनुभवों को विश्व के साथ शेयर करने के लिए हमेशा तैयार है। साथियों, इस दशक में अब सिर्फ 4 साल बचे हैं इस डेकेड में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इस एडिशन में अब आप जो चर्चा करेंगे, वो अगले दशक के रोडमैप को सशक्त करेगा। और ये रोडमैप भारत के साथ ही पूरे विश्व के मोबाइल मार्केट को दिशा देगा। बीते वर्षों में भारत ने कंज्यूमर से क्रिएटर बनने की यात्रा तय की है। अब भारत उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है जहां प्रोडक्ट डिजाइन भी भारत में होगा, उसकी टेक्नोलॉजी और आईपी भी भारत की होगी। इसके लिए

0: जरूरी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, हर जरूरी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, यानी टेलीकॉम सेक्टर में भी रिफॉर्म एक्सप्रेस तेजी से आगे बढ़ रही है। दशकों पुराने कानूनों को हम आधुनिक बना रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट के जरिए हमने मॉडर्न रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है। एजीआर और बैंक गारंटी जैसे स्ट्रक्चरल वंडर्स को रेशनलाइज, वंडर्स को वंडर्स में बदलने का काम भी हमारी तरफ से हो रहा है। और गतिशक्ति संचार पोर्टल ने राइट ऑफ वे अप्रूवल्स को डिजिटल माध्यम से और तेज बनाया है। साथियों, भारत का सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी रफ्तार पकड़ रहा है। अभी तक 5 लोकेशंस पर कॉमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अगले फेज में हमारा फोकस पूरी सप्लाई चेन पर है, यानी भारत टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्र में बड़े कदम उठा रहा है। साथियों, बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन विकास की यात्रा नित नए पड़ावों को पार करने की है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। यहां जो टेक्नोलॉजी डिस्प्ले हुई है उनका अपना महत्व है, लेकिन आईएमसी को उन पार्टनरशिप के लिए याद किया जाए जो यहां बनी है, उन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए याद किया जाए जो यहां शुरू हुए हैं, उन प्रोडक्ट्स के लिए याद किया जाए जो यहां से दुनिया तक पहुंचे हैं, और उन इनोवेशंस के लिए याद किया जाए जिन्होंने भारत से निकलकर मानवता की सेवा की है। हमें आईएमसी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके। मुझे विश्वास है कि आप सभी इसके लिए ही जी जान से प्रयास करते रहेंगे। इसी अपेक्षा के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन।

और सुहाने मौसम के लिए मशहूर है। तो इसी की बातें आज हम करेंगे तस्वीर में सुनते मशहूर है। तो इसी की बातें आज हम करेंगे तस्वीर में सुनते रहिए, साथ साथ गानों का भी सिलसिला जारी है। तो पहले गाने का लुत्फ उठाइए, फिर लौट कर आते हैं।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:16 हुए हैं। अब प्रस्तुत है महक पंजाब दी।

0: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
3: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
4: प्रोग्राम महक पंजाब तुम सुन रहे हो, लोक संगीत दी ओ मिठी महक जिस पंजाब दी मिट्टी दी खुशबू है, पिंड दी सादगी है अते मेलिया की रौनक है। आओ सुरां दे इस सफर की शुरुआत करते हाँ एक होर पंजाबी लोक गीत नाल।

0: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
3: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Why ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
0: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
3: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Why ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
4: महक पंजाब दे सफद विच दे अंत विच सुनदे हां एक होर खूबसूरत लोक गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महक पंजाब दी। FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: सुनते हैं आज का सुविचार। मामा हमाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल, टेक लाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं
3: समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह का आगाज होता है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना। लिखते हैं, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार। आगे लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम के सितम्बर माह के मासिक श्रोता संवाद में श्वेता तंवर जी के साथ जेंडर समावेशन जैसे महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय पर चर्चा हुई, जो अत्यंत सार्थक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही। समान अवसर, सम्मान तथा बिना किसी लैंगिक भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति

0: आगे बढ़ने के अधिकार पर आधारित ये संवाद हमारी सोच को व्यापक बनाने वाला रहा।
1: आप आगे लिखते हैं, आपका यह मासिक कार्यक्रम विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए अत्यंत उपयोगी है
0: जी।
1: इसके माध्यम से उन्हें NCERT द्वारा संचालित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है तथा वे इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित होते हैं
0: जी।
1: ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम विद्यार्थियों में जागरूकता, सकारात्मक सोच एवं सीखने की भावना को बढ़ावा देते हैं। इस उपयोगी एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं हमारा आभार।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल,
1: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं।
0: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में हमें बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने को मिलती है। आविष्कारों के बारे में जानने के साथ साथ भारत के अनमोल ज्ञान, संस्कृति और गौरवशाली विरासत की भी जानकारी मिली। हर प्रस्तुति कुछ नया सीखने और जानने की उमंग जगा देती है
1: जी।
0: ऐसे शानदार ज्ञानवर्धक और रोचक कार्यक्रम के लिए पूरी टीम को हृदय से बधाई और साधुवाद।
1: और अगला संदेश हमें मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का, तो लिखते हैं, प्रिय विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पूरी उमंग टीम और सभी श्रोताओं को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमें दिनांक 14/9/2026 का उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने एक प्यारे डॉगी के बारे में बताया जो अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक की कक्षा 2 पर आधारित थी
0: जी।
1: वो कहानी हमें बेहद पसंद आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी तरह से कार्यक्रम पेश किया
0: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन ने लिखा है,
1: आपका कार्यक्रम उमंग हमें बड़ा सुंदर और शिक्षाप्रद लगता है, साथ ही साथ ज्ञानवर्धक भी, हम इसके नियमित श्रोता हैं। आगे लिखते हैं कि जीवन को खुशहाल और पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए एक पेड़ हर वर्ष अवश्य लगाएं। धन्यवाद
0: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश देने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की
1: जी। तो श्रोताओं, इस क्रम में आज हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च सैनिक वीरता सम्मान परमवीर चक्र की
0: जी।
1: वैसे परमवीर चक्र का नाम तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद बहुत कम लोग जानते हैं।
0: तो आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं इसके बारे में। श्रोताओं, परमवीर चक्र की स्थापना हमारे प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ये सम्मान जल, स्थल और वायु में शत्रु पक्ष का सामना होने पर सैनिकों द्वारा दिखाई जाने वाली असाधारण वीरता और साहस दिखाने वाले भारतीय सैनिकों को प्रदान किया जाता है।
1: यानी ये विशिष्ट रूप से युद्धभूमि में दिखाई गई सर्वोच्च वीरता को दिया जाने वाला सम्मान है। आपको बता दें श्रोताओं कि इसे सैनिकों को मरणोपरांत भी दिया जाता है, और ये चक्र यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर के बराबर है
0: जी। तो अजीत जी, अब बात करते हैं इसके डिजाइन की कहानी पर। इस पदक को डिजाइन किया श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी ने। वे स्विट्जरलैंड में जन्मी, उनका मूल नाम था एवानोन लिंडा। वहाँ वे रॉयल मिलिट्री अकादमी के भारतीय कैडेट विक्रम रामजी खानोलकर से मिली और उनकी जीवन संगिनी बनी।
1: जी हाँ श्रोताओ, वे भारतीय सैन्य परंपराओं और भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थीं।
0: जी,
1: उन्होंने भारतीय संस्कृति और सैन्य परंपराओं का गहरा अध्ययन किया था, और वे एक बहुत अच्छी कलाकार भी थीं।
0: जी,
1: कला कौशल और भारतीय संस्कृति से अनुराग रखने के कारण उन्हें परमवीर चक्र को डिजाइन करने के लिए चुना गया।
0: ये कांस्य का गोल पदक है और इसे बैंगनी रंग के रिबन के साथ पहनाया जाता है। ये जानना बहुत रोचक होगा कि भारतीय सेना के इतिहास में पहला परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया।
1: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी की बेटी कुमुदिनी शर्मा के देवर मेजर सोमनाथ शर्मा को

0: डिजाइन की कहानी पर।
1: इस
0: पदक को डिजाइन किया श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी ने। वे स्विट्जरलैंड में जन्मी, उनका मूल नाम था एवानोन लिंडा। वहां वे रॉयल मिलिट्री अकादमी के भारतीय कैडेट विक्रम रामजी खानोलकर से मिली और उनकी जीवन संगिनी बनी।
1: जी हाँ श्रोताओ, वे भारतीय सैन्य परंपराओं और भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थीं।
0: जी,
1: उन्होंने भारतीय संस्कृति और सैन्य परंपराओं का गहरा अध्ययन किया था और वे एक बहुत अच्छी कलाकार भी थीं।
0: जी,
1: कला कौशल और भारतीय संस्कृति से अनुराग रखने के कारण उन्हें परमवीर चक्र को डिजाइन करने के लिए चुना गया।
0: ये कांस्य का गोल पदक है और इसे बैंगनी रंग के रिबन के साथ पहनाया जाता है। ये जानना बहुत रोचक होगा कि भारतीय सेना के इतिहास में पहला परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया।
1: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी की बेटी कुमुदिनी शर्मा के देवर मेजर सोमनाथ शर्मा को
0: छुड़ाया और अपनी जान बचाई।
2: एक किसान अपना खेत जोत रहा था, अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा,
3: मुझे क्यों मारते हो, उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा।
2: भालू ने कहा,
4: भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी।
2: किसान ने आलू बो दिए, उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। अगली बार भालू ने कहा,
4: इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी।
2: इस बार किसान ने गेहूं बो दिया, जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं, भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खींच कर रह गया। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा,
4: भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी।
2: किसान मान गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना, जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें, भालू का सिर चकरा गया।

0: अभी आपने सुना ये हास्य प्रधान कार्यक्रम किसान की होशियारी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी?

0: उसकी हर हंसी, हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।
1: लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं।
1: हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन।
1: बसंती, अरे बसी, ओ बसी कहाँ है तू?
2: अरे बुआ क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहाँ बुरांस के फूल चुन रही हूँ।
1: अरे क्या करेगी इनका तू है?
2: क्या करूँगी? गमकुआ इतर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बसी तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हाँ चल घर चल। अरे चल सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना जल्दी कर।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

अरे बसंती, बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी। अरे तू

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई, मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।

साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी।
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: उपाय क्या है, क्या करें है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
3: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
1: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
0: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
2: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
0: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
1: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
2: हाँ।
1: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
2: और क्या
1: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
2: हाँ?
0: देखो इन जंगल के पेड़ों में ही तो प्राण बसे हैं कोसी के। आमा तुम तो जरूर जानती होगी, तुम बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनात के जंगल से? बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनात के जंगल से?
1: आज से 40 साल पहले जब ब्याह कर मैं गांव आई थी, तब तो कोसी अपने उफान पर थी, और आज अब तब में उसके प्राण है। बेटा तू कौन है, कहां से आई है?
0: अब, आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
1: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा।
0: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझाकर

0: अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
1: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
2: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो
3: चलो चलो
2: चलो, हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।
4: और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती। और अब इसी कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
1: अर्शद,
2: चेतना,
1: कुसुमलता,
2: वीरेंद्र
1: और हमारी आज की विशेषज्ञ
2: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर के 12:02 हुए हैं। अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सैनिक भाइयों, जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सच्चिता। अकेले हम अकेले तुम, इस फिल्म के इस गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने।

0: हद कर दी आपने सैनखयो। इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।
1: अंदाज वही, कुछ अल्फाज है बदले,
2: सौगात नई, कुछ नए तराने,
3: तभी तो दिल ढूंढे आपसे मिलने के बहाने।
1: अब छिड़ेगी हिमगुंजन में लोक गीतों की सुरीली तान,
2: गूंजेगा खेल जगत और नॉन फिल्मी गीतों से सारा जहान।
3: 103.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी धर्मशाला पर आप और हम में दीजिए अपनी राय और सुझाव।
1: सरकारी योजनाओं और नीतियों का कार्यक्रम होगा विकास संवाद।
2: ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी धर्मशाला पर।
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी धर्मशाला, वही आपकी अपनी जानी पहचानी सी रेडियो फ्रिक्वेंसी
3: जो पहुंचे दिल से दिल तक।
0: हर दिन नई जानकारियों और मनोरंजन को लेकर आता है
4: आपका अपना कार्यक्रम सुबह सुहानी।
0: बातें करेंगे हम आपसे, मनोरंजन की सौगात भी साथ होगी
4: जब हम मिलेंगे आपसे सुबह 7:10 से 8 तक।
0: ये वो समय होता है जब जुड़ते हैं देश विदेश की जानकारियों के साथ,
4: रोजाना ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुंचाते हैं,
0: तभी तो आपकी सुबह होती है और भी सुहानी।
4: तो सुनना ना भूलें मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम सुबह सुहानी।
0: सैनिक भाइयों, कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं हिम्मत फिल्म से ये गीत।

सैनिक भयो इसी गीत के साथ हमारा आज का सैनिकों के लिए कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अब अपनी रेडियो दोस्त सचिता को ये कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिंजरा

स्वागत सारियां श्रोता सखियां दा कार्यक्रम मिंजरां च। अज्ज दे इस कार्यक्रम विच असां तुहाडे कन्ने तुहाडी अपनी रेडियो सखी माया, सारियां श्रोता सखियां जो साडी तरफी ते प्यार भरी राम राम। तां कार्यक्रम दी शुरुआत करदे सखियो इन्हां खूबसूरत पंक्तियां कन्ने। जी हां, आसमान दी ऊंचाइयों पर तिरंगे दी शान बधांदे हन वीर वायु सैनिक, देश की रक्षा वास्ते अपनी जान लगांदे हन। जी हाँ सिखियो, अज 8 अक्तूबर है ते अजे दे दिने जो वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अज दा दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना ते देश की सुरक्षा च उना दे महत्वपूर्ण योगदान जो सम्मान देने वास्ते मनाया जाता है। सिखियो, भारतीय वायुसेना दिवस असां दे देश भारतीय वायुसेना असां दे देश की रक्षा करने वाली प्रमुख सेनाएं च एक है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 जो हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश की हवाई सीमाएं की रक्षा करना ते जरूरत पौने पर देश की सुरक्षा वास्ते अपनी पूरी शक्ति लगाना है। भारतीय वायुसेना के वीर जवान दिन रात आकाश की निगरानी करते ते किसी भी खतरे का देश की रक्षा वास्ते रक्षा करने वास्ते जड़ा से हमेशा तैयार रहते हैं। अज दे दिने देश भर च अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन जड़ा सा भी किया जाता है। अज दे दिने वायुसेना दे विमान आसमाने च शानदार प्रदर्शन करते, लड़ाकू विमाना दी उड़ान ते अलग अलग हवाई करतब असा सारे मनुआ दे अंदर देशभक्ति ते गर्व दी भावना जड़ी असा पैदा करते हैं। इन्हां कार्यक्रमों दे माध्यम कन्ने ही असा सारे भारतीय वायुसेना दी शक्ति, अनुशासन ते साहस जो होर करीब का जड़ा से दिखते हैं। देश की सुरक्षा वास्ते इन्हां ने हमेशा अपना जड़ा से महत्वपूर्ण योगदान दिता है। प्राकृतिक आपदाएं दे वक्त भी सेना दे जवान राहत ते बचाव दे कम्मां च मदद करते हैं। मुश्किल परिस्थितियों मनुआ वास्ते खाने पीने की, दवाइया की ते होर भी जरूरी सामग्री पुजाने च मदद करते हैं। सखियो, भारतीय वायुसेना का जीण जड़ा से बड़ा कठिन ते चुनौतीपूर्ण हुंदा, फिर भी अपने परिवार का दूर रह करी देश की सेवा करते हैं। उन्हां दा साहस, अनुशासन, त्याग ते देश प्रेम असा सबना वास्ते प्रेरणा है। असा जो उन्हां दा हमेशा जड़ा से सम्मान करना चाहिदा ते भारतीय वायुसेना दे योगदान जो हमेशा जड़ा से याद रखना है। तो सखियो, हुण असा जो भी याद है कि कार्यक्रम विच असा अपनी सखियां जो सुनाना है एक प्यारा दिया देशभक्ति लोक गीत, तो वह सुनते हैं ये प्यारा दिया देशभक्ति लोक गीत।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
3: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
4: हमेशा पूछो WHY Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
5: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
6: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
5: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
7: एक बारी फिर स्वागत असदीय श्रोता सखेंदा कार्यक्रम मिंत्रा च। कार्यक्रम से पहले गल की थी असा भारतीय वायु सेना दिवस पर, तो भारतीय वायु सेना दिवस के कन्ने कन्ने आज एक होर दिन भी मनाया जाता है सखियो, उसके बारे च भी गल करना जड़ा से बड़ा जरूरी है। जी हाँ सखियो, अजे दे दिने जो यानी अक्टूबर महीने दे दूसरे वीरवार जो विश्व दृष्टि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिने जो मनाने का उद्देश्य जड़ा से लोगों जो आखी की देखभाल, नज़र कन्ने जुड़ी समस्याएं ते नेत्र स्वास्थ्य दे प्रति जागरूक करना है। असा दी हाखी शरीर दा एक महत्वपूर्ण अंग है। दिखा हाखी दी वजह कन्ने ही असा अपने अखे बखे दी सुंदर दुनिया जो दिखी सकते हैं, ते पढ़ाई करने वास्ते, काम करने वास्ते, चलने वास्ते, ते दैनिक जीवन च कई काम करने वास्ते खरी नज़र दा होना जड़ा से बड़ा जरूरी है। अजकल असा सारे मोबाइल फोन, कंप्यूटर ते TV वगैरह जड़े इनसे ज़्यादा दिखते, बड़े तो बड़े न्याणे भी पूरा पूरा दिन देर राती तक मोबाइल च जड़े इनसे लगे रहते हैं। इस कन्ने भी लंबे वक्त तक स्क्रीन दिखने कन्ने भी आखी च जड़े ऐसे थकान, जलन, सूखापन ते सिर दर्द ते होर भी परेशानियाँ जड़ी इनसे हुआ करती हैं। इस खातिर असा सबना जो स्क्रीन का इस्तेमाल जड़ा से जरूरत दे हिसाबे कन्ने ही करना चाहिदा, ते बिच बिच कम छड़ी करी मतलब अपनी हाखियां जो थोड़ा आराम जड़ा से भी जरूर देना है। हाखियां जो स्वस्थ रखने वास्ते संतुलित ते पौष्टिक खाना खाना भी बड़ा जरूरी है सकियो। हरी सब्जियां, मौसमी फल, दालें ते दूजे सारे पौष्टिक खाद्य पदार्थ जड़े हैं से असा दी सेहती वास्ते बड़े ही लाभदायक होंदे हैं। पूरी निंदर लेना, साफ सफाई का ध्यान रखना भी बड़ा जरूरी है। ते अगर हाखियां च कोई प्रॉब्लम हो तो बिना डॉक्टर की सलाह लेते कोई भी दवाई या आई ड्रॉप जड़ा है उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। विश्व दृष्टि दिवस सखियो असा सबना जो यही संदेश देंदा कि हाखी दी कुसी भी समस्या जो नज़रअंदाज जड़ा से बिल्कुल नहीं करना है। अगर कुसी जो भी धुंधला दुसे, हाखी च लालगी हो, लगातार परेशानी हो, जलन हो, रड़क हो, नज़र च कोई बदलाव महसूस हो तो ज़रूर नेत्र चिकित्सक का जांच करवाना जड़ा से जरूरी है। वक्त पर इलाज करवाने के लिए क्या होता कि नज़र समस्याएं जो जड़ी मतलब कोई होया करती हैं तो इन्हें जो रोकया जा सकता है। अज के दिन स्कूलों, अस्पतालों ते अलग अलग संस्थाएं द्वारा जागरूकता कार्यक्रम, नेत्र जांच शिविर ते स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य मनुआ जो नेत्र स्वास्थ्य के प्रति सावधान करना ते नज़र दी समस्याएं दे बारे च जानकारी देना है। ਸਕਿਓ ਹਾਕੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜੀਣੇ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਾਕੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਜੋ ਵੀ ਨੇਤਰ ਸਵਾਸਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹੋ ਕਿ ਸਵਸਥ ਹਾਕੀ ਸਵਸਥ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਦਿਆ ਲੋਕ ਗੀਤ। ਪਰ ਲੋਕ ਗੀਤ
8: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
6: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
5: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटापा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
3: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सखियो खरी सेहत असादे जीने दी सबना का बड़ी पूंजी है। स्वस्थ महिलाएं ही अपने परिवार ते समाज वास्ते सही तरीके कन्ने काम करी सकदियां हैं। असा पैणा घर परिवार दे जिम्मेदारी दे कन्ने कन्ने शिक्षा रोजगार ते दूजे कई क्षेत्र च अपना महत्वपूर्ण योगदान जड़ी हैं से दिंदी हैं। इस खातिर जनासा जो अपनी सेहती दा ध्यान जड़ा से जरूर रखना चाहिदा। अक्सर असा महिलाएं जो अपने परिवार दे सदस्यां दी देखभाल करदे करदे अपनी सेहती वास्ते सही तरीके कन्ने ध्यान जड़ा से असा नहीं दे पांदियां हैं। अपनी कुसी भी हल्की बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं जो गंभीरता कन्ने नहीं लैंदी हैं, ये गल बिल्कुल ठीक नहीं है सखियो। ऐसा सबना जो अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिदा ते जरूरत पौने पर डॉक्टर दी सलाह भी जरूर लेना चाहिदी। वक्ते वक्ते पर अपने पूरे शरीर दी जांच भी करवांदे रहना चाहिदा ते कन्ने कन्ने स्वस्थ रहने वास्ते पौष्टिक ते संतुलित खाना खाना भी जरूरी है। ऐसा जो

एक बारी फिर स्वागत असा दे श्रोता सिखें दा कार्यक्रम मिंजरन च। ते अगर खरा स्वास्थ्य चाहिदा हो तो असा सबना जो खरा खाना पीना जड़ा से बड़ा जरूरी है, तो खरा खरा बनाने वास्ते असा जो चलना पौना होना रसोई दे पासे। जी हाँ, असा दियां सखियां जड़ी हिंसे बिल्कुल समझी गई होनी कि हूँ असा पूजी गए हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव च, जिथू असा अपनी सखियां कन्ने गल करदे खाने पीने दी। तो चलते रसोई च कने बनांदे हैं सेवइयां यानी सेमिया दी खीर। अगर भूख लगी हो तो झटपट इदे चीज़ां जड़ी इनसे असा आराम कने आसानी कने बनाई करी खाई सकदे। तो सेमिया दी खीर बनाने वास्ते अहां जो चाहिदी सामग्री सेमिया, दुध, चीनी, काजू, बादाम, किशमिश ते इलायची, केसर पाना हो तो सह भी पाई सकदे। सबना का पहले एक कढ़ाई च देसी घी गर्म करना जितना तुहां जो जरूरी लगे। इस सेमी अपने साबे कन्ने पाई लेनी, जितने सदस्य होन खाने वाले उस साबे कन्ने। फिर हल्की आंच पर इन्हें जो पलटे कन्ने उल्ट पलट करके जड़ा से पकाई लेना। हल्का सुनहरी होने तक पुन्नी लेनी सेमिया, जलना नहीं चाहिदी। दूजे पासे दूध गर्म करना जड़ा से रखी देना, दुध उबलना देना। फिर भुनेरी सेमिया जड़ी इनसे दुध पाई देनी ते खरे कन्ने मिलाई लेनी। इस तो भी हल्की आंच पर जड़ा से तुहाने पकना देना, बिच बिच करछी कन्ने चलांदे रहना ताकि सेमिया जड़ी इनसे बर्तन दे तले कन्ने नहीं लगन। जालू सेमिया नरम हो जाएंगी तो दूध जड़ा से गाढ़ा हो जाए, तालू इस जितना भी मीठा खाना हो उस हिसाबे कन्ने चीनी पाई देनी। इसका बाद इस कटेरे काजू बादाम ते दाख पाई देनी। स्वाद ते खुशबू बधाने वास्ते इलायची पाउडर पाई देना, थोड़ी देर केसर पाई देनी। सारी चीज़ा जो कुछ देर खरे कन्ने मिलाई करी पकाई लेना। जालू सेमिया खरे कन्ने पकी जान, दूध गाढ़ा हो जाए तो गैस जड़ी असे बंद कर देनी। बस स्वादिष्ट ते सुगंधित सेमिया जड़ी इनसे बनी करी तैयार हैं। इन्हें जो गर्म या हल्का ठंडा होने पर जड़े से परोसी सकते। तो अज तैयारी करा सीखियो सेमिया बनाने की, कन्ने कन्ने सुना एक होर प्यारा दिया लोक गीत।

इसी लोक गीत कन्ने आज दे कार्यक्रम विच बस इतना ही। कार्यक्रम विच तकनीकी सहयोग रहा अंकित धीमान दा। इस कार्यक्रम दे प्रस्तुत करता है डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। अपनी रेडियो से की माया जो कार्यक्रम जो संपन्न करने दी अनुमति दिया। प्यारी सखियों, राम राम।

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI
1: आपका।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है। उन्होंने कहा कि इस मंच ने दूरसंचार क्षेत्र में भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
4: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMT को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने की सुविधा दी है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रसार तभी हो सकता है जब वो किफायती और समावेशी हो। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में GST विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए। भारत ने आगामी 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 में महत्वाकांक्षी और संतुलित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लचीलापन, व्यावहारिक दृष्टिकोण और आपसी सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया है। सम्मेलन से पहले फिजी में आयोजित एक बैठक के दौरान राजनीतिक समझौते के संभावित क्षेत्र और परिणाम विषय पर पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के मद्देनजर अब केवल बयानबाजी से आगे बढ़कर कार्रवाई और आपसी सहमति की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस महत्वपूर्ण अवसर ने वायुशक्ति के एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों के लिए देश की रक्षा प्रणाली को आकार दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा

श्रोताओं, इस गीत के गीतकार अगर आप बता दें तो क्या ही अच्छा है। वैसे इस फिल्म को अगर आपने देखा है तो इसमें बहुत ही अलग और कम चर्चित एक कलाकार थे, तो उनके बारे में भी अगर, यानी उनका नाम अगर आप लिखें तो क्या ही बात है। आबरू फिल्म का गीत हमने आपको सुनाया, सोनिक ओमी की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता ने नाना पाटेकर जी को याद करते हुए लिखा है कि हमारे सिने जगत को नाना पाटेकर जैसे कलाकार के जाने से बहुत क्षति हुई है, हमने एक शानदार कलाकार खो दिया है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। एक और श्रोता लिखते हैं कि नाना पाटेकर जी का देश प्रेम फिल्मों में झलकता है, देश से बहुत प्यार था, उन्हें सामाजिक मुद्दों को बार बार फिल्मों के जरिए उठाते थे। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि नाना पाटेकर की हर फिल्म मैंने देखी है, उनके अभिनय की मैं बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूँ। आज मुझे फिल्म प्रहार का सीटी वाला सीन याद आ रहा है, सीटी बजवा कर उन्होंने उस फिर एक मतलब इन्होंने कुछ अपनी बातें लिखी हैं फिल्म की। एक श्रोता हमारे आज के जो आज की जो इबारत है, टेक्स्ट है, उस पर लिखते हैं कि हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, इस गीत को इन्होंने याद किया है। ठंडी हवाएं लहरा के आएं, गुलाबी आँखें जो तेरी देखें। जी हाँ, गुलाबी शब्द तो ऐसा है श्रोताओं, इससे बड़े सारे सवाल हैं जो आज आपको बताने हैं। मसलन एक बड़ी प्यारी सी एक मछली है, उसका क्या नाम है जो गुलाबी होती है और कहें तो भारतवर्ष में पाई नहीं जाती, लेकिन आप बता सकते हैं तो बताएं ज़रूर कि उस मछली का क्या नाम है। और राजस्थान के ख़ास शहरों को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। और अपने शहर का मौसम तो आप बता ही रहे हैं, गुलाबी ठंड क्या आपने राजस्थान में कभी महसूस की है, या इस समय कभी आप राजस्थान गए हों तो वो भी आप हमें ज़रूर लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी धूप है लेकिन शाम को मस्त ठंडा मौसम हो जाता है। जी हाँ, शाम भी बहुत ही सुहावनी होती है आजकल। ये फिल्म आपको पहचाननी है।

इसके पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया था श्रोताओं आबरू फिल्म का, वो दीपक कुमार पर फिल्माया गया गीत था और जीएल रावल के बोल थे, सोनी कोमी का संगीत था। वीर दुर्गादास फिल्म का ये गीत आपने सुना, भरत व्यास की रचना है, संत त्रिपाठी की तर्ज। और एक श्रोता के उद्गार हैं कि नाना पाटेकर जैसे कलाकार सदियों में आते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि इन्होंने दी है। और एक और श्रोता ने लिखते हैं कि सुबह सुबह की हल्की ठंडक, फिजाओं में रोमानियत और रंग बिरंगे फूलों पर ओस की बूंदें शरीर और दिमाग दोनों को तरोताज़ा कर देती हैं। इस मौसम में न बहुत ज़्यादा गर्मी और ना कांपने वाली सर्दी होती है। कांपने वाली सर्दी मन एक अजीब सी शांति और अपनों के बीच आने का एहसास जगाता है। फूलों पर गिरी ओस की बूंदें मानो प्रकृति ने मोतियों के हार से सजाया हो, इसलिए ये नज़ारा आँखों और दिल दोनों को सुकून देता है। लेकिन राजस्थान में कुछ अलग सा सुकून होता है श्रोताओं, वहाँ के बारे में आप ज़रूर लिखिए कि वहाँ की रातें अगर आपने देखी हैं इस गुलाबी ठंड की, वैसे ये तो पूरा शहर पूरा स्टेट ही कहें तो गुलाबी गुलाबी सा है। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि भारतीय फिल्मों में नाना पाटेकर जी का जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है और उनकी फिल्मों के बारे में लिखा है, क्रांतिवीर, तिरंगा, परिंदा, शक्ति, अग्निसाक्षी जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने किरदार से जान डाल दी। नाना जी की निर्देशित फिल्म प्रहार मुझे उनकी सबसे प्यारी फिल्म लगती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि महान कलाकार नाना पाटेकर की संवाद अदायगी उन्हें सबसे अलग करती है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि हारूद के बारे में कि जिसका कश्मीरी भाषा में अर्थ पतझड़ का मौसम होता है, ये समय खूबसूरत मौसम सितंबर के अंत तक से लेकर नवंबर के मध्य तक रहता है। जी हाँ, और जो अक्टूबर का महीना है श्रोताओं, ये ख़ास कश्मीर जाने के लिए ये मौसम जो होता है, ये समय जो होता है बड़ा ही मुफीद होता है। इस समय अगर आप जाएँ तो आप देख सकते हैं कि चिनार के पत्ते किस तरह से रंग बदलते हैं। और इसी को लेकर हमने इबारत की जो अंतिम लाइन थी वो लिखी थी, क्योंकि लाल सुर्ख रंग सी चादर कहें या ओढ़नी सी कहें कश्मीर में बिछी हुई नजर आती है। एक और श्रोता लिखती हैं कि कश्मीर में हारूद का अर्थ पतझड़ का मौसम होता है और कश्मीरी संस्कृति, जीवन शैली और आर्थिकी में इस मौसम का एक बेहद खास स्थान है। इसके साथ ही कश्मीर की पृष्ठभूमि पर बनी हारूद नाम की एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म भी है। तो एक और श्रोता लिखती हैं कि कल शाम की बारिश है और भोर की बारिश ने हमारे शहर को बेहद खुशनुमा बना दिया है, हवाओं में ठंडक आ गई है और अभी धूप का टुकड़ा हमारे छत और बालकनी पर भी आकर सिमट गया है, जैसे कह रहा है ठंड आया है, मैं तो भी साथ में हूँ। जी हाँ, जहाँ ठंड देर से पड़ी है श्रोताओ, वहाँ पर तो ये बारिश जो होती है वो बेमौसम आती है, जिससे कि ये ठंडक को ला सके। फिलहाल गुलाबी ठंड है। ये चांद सा

कश्मीर की अगर बात करें तो श्रोताओं, तारीफ कितनी भी करें, शब्द इस प्रदेश के लिए कम ही पड़ जाते हैं। आप सुन रहे थे एसएच बिहारी की रचना, संगीतकार आप अगर बता दें तो क्या बात है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गुलाबी डॉल्फिन अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है और इसके बारे में पूछा, क्या सही है, इसको जानने का इंतज़ार है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है श्रोताओं। एक और श्रोता लिखते हैं कि नाना पाटेकर साहब चले गए और उन्हें हम याद करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि अपनी दमदार आवाज़ और अभिनय से फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने वाले नाना पाटेकर जी को हम उनके श्रद्धांजलि उन्हें देते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की ये इबारत केवल मौसम के बदलाव का वर्णन नहीं करती बल्कि प्रकृति की मानवीय भावनाओं के बीच गहरे रिश्ते का एक सुकुमल दस्तावेज है। गुलाबी ठंड की आहट को हवाओं की सेहरन और फिजाओं की रुमानियत के साथ पिरोना बेहद असरदार है। ये ठंड सिर्फ तापमान का गिरना नहीं बल्कि भावनाओं के जागने का प्रतीक बन जाती है। ये तो बताइए श्रोताओं कि गुलाबी रंग किन रंगों से मिलकर बनता है, यानी आपको सवाल याद रखने हैं। पहला सवाल, गुलाबी रंग किन रंगों से मिलकर बनता है, और दूसरा सवाल एक और है कि गुलाबी रंग का इस्तेमाल खूब हमारे किस त्यौहार में किया जाता है, और एक जगह की तो पगड़ी भी गुलाबी है। तो आप बताएं, ये सारे सवाल आपके लिए हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो इस समय शाम को मस्त ठंडा मौसम हो जाता है लेकिन दिन में अच्छी धूप है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि हवाओं का रुख बदल चुका है, ठंडी गुलाबी हवा ने धीरे से दिल पर दस्तक जैसे दी है, फिजाओं में रंग से घुलने को आ गई, वो सुहाना मौसम, सुबह की धूप और घास पर ओस की बूंदें मोती बिखरने लगे, ऐसे में विविध भारती का साथ, वाह क्या बात है। जी हाँ, विविध भारती है हमेशा से आपकी साथी। तो ये गीत आप सुनिए और जो हमने सवाल आपसे पूछा वो भी बताइए। इस गीत में जो कलाकार नजर आ रहे हैं श्रोताओं, उनको अगर आप बता सकें उनके बारे में तो क्या ही बात है।

नंदा और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया द ट्रेन फिल्म का गीत आपने सुना और बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने तमाम अपनी बातें हमसे साझा की हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे कच्छ में भी सुबह सुबह गुलाबी ठंड शुरू हो गई है, रात से ही ओस गिरना शुरू हो जाती है, सुबह तो ठंड लगती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि इस समय कश्मीर में फसलों और ख़ासकर केसर की कटाई का मौसम ये माना जाता है, जिसे स्थानीय लोग उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। और एक हमारे श्रोता नाना पाटेकर जी को याद करते हुए लिखते हैं कि इनकी फिल्म नट सम्राट देखी है, क्या भूमिका थी उस फिल्म में इनकी, और अभी तक वो आखिरी दृश्य याद आता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि महान कलाकार नाना पाटेकर की संवाद अदायगी उन्हें बहुत पसंद है। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने नाना पाटेकर जी को याद किया है। वहीं हमारी एक श्रोता लिखती हैं कुछ गीतों के बारे में, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, कहां सिलाई हो जाने मन किताबी चेहरा, और तमाम गीतों को इन्होंने याद किया है, लिखा है इसके बारे में। एक और श्रोता ने लिखा है कि बदलते मौसम की गुलाबी ठंड, वादियों की हवाएं और चांदनी रातें अक्सर दिल में किसी खास यादों का चिराग जला जाती हैं। इस खूबसूरत माहौल में किसी को याद करना और खो जाना स्वाभाविक। हवाओं में घुली है ये गुलाबी सी ठंड, चांदनी रात में बहकी है ये वादियाँ मलंग, ऐसे में दिल को कोई याद ना आए तो कैसे हो सकता है। और भी कुछ लाइनें इन्होंने लिखी हुई हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि सुबह सुबह जब मैं छत पर जाती हूँ तो एक दो दिन से हल्की गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है, इसका मतलब है मौसम करवटें ले रहा है और जो त्यौहार हैं वो भी आने वाले हैं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि नाना पाटेकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे, हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और जी हाँ, नाना पाटेकर की यादें तो कुछ ऐसी ही हैं। श्रोताओं, आज की इबारत जो गुलाबी ठंड को लिए हुए है, इसी बाबत हम आपसे बातें कर रहे हैं। तो जो जयपुर है वो तो पिंक सिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ से एक कार्यक्रम आता है रात 8 बजे, इस इमारत की गुलाबी रंग को लिए क्या खासियत है ये आप हमें बताएं, और हम किस इमारत की बात कर रहे हैं।

राजश्री और शमी कपूर पर फिल्माया गया फिल्म जानवर का ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे। श्रोताओ, अब कुछ सवाल जो हमने आपसे पूछे थे कि गुलाबी रंग किन रंगों को मिलाकर बनता है, ये आपने अभी तक नहीं भेजा है, तो आप इसे ज़रूर भेजें। और एक तितली होती है श्रोताओ जिसके गुलाबी पंख होते हैं, ये कौन सी तितली है? मतलब दो तीन सवाल की बौछार आप पर कर दी जाए, मुझे ऐसा लगता है। और गुलाबी जो चूड़ियाँ हैं उनका बाजार भारत में कहाँ है? एक और आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि एक सुंदर सा गुलाबी फूलों का पेड़ होता है, इस पेड़ को यानी इस फूल को क्या कहते हैं? तो अब बढ़ते हैं उन श्रोताओं के कमेंट्स की तरफ जिन्होंने अपने कमेंट्स भेजे हैं। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि हर बदलता मौसम अपने साथ एक नई आभा लेकर आता है और प्रत्येक जाने वाला मौसम अपनी नियति जानता है। जाने वाला मौसम विदा लेते समय कुछ मुरझाया सा, कुछ अलसाया सा लगता है, इसलिए गुलाबी ठंड लिए इस मौसम में मन में अलग ही उत्साह को सुरूर रहता है। बदलते मौसम के मन पर कोई व्याख्या नहीं लिखी जा सकती, जो सामने है उसका स्वागत करके ही जीवन को चलाना का हुनर सीखना होगा। गुलाबी ठंड अपने साथ ढेर सारे उत्सव लेकर भी आती है और ये सच है कि ये प्रकृति ईश्वर की सुंदरता का वहन करती है। हर बदलता मौसम इसकी पहचान है। तो ठंड जो है उसकी तो शुरुआती दौर हैं और आपने इसकी बहुत सारी तैयारियां भी की होंगी, तो क्या ख़ास आप ध्यान दे रहे हैं ये भी आप हमसे बता सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हवाओं, ठंड, रोशन नज़र, पर्दा, गुलाबी, कश्मीर और सपनों जैसे ये शब्द इन्होंने चुने हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि पता नहीं चला मौसम में कब गुलाबी सर्दी ने अपना शबाब घोल दिया। सुबह योगा में जाती हूँ तो पार्क में हरी घास पे छोटी छोटी शबनम की बूंदें किसी चमकीले मोती सी लगती हैं। हल्की सी सिहरन उड़ते हुए पंछी, नीला आकाश, सब कुछ जैसे मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो क्या इन ओस की बूंदों को कभी आपने छुआ है? तो आप ज़रूर बताएं। वैसे हमारे आज के जो गीत हैं श्रोताओ, उनमें भी आपने देखा होगा कि गुलाबी रंग छाया हुआ है, जैसे इस गीत में।

देव मुखर्जी और तनुजा पर फिल्माया गया एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। और हमारे श्रोताओं ने इस गीत की बातें भी बिल्कुल ठीक लिखी हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आप जयपुर की जिस इमारत की बात कर रही हैं जो विविध भारती पर रात 8 बजे कार्यक्रम प्रसारित होता है, उसका नाम हवा महल है। जी हाँ, और ये इमारत जो है वो गुलाबी पत्थरों की सुंदर सी जो एक तामीर है देखते ही बनती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि हवाओं का रुख बदल चुका है, ठंडी गुलाबी हवा ने धीरे से दिल पर दस्तक जैसे दी है और फिजाओं में कुछ रंग का एहसास होता है, घास पर भी ओस की बूंदें हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि गुलाबी रंग लाल और सफ़ेद रंग को आपस में मिलाने से बनता है, क्या ही बात है। एक और श्रोता लिखती हैं कि बेमिसाल अभिनेता नाना पाटेकर का जाना आँखों को नम कर गया है, ईश्वर महान अभिनेता को अपनी शरण में लें, दिल से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देती हूँ, विनम्र नमन। एक और श्रोता लिखते हैं कि इसी रंग के बारे में, गुलाबी रंग के बारे में, लेकिन तितली का जो पंख पिंक होता है यानी गुलाबी होता है उस बारे में आपने लिखा नहीं, और हमने आपसे पूछा था कि गुलाबी चूड़ियों का सबसे बड़ा बाजार भारत में कहाँ है, वो भी आप ज़रूर बताएं अगर आप बता सकते हैं तो। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ कोलकाता में आषाढ़ महीने से बारिश लगी हुई है जो अभी अश्विन मास तक भी हो रही है, कल भी बरसात

बड़ा ही खूबसूरत था लंदन पैलेस का ये सीन। श्रोता, नाइट इन लंदन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। माला सिन्हा और विश्वजीत पर फिल्माया गया ये गीत था, आनंद बख्शी की रचना थी। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि अर्ली मॉर्निंग जब गार्डन में पैरों पर छोटी छोटी बूंद बिखरी रहती है, यानी ओस की बूंदों की ये बात कर रही हैं, तो उनको छूकर आँखों से लगाने में बहुत सुखद एहसास होता है। जी हाँ, बहुत सारे लोग ओस की बूंदें जो हैं उन पर चलते हैं या फिर उन्हें आँखों में लगाते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझे ठंडियों की सुबह सवेरे 5 बजे जो गुलाबी ठंड पड़ती है मेरे मन को बहुत लुभाती है, मुझे बहुत पसंद है ये मौसम। सुबह सुबह ठंड में टहलने का बहुत पसंद है, टहलना बहुत पसंद है जब हल्की हल्की ठंड होती है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मैं हाल ही में राजस्थान के एक साल में पयाना, बंसी, पहाड़पुर, हिंटोन सिटी रहकर मंदिर के लिए पिंक पत्थरों को नक्काशी बनवा कर ही आया हूँ, तो शायद इन्होंने इस पर काम भी किया हुआ है, तो उस बारे में ये लिखते हैं। जी हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोता हैं श्रोताओं जो राजस्थान की वादियों में रहते हैं और जो गुलाबी बलुआ पत्थर होते हैं उनके काम यानी ऐतिहासिक इमारतें, खूबसूरत जगहों का निर्माण करते हैं आज भी, तो ऐसे हमारे कोई श्रोता हैं तो अपनी बातें वो भी लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, गुलाबी और पीला रंग अक्सर पूजा पाठ और शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। हमने गुलाबी रंग की बात करी थी श्रोताओं, होली में बड़ा इस्तेमाल होता है ये रंग, इसका जवाब ये था। और होली में तो बहुत सारे रंग इस्तेमाल होते हैं लेकिन गुलाबी रंग खास नज़र आता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जी हाँ, मैंने राजस्थान की गुलाबी नगरी में गुलाबी ठंड में बहुत भ्रमण किया है। राजस्थान का ही वाशिंदा हूँ, बेशक दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ के गुलाबी

एक पक्षी है श्रोताओ जो गुलाबी रंग के लिए मशहूर है, फ्लेमिंगो इसका नाम है। और हमने आपसे पूछा था कि जो राजस्थान है उसमें गुलाबी जो इमारतें हैं उनकी खासियत क्या है, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है कि गुलाबी रंग के पत्थर से ये बनी होती हैं। और एक सवाल हमने आपसे अभी भी पूछा है जो आपको बताना है, और एक पेड़ है जिसमें गुलाबी रंग के फूल जो हैं वो खूबसूरती से खिले होते हैं, चेरी ब्लॉसम ये है। और अब एक सवाल आपसे पूछते हैं कि अब जो ठंड का मौसम है इसमें बड़ा ही प्यारा सा एक अलग शबाब लिए हुए अमरूद आता है जो गुलाबी रंग की भी अहमियत को लिए हुए होता है, और ये कहाँ का है, किस बाग का है, अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताएं।

0: माँ को भी समझा दो, बस इतना बता दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई
1: वैर। एक फूल दो माली, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे साधना और संजय खान पर फिल्माया गया। इसके पहले शिकारी का गीत हमने आपको सुनवाया, अजीत और रागिनी पर फिल्माया गया वो गीत था। श्रोताओं, एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि बेईमान ही होता है, मौसम कब बदल जाए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसका इंतज़ार भी बना रहता है। हमको प्रकृति को प्यार करने वाले को मौसम का रूठना फिर वापस आना, ये भी जीवन की एक प्रक्रिया होती है। अब आप एक सवाल और बता दें, एक तो हमने आपसे एक फल का सवाल पूछा है कि हरे और गुलाबी रंग का ये जो फल होता है, यानी अमरूद भी शायद हमने आपको बताया है, ये कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। और एक गुलाबी रंग की झील है, अगर आप उसके बारे में जानते हो तो जरूर लिखें। ये कौन से शहर की शूटिंग है श्रोताओं?

यहाँ फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं सुजीत कुमार और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया जिस झील को हमने पूछा है श्रोताओं, ये लेक हिलर झील है ऑस्ट्रेलिया की जो गुलाबी रंग की है और ये अमरूद प्रयागराज यानी इलाहाबाद के खुसरो पार्क में पाया जाता है।

फिल्म आराधना के इस गीत के साथ ही श्रोताओं सुरीला सफर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया संगीता श्रीवास्तव के साथ। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

नमस्कार दोस्तों, आसमान को देखकर अक्सर हमारे मन में उड़ने की इच्छा जागती है, लेकिन किसी देश के लिए आसमान सिर्फ उड़ान भरने की जगह नहीं, उसकी सुरक्षा का प्रहरी होता है। जल, थल और नभ देश की सुरक्षा की ये तीन मजबूत स्तंभ हैं, और नभ की जिम्मेदारी संभालती है हमारी भारतीय वायुसेना। जी हाँ, आज 8 अक्टूबर, आज है भारतीय वायुसेना दिवस, वो दिन जब हम उन जाबाजों को सलाम करते हैं जिनकी निगाहें आसमान पर और दिल तिरंगे के साथ धड़कता है। वायुसेना की ताकत सिर्फ उसके लड़ाकू विमान में नहीं, असली ताकत है उन वीरों का साहस जो देश के लिए हर चुनौती के सामने डटे रहते हैं।

उड़ान सुनने में कितना खूबसूरत शब्द है, लेकिन एक वायु योद्धा के लिए उड़ान सिर्फ रोमांच नहीं, जिम्मेदारी है। आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ते वक्त हर पल सतर्क रहना, कठिन परिस्थितियों का सामना करना और जरूरत पड़ने पर अपनी जान की बाजी तक लगा देना, इसके लिए सिर्फ पंख नहीं हौसला चाहिए। वायुसेना में शामिल होने वाला हर जवान अपने भीतर एक ऐसा दिल लेकर उड़ता है जिसे ऊंचाई डराती नहीं बल्कि चुनौती देती है, क्योंकि कुछ उड़ानें मंजिल के लिए नहीं होती, कुछ उड़ानें वतन के लिए होती है।

लेकिन वायुसेना की कहानी सिर्फ आसमान में दुश्मन के मुकाबले की कहानी नहीं है। जब बाढ़ में गांव डूब जाते हैं, जब भूस्खलन के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं, जब किसी दुर्गम पहाड़ी इलाके में लोग मदद का इंतजार कर रहे होते हैं, तब भी आसमान से मदद उतरती है। कहीं हेलीकॉप्टर लोगों को सुरक्षित निकालते हैं, कहीं भोजन, दवाइयाँ और ज़रूरी सामान पहुँचाते हैं, और कहीं हमारे जवान अपने साथियों को कठिन से कठिन स्थान तक पहुँचाते हैं। योद्धा हो या आपदा, सीमा हो या संकट, भारतीय वायुसेना ने बार बार अपने साहस और सेवा का परिचय दिया है। और जब इन वीरों को आकाश की ऊंचाइयों पर तिरंगे के साथ देखते हैं, तो मन में बस एक ही भाव आता है, इनकी उड़ान भले ही आसमान में हो, लेकिन इनके दिल में हमेशा तिरंगा रहता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक 20 स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये अपनाने का आरोप लगाया। कहा, पाकिस्तान आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की बात छुपा नहीं सकता। और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है।
1: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMT को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं तक लोगों को पहुंचाने में सुविधा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
1: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6,000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है, हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है, इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार ऑपरेटरों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
2: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है, वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
0: इस आयोजन में दुनिया भर के तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों, नेत्र निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नव प्रवर्तकों को एक मंच पर लाया गया है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में GST विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा हो रही है। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक एआई की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अब उन देशों में शामिल है जिन्होंने एआई को अपनाकर इसके वास्तविक लाभ हासिल किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने ये निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिए जिसमें दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच अनैतिक व्यवहारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। प्रस्तावित समिति संबंधित पक्षों की राय और सुझाव पर विचार करेगी, साथ ही ये देखेगी कि क्या दवा कंपनियों की विपणन पद्धतियों को नियंत्रित करने के लिए किसी वैधानिक ढांचे की जरूरत है या नहीं, और यदि है तो उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए। केंद्र सरकार से इस संबंध में हलफनामा दायर करने को गया है। अगली सुनवाई अगले साल 29 जनवरी को होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघुपुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। श्री पुरी ने आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने के पाकिस्तान के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि तालिबान सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। श्री पुरी ने मसूद अजहर के बारे में सूचना देने के लिए 70 लाख रुपए के इनाम की नई घोषणा को भी दिखावा बताया। प्रमुख आतंकवादी हमलों का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराना आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करता है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए। भारत ने पिछले कुछ दिन में रियाद के अबहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। इसमें आम नागरिकों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में ऐतिहासिक जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्विकास की जानकारी दे रहे हैं।
6: जलियांवाला बाग का जिक्र होते ही वर्ष 1919 में अमृतसर में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए जुल्म की दर्दनाक यादें ताजा हो जाती हैं। वह 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर ने अपने सैनिकों से सैकड़ों बेगुनाहों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाकर उन्हें मार डाला था। ये लोग रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस समय इन शहीदों की याद में बने जलियांवाला बाग यादगार को दशकों बाद पुनर्विकसित कर 28 अगस्त 2021 21 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स में विकास के कई काम हुए। पंजाब की अपनी भवन निर्माण शैली के अनुसार इसकी विरासत बहाली का काम बहुत ध्यान से किया गया। उस वक्त पंजाब में घटित ऐतिहासिक अहमियत की घटनाओं को दिखाने के लिए 4 म्यूजियम गैलरियां बनाई गईं और एक साउंड एंड लाइट शो शुरू हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों से इस यादगार को देखने और नतमस्तक होने आए सैलानियों ने इसके पुनर्विकास के काम की तारीफ की।
7: मोहनलाल जोधपुर से, जो हमने किताबों में पढ़ा था वो मैंने आज यहाँ पे आकर के खुद ने अपनी आंखों से देखा और मुझे महसूस भी हो रहा है। गवर्नमेंट इंडिया ने बहुत अच्छा किया है जिससे कि यहाँ पे सब कुछ युवा पीढ़ी है जो, और आगे की जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो आगे आएंगे, आने वाली पीढ़ी भी देखेगी यहाँ पे कि पहले कैसे हुआ था और क्या हुआ था। गवर्नमेंट इंडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा।
8: मैं बहुत टाइम पहले आई थी उसमें लेके और अब से बहुत काफी सारे चेंजेस हुए हैं। पहले ये मेंटेन नहीं था, अब काफी अच्छे से मेंटेन किया गया और यहाँ पे गार्डन बहुत अच्छा है, बहुत सफाई है यहाँ पे। इवनिंग में लाइटनिंग भी होती है, पूरा हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कैसे कैसे क्या हुआ पहले और क्या क्या चेंजेस अभी आए हैं। आने वाली पीढ़ी जो आगे आ रही है जनरेशन, उनको इसके बारे में काफी अच्छे से डीपली पता चलेगा।
9: मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है, मैं वाराणसी से आया हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ के बारे में सुना हुआ था अपने दादा परदादा के मुंह से, बट आज हमने ये कुछ चीजें आके यहाँ पे वो देखे कि जैसे लगा कि हमने मतलब अपनी मिट्टी से जुड़े हुए सब चीजें हमको यहाँ पे मिला और काफी चीजें देख को हमको ये लगा कि उस समय जो हुआ था हमारे यहाँ के गवर्नमेंट सरकार ने ऐसा कुछ किया कि ये चीजें देख के जाने के बाद हम अपने अगली पीढ़ी को भी बता सकते हैं कि एक बार वो यहाँ पे आए जरूर।
6: जलियांवाला बाग मेमोरियल को आजादी की लड़ाई के दौरान भारतीयों के बलिदान की निशानी के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे।
10: कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो।
11: विश्वनाथ पाटेकर, जिन्हें दुनिया नाना पाटेकर के नाम से जानती है, उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुड जंजीरा में हुआ था। नाना पाटेकर उन कलाकारों में से थे जो पर्दे पर आते ही किरदार में जान डाल देते थे।
12: आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत।
11: 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित नाना पाटेकर ने परिंदा, क्रांतिवीर, अग्नि साक्षी, नट सम्राट, अब तक 56 और यशवंत जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ी। वर्ष 1978 में गमन से बॉलीवुड में कदम रखने वाले नाना पाटेकर ने अलग अलग तरह के किरदारों को पर्दे पर जीवंत किया। शक्ति द पावर, अपहरण, टैक्सी नंबर 9211 और राजनीति जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। फिल्म वेलकम में गैंगस्टर उदय शेट्टी के किरदार से उन्हें खास तौर पर लोकप्रियता मिली। नाना पाटेकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी सिनेमा से अपना रिश्ता बनाए रखा। हाउसफुल 5, ओ रोमियो और हाल ही में रिलीज हुए सूबेदार में भी नाना नजर आए। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज शाम 4 बजे पुणे के पास डोंजे में अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने आज वायुसेना की बढ़ती क्षमताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वायुसेना की असली ताकत केवल उन्नत उपकरणों और तकनीक में नहीं बल्कि इसके योद्धाओं में निहित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को

0: नमन कर।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है।
2: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
3: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
2: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
1: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। अब मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी सुनने वालों का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में गंगा की लहरें फिल्म का ये गीत आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत था, संगीत चित्रगुप्त का था।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

शैलेंद्र की रचना आपने सुनी, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। छोटे नवाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में।

0: रवि की तर्ज राजेंद्र कृष्ण के बोल मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी ये रास्ते हैं प्यार के।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
3: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
2: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
3: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
2: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

फिल्म जानवर का दो गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ों में शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और अब आपको सुनवाते हैं वो कौन थी। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के युगल स्वरों में, राजा मेहदी अली खां के बोल हैं मदन मोहन की तर्ज। और यही है श्रोताओं आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाज़त संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली की यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है। उन्होंने कहा कि इस मंच ने दूरसंचार क्षेत्र में भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इतने वर्षों में ये मंच भारत की गति और उसकी आकांक्षाओं को प्रदर्शित करने वाला मंच बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं।
2: 2022 में इसी मंच से हमने देश में 5G की शुरुआत की थी। फिर 2023 में मैंने बताया था कि भारत कैसे 5G रोल आउट से 5G रीच आउट की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और आज हम सभी देख रहे हैं देश के हर जिले तक 5G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। आज 5.5 लाख से अधिक बेस स्टेशन भारत में हैं, जहां से 5G नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, और मोबाइल इंटरनेट स्पीड 2022 की तुलना में 10 गुना बढ़ी है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे के बाद आज मनाली के सासे हेलीपैड से दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ने अपने प्रवास के दौरान एम्स बिलासपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसके अलावा राष्ट्रपति ने अटल टनल रोहतांग का दौरा भी किया और प्रसिद्ध हिंडिम्बा माता मंदिर में पूजा अर्चना की। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने आज उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी शिमला शहरी के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने विचार रखने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया है।
3: 6 तारीख को जितने भी हमारे लीडर ओपोजिशन है, MPs हैं, सब ने जंतर मंतर पर धरना किया, जिसमें राहुल जी, प्रियंका जी, सभी शीर्ष नेतृत्व वहाँ पे थे। स्पीच का अधिकार सबका है, भाषण देने का अधिकार सबका है, अपने विचार रखने का अधिकार सबका है। जिस तरह सभी इलेक्टेड लोगों को, MPs को वहाँ से हटाया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, यहाँ तक कि अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया, आज उसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा इस तरह का धरना दिया जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो, और जिन्होंने भी शीर्ष नेतृत्व के साथ के साथ उनकी भावनाओं को हाथ किया है, संविधान को छेड़ा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
1: प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी व विधायक रणधीर शर्मा ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ कांग्रेस के आंदोलन को असंवैधानिक करार दिया है। शिमला में एक पत्रकार वार्ता में आज उन्होंने कहा कि कांग्रेस संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ आंदोलन कर जनता में भ्रम फैला रही है। रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी आंतरिक कमजोरियों से ध्यान हटाने के लिए चुनाव आयोग को बदनाम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मतदाता सूची की शुद्धता और हर पात्र नागरिक के मताधिकार की पक्षधर है।
4: SIR विशेष गहन पुनरीक्षण जो मतदाता सूचियों का होना है, वो एक संवैधानिक व्यवस्था है। अभी तक कुल मिलाकर इस देश में 12 बार SIR की प्रक्रिया पूरी हुई, और इसमें से अधिकतर समय ये विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी की सरकारों के समय हुई। संवैधानिक व्यवस्था होने के बावजूद उसका विरोध करना और उसको लेकर आंदोलन करना निश्चित रूप से असंवैधानिक है। SIR को लेकर कांग्रेस का विरोध उसकी विरोधाभासी कॉन्ट्राडिक्टरी मानसिकता को भी दर्शाता है।
1: सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा है कि देश को टीबी मुक्त बनाने के अंतिम चरण के तहत जन भागीदारी को और मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य, युवा व खेल और रक्षा मंत्रालय के सहयोग से जोश स्क्वाड का गठन किया गया है, जिसमें NCC, NSS, माई भारत के वॉलंटियर्स और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राजीव भारद्वाज ने कहा कि ये टीमें घर घर जाकर टीबी के संभावित मरीजों की पहचान करने, उपचार में सहयोग और लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक करने का कार्य करेंगी। उन्होंने कहा कि देश टीबी के खिलाफ करीब 90% तक सफलता हासिल कर चुका है और अब टीबी के पूर्ण उन्मूलन के लिए व्यापक जनभागीदारी जरूरी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
5: ये थे प्रादेशिक समाचार। अब प्रस्तुत है ऊना जिला की चिट्ठी। लेखक हैं राजेश कुमार शर्मा और वाचिका हैं प्रभा शर्मा।
6: धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र और शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर के सौंदर्यकरण व विस्तारीकरण का कार्य आगामी नवरात्रों में शुरू किया जाएगा। करीब 206 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए मंदिर परिसर के आसपास गलियारे में आने वाली रिहायशी और व्यावसायिक इमारतों को खाली करवाकर गिराया जा चुका है और प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिर परिसर को श्रद्धालुओं की सुविधा और बेहतर व्यवस्थाओं के अनुरूप विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। परियोजना में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राजू मार्ग का प्रस्ताव भी शामिल है। वहीं 11 से 20 अक्टूबर तक असूज नवरात्र के दौरान माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में विशेष मेले का आयोजन किया जाएगा। मंदिर न्यास ने मेले को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए मंदिर क्षेत्र को 4 सेक्टरों में बांटा जाएगा। नवरात्र मेले के बाद धार्मिक व सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 22 से 24 नवंबर तक माता श्री चिंतपूर्णी महोत्सव आयोजित किया जाएगा। ऊना के अतिरिक्त उपायुक्त ईशान जसवाल ने बताया कि महोत्सव आस्था, लोक संस्कृति और पर्यटन का अनूठा संगम है। इस दौरान सांस्कृतिक संध्याओं, लोक कलाओं, खेल प्रतियोगिताओं और विभिन्न जन सहभागिता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को व्यापक मंच मिलेगा। जिले में पितृपक्ष श्राद्ध भी धार्मिक श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोज करवा रहे हैं। ऊना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मानसिक बीमारी के कारण भटक रहे बेघर और बेसहारा व्यक्तियों को आवश्यक चिकित्सा, कानूनी तथा सामाजिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत ऐसे जरूरतमंद लोगों की पहचान कर उन्हें समयबद्ध और मानवीय सहायता उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग सहित अन्य विभागों के समन्वय से यह कार्य किया जा रहा है। पैरा लीगल वॉलंटियर्स भी अभियान में सक्रिय सहयोग दे रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए मेडिएशन फॉर नेशन 3.0 अभियान भी चलाया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में डिजिटल बदलाव को गति देने के लिए ऊना जिले में एग्रीटेक मिशन के तहत किसान रजिस्ट्री का कार्य तेजी से जारी है। किसान की सत्यापित डिजिटल पहचान तैयार होने से उसे कृषि सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक सुगम और पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी पात्र किसानों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने इस माह विशेष अभियान शुरू किया है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि आगामी किस्त का लाभ बिना किसी रुकावट के प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं निर्धारित समय में पूरा करें। आपदा प्रबंधन की दिशा में भी जिला ऊना में विशेष पहल की जा रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आगामी 6 महीनों में जिले के सरकारी और निजी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में आपदा तैयारी व प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षकों को आपदा व आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक जानकारी, व्यावहारिक कौशल और सुरक्षा उपायों का प्रशिक्षण देना है। उपायुक्त जतिन लाल के अनुसार प्रथम चरण में जिले के 201 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हरोली उपमंडल में पूर्व सैनिक भवन का निर्माण किया जाएगा। करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस परिसर में कार्यालय, बैठक हॉल और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ऊना के इंदिरा गांधी खेल परिसर में 7 से 9 अक्टूबर तक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की पुरुष और महिला वर्ग की अंतर महाविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।

FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारत

0: ये हमने नाना पाटेकर साहब को विनम्र श्रद्धांजलि स्वरूप ये गाना सुनवाया इस प्रोग्राम में, और अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि एक और प्रोग्राम हम प्रसारित करने वाले हैं शाम को 5:30 पर, नाना पाटेकर से बातचीत, जो हमारे विविध भारती के संग्रहालय में संग्रहित है और उनसे जुड़ी हुई उनके जीवन के किस्से हैं उसमें, उनकी फिल्मों के किस्से हैं, लेकिन अब विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमारे साथ अब इस दुनिया में नहीं हैं। हालांकि मेरा सौभाग्य है कि नाना पाटेकर से कई बार मुलाकात का मौका मिला, और ये बातचीत जब हमने रिकॉर्ड की थी कई साल पहले तो हम उनके निवास पर गए थे रिकॉर्डिंग के लिए, उनके स्टूडियो में गए थे रिकॉर्डिंग के लिए, और बहुत ही जिंदा दिल इंसान नजर आए थे, और इतनी सहजता से इतनी विनम्रता से वो बातचीत की है कि मैं क्या कहूँ, इस वक्त बातें करते हुए उनका चेहरा आंखों के सामने है। और इसके अलावा कई बार मुलाकात हुई, तो आज 5:30 पर हमारे श्रोता वो प्रोग्राम सुन सकते हैं जो उन्हें उनके नाम पर हम प्रसारित कर रहे हैं
1: जी।
0: और
1: आज वायुसेना दिवस भी है। तो वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे, जो प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, और भारतीय वायुसेना ने देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज़ादी के बाद हुए विभिन्न युद्धों और सैन्य अभियानों में वायुसेना के वीर जवानों ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया है।
0: और इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्यों में भी वायुसेना का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आसमान की ऊंचाइयों को छूते हमारे लड़ाकू विमान केवल तकनीकी शक्ति का प्रतीक नहीं होते हैं, बल्कि वे देश की सुरक्षा संकल्प और आत्मविश्वास का प्रतीक होते हैं।
1: और ये दिन देशवासियों को उन वीर योद्धाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर देता है, जो कठिन परिस्थितियों में भी देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर परेड, एयर शो, विमान प्रदर्शन और हवाई करतब आयोजित किए जाते हैं।
0: वायुसेना केवल साहस और रोमांच का क्षेत्र नहीं है, बल्कि अनुशासन, जिम्मेदारी, तकनीकी दक्षता और देशभक्ति का संगम भी माना जाता है। वायु योद्धाओं का जीवन युवाओं को यह संदेश देता है कि ऊंचा लक्ष्य पाने के लिए मेहनत जरूरी है, और साथ में आत्मविश्वास और अनुशासन बहुत बहुत ही जरूरी है।
1: साथ ही ममता जी, आज एक और खास दिन है, विश्व दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे। प्रतिवर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को यह दिन मनाया जाता है, और 2026 में यह दिवस 8 अक्टूबर यानी आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को आंखों की देखभाल, दृष्टि संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान और उपचार के प्रति जागरूक करना है।
0: क्योंकि आंखें हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियों में से एक है। दुनिया को देखना, पढ़ना, लिखना, काम करना, सीखना, सब कुछ आंखों से ही तो होता है। लेकिन आंखों की जब अनदेखी करते हैं तो फिर आंखें आपको परेशान कर सकती हैं। बढ़ता स्क्रीन टाइम और डायबिटीज, मधुमेह जैसी बीमारियां भी आंखों को प्रभावित करती हैं। पोषण की कमी और नियमित आंखों की जांच न करवाने से भी दृष्टि संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं।
1: और ये दिन हमें याद दिलाता है ममता जी कि दृष्टि की समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर जांच और उपचार से कई दृष्टि संबंधी समस्याओं को रोका या नियंत्रित किया जा सकता है, कि जैसे समय समय पर आंखों की चेकअप करवाना चाहिए। साथ ही मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का लगातार इस्तेमाल करने के बजाय बीच बीच में आंखों को आराम देना चाहिए,
0: और पर्याप्त नींद भी लेना चाहिए। ये जो बात आपने कही ना कि मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का लगातार इस्तेमाल, इससे तो कोई बच नहीं पाता है। और लगातार मोबाइल स्क्रीन के सामने लोग काम करते हैं, कुछ तो मजबूरियां भी होती हैं, लोगों की जॉब है ऐसी कि आपको लगातार 12-12 घंटे स्क्रीन पर, कंप्यूटर के स्क्रीन पर बैठना पड़ता है। लेकिन उसका उपाय है, डॉक्टर्स उपाय बताते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद रखिए, पलकों पर हाथ रख के थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए आंखें बंद करके, और या फिर पानी से थोड़ी थोड़ी देर में आंखों को

0: होते रहिए। तो ये छोटी छोटी बातें, नुस्खे हैं जिससे आप आँखों को आराम दे सकते हैं। और धूप में जब जाएं तो जो काला चश्मा होता है वो
1: जी
0: लगाएं, उससे भी आँखों को सुरक्षा मिल जाती है। और आँखों में कोई समस्या हो तो बिना सलाह के दवा या आई ड्रॉप कतई न लें।
1: नहीं तो ऐसा होता है ना कि घर में एक कॉमन रखा हुआ होता है सभी के फ्रिज में, और बस लोग लेते हैं, डाल देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आई स्पेशलिस्ट कहते हैं कि सबकी आंखों के लिए अलग अलग आई ड्रॉप्स होते हैं, तो
0: बिल्कुल
1: आप चिकित्सक से परामर्श लेके ही कोई दवाई आंख में डालें। और सबसे ज़रूरी बात है ममता जी, हरी सब्जियां, फल, दालें और पोषक आहार को अपने भोजन में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और जिनको डायबिटीज़ वगैरह है, जैसे उच्च रक्तचाप है यानी हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हें नियमित आंखों की देखभाल, ये जाँच करवानी चाहिए। और ये कहते हैं ना कि आंखों की रोशनी केवल देखने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन के रंगों को
0: बिल्कुल
1: महसूस
0: पहचानने
1: करने का
0: का,
1: जरिया है। तो
0: बिल्कुल
1: अपनी सेहत के साथ अपनी आंखों को भी प्राथमिकता देना चाहिए और दूसरों को भी दृष्टि की सुरक्षा के लिए जागरूक करना चाहिए। और मरणोपरांत आप आई डोनेट कर सकते हैं, नेत्रदान कर सकते हैं।
0: बिल्कुल कहा जाता है ना, किसी के दिल में उतरना है तो आंखों के जरिए। आप आंखें, एक आंखों से आंखों में बातें होती हैं, और तमाम गीतकार शायर ने आंखों पर शायरी की है, गीत
1: जी
0: लिखे हैं। एक गीत ये जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है मदन मोहन ने, और लता मंगेशकर की आवाज़ फिल्म चिराग, सुनते हैं ये गाना।

0: ममता जी, हमारे बहुत सारे साथी नाना पाटेकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही एक हमारे साथी लिखते हैं कि ममता जी की नाना से सुनी मुलाकात हमें बहुत भाई थी।
1: क्या बात है, शुक्रिया। तो फिर जिन्होंने नहीं सुनी है ये बातचीत, आज शाम को 5:30 पर सुन सकते हैं। और अब देखिए ना, बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियाँ आ रही जो हम शामिल करेंगे। और मेरे मोबाइल में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे श्रोता नाना पाटेकर को लिख रहे हैं विनम्र नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। दरअसल वो ऐसे अभिनेता थे कि वो गए तो नहीं हैं, हम सबके दिलों में हमेशा रहेंगे। जब जब उनकी फिल्में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो जिंदा इंसान हमारे सामने हैं।
0: जी,
1: आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समाज सुधारक की जिनका नाम छुटनी महतो है और कहानी पद्मश्री के अंतर्गत हम शामिल कर रहे हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने श्रोताओं को हम दे रहे हैं। छुटनी महतो झारखंड की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है। उनका जीवन अंधविश्वास और जो डायन, भूत, पिशाच जैसी कुरीतियाँ हैं ना, जिस तरह की बातें होती हैं, इनके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया और बाकायदा मोर्चा निकाला। इसको, इस तरह की कुरीतियों को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, मुहिम चलाई।
0: जी, और ममता जी, कभी वे स्वयं भी इस कुप्रथा का शिकार हुई थी। छुटनी महतो ने बाद में अपने जीवन में उन महिलाओं की मदद और जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित कर दिया जिन्हें अंधविश्वास के कारण प्रताड़ित किया जाता था।
1: और सोनाली जी, यहाँ एक बात और बताना है, जैसे कि बहुत सारे घरों में आज भी ये सब देखा जाता है कि अगर कोई मानसिक विक्षिप्तता किसी में है, कोई मानसिक बीमारी है, तो लोग टोना टोटका करवाते हैं, कहते हैं अगर इसके ऊपर किसी का साया पड़ गया है। और बहुत सारे आप मंदिरों मस्जिदों में भी जाकर देखते हैं कि जहाँ पर इस तरह के भूत पिशाच से दूर भगाने की मुहिम
0: चलाया जाता है। जी।
1: तो दरअसल समस्या क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, इतना एडवांस हो चुका है मेडिकल साइंस अपना, कि अगर कोई समस्या है तो वैज्ञानिक तरीके से उसका निराकरण किया जाए, न कि भूत पिशाच के जरिए।
0: अंधविश्वास को दूर भगाना है। और छुटनी महतो झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के भोला डीह क्षेत्र से जुड़ी है। उनका विवाह बहुत कम उम्र में हुआ था। कुछ वर्षों तक उनका पारिवारिक जीवन सामान्य रहा, लेकिन 1995 में परिवार के एक बच्चे के बीमार पड़ने के बाद एक व्यक्ति ने उन पर जादू टोना करने का आरोप लगा दिया और इसके बाद उनके जीवन में मुश्किलों का दौर शुरू हुआ।
1: और 1995 की वो घटना जिसने जीवन बदल दिया। गाँव में अंधविश्वास इतना ज्यादा गहरा था कि छुटनी महतो को डायन कहकर सामाजिक रूप से अलग थलग कर दिया गया था। उन्हें अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ा, तो और उनकी संपत्ति पर भी कब्जा करने की कोशिश की गई इसी वजह से कि वो डायन है। बाद में उन्हें अपने बच्चों के साथ गांव छोड़कर जाना पड़ा आखिरकार।
0: ये उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन ये घटना आगे चलकर उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ बनी। गांव से निकलने के बाद छुटनी महतो की मुलाकात एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता से हुई जो इन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ काम कर रहे थे। उन्होंने कानून प्रशासन और जागरूकता के माध्यम से इस कुप्रथा का मुकाबला करना उन्हें सिखाया। 1990 के दशक के मध्य से ही उन्होंने ऐसी महिलाओं की पहचान करने और उनकी मदद करने का काम शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस यानी आशा नामक संस्था के साथ मिलकर काम किया। वे प्रभावित महिलाओं तक पहुंचती, उनके मामलों की जानकारी जुटाती और जरूरत पड़ने पर पुलिस तथा प्रशासन की सहायता से उन्हें सुरक्षा दिलाने का प्रयास करती।
1: छुटनी महतो ने केवल पीड़ित महिलाओं की मदद ही नहीं की, बल्कि गाँव गाँव जाकर लोगों को समझाया कि बीमारी, प्राकृतिक घटनाओं या पारिवारिक परेशानियों को जादू टोने से जोड़ना गलत है। उन्होंने महिलाओं को ये भी संदेश दिया कि अंधविश्वास के सामने चुप रहना समाधान नहीं है, ठीक नहीं होता। शिक्षा, कानून और जागरूकता के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों का मुकाबला भी करना चाहिए।
0: और उनके अथक प्रयासों से अनेक महिलाओं को सहायता मिली। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने सैकड़ों से अधिक महिलाओं की मदद

0: की है और चुटनी महतो पुनर्वास केंद्र से भी जुड़ी रही, जहां ऐसी महिलाओं को सहायता मिलती है जिन्हें डायन बताकर समाज से अलग कर दिया गया था। उनके साथ काम करने वाली महिलाओं की एक टीम भी विभिन्न गांवों में ऐसे मामलों पर नजर रखती है और सूचना मिलने पर सहायता के लिए पहुंचती है।
1: और उनकी कोशिश केवल किसी एक पीड़ित महिला की समस्या हल करना नहीं था बल्कि समाज की सोच को बदलना था। चुटनी महतो के लंबे सामाजिक संघर्ष और समाज सेवा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। दिन था 25 जनवरी 2021 जब उन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में झारखंड से उनका नाम शामिल किया गया। ये सम्मान उनके व्यक्तिगत संघर्ष के साथ साथ उन सभी महिलाओं के संघर्ष की भी पहचान बना जो अंधविश्वास और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाती है।
0: और चुटनी महतो का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देता है कि अंधविश्वास का मुकाबला जागरूकता से किया जा सकता है, व्यक्तिगत पीड़ा को समाज की भलाई की शक्ति में बदला जा सकता है, महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाना जरूरी है और एक व्यक्ति का साहस पूरे समाज में बदलाव की शुरुआत कर सकता है। चुटनी महतो की कहानी केवल संघर्ष की कहानी नहीं बल्कि हिम्मत, आत्मसम्मान और सामाजिक परिवर्तन की कहानी है। जिस कुप्रथा ने कभी उनके अपने जीवन को झकझोर दिया था उसी के खिलाफ उन्होंने जीवन भर आवाज़ उठाने का फैसला किया
1: और उन्होंने अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया बल्कि उसे समाज की बेहतरी का माध्यम बनाया। और उनका जीवन हमें भी तो सिखाता है, अंधविश्वास के अंधेरे को मिटाने के लिए एक छोटी सी जागरूकता की लौ भी काफ़ी होती है और चुटनी महतो उसी जागरूकता की एक मजबूत मिसाल बनकर सामने मशाल बनकर सामने आई हैं। तो अब एक गाना सुन लेते हैं
0: जी।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।

0: 3:30 हुए हैं, अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
1: कार्यक्रम में अब ले रहे हैं एक ब्रेक छोटा सा।

0: विविध भारती से सखियां और सखा सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: What is exactly 4 plus 1 is equal to 100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस 1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4 plus 1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली।
2: ममता जी, एक सखी ने लिखा है कि आपका कार्यक्रम ऐसा है कि छूटता ही नहीं। अभी सोने की इच्छा थी, कमरे में जाकर लाइट भी बंद करी, फिर मोबाइल पर चल रहे प्रोग्राम को बंद करने के लिए उंगली बढ़ाई। ना ना, अब तो रिटायर हुई, ऑफिस की भी बंदिश नहीं। खुरपी, कैंची और गार्डनिंग का सामान लेकर बाग में आई। गाना चल रहा है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में क्या रखा है।
0: क्या बात है, तो गार्डनिंग कीजिए, सोने के लिए रात है ना, दिन में सोने की क्या जरूरत है। जी, बस थोड़ा सा आराम जरूरी है
2: जी।
0: तो लेकिन वो आराम सखी सहेली के समय तो मुलतवी की कर सकती हैं
2: जी। एक हमारे साथी ने नेत्र दान के बारे में लिखी है, आंखों या चक्षु दान की बात निकली है, तब एक दुर्घटना याद आ गई। हमारी सोसाइटी के एक परिवार का इकलौता बेटा जो 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था, स्कूल के वार्षिक उत्सव में मंच सजाने के कार्य के दौरान ऊंचे टेबल से गिर जाने की वजह से मौके पर ही उनका मृत्यु हो गई। और उनके माता पिता ने इस दुख की घड़ी में भी देर न करते हुए उनकी आंखों को दान करने का त्वरित निर्णय लिया, जिसके कारण आज उनका बेटा किसी दो व्यक्ति में अपनी आंखों के द्वारा जीवित है।
0: क्या बात है, नेत्रदान महादान कहा जाता है, तो इसमें चूकना नहीं चाहिए और ये शुभ काम जरूर करना चाहिए। और सोनाली जी, आपको याद होगा कि एक जमाना ऐसा था जब घरों में दिन की शुरुआत और अंत भी गीतों से होता था। हमें तो याद है बचपन में कि सुबह उठते ही रेडियो शुरू हो जाता था और रेडियो से सुबह सुबह भजन आया करते थे। हालांकि ये सिलसिला अभी भी जारी है और बहुत सारे घरों में ये होता है, सुबह के मंगल गीत, त्योहारों के गीत, विवाह गीत, रात को माँ की गोद में जो लोरी सुनाई देती थी, ये सब हमारे जीवन का सहज हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन कहीं कहीं अब जैसे गायब हो रही,
2: पीछे छूटती जा रही है ना ये सब बातें। लोरी केवल बच्चों को सुलाने की धुन नहीं थी, बल्कि माँ के प्रेम, दादी नानी के अनुभव और परिवार की भावनाओं का संगीत था। और इसी तरह पारंपरिक गीत हमारे लोक संस्कृति के ऐसे धरोहर थे जिन्हें किताबों से नहीं बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनकर सीखा जाता।
0: बिल्कुल सही बात है, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि ये सीखो, सीख कर हम पता चला कि मोबाइल में ढूंढ रहे हैं गाना और लोरी, फिर उस अपने बच्चे को सुना रहे हैं, बल्कि सुन सुन के याद भी हो जाती थी। वो कोई लिखने की जरूरत ही नहीं थी,
2: उसकी धुन भी याद हो जाती थी।
0: बाकायदा टेक्स्ट ढूंढा जाता है गाने के, गीत के टेक्स्ट कहाँ मिल जाए, तो लिरिक्स, हम लिरिक्स मोबाइल से पढ़ते हैं और गाते हैं हम, मतलब आप
2: जी
0: मतलब हम सभी।

0: आज जो आधुनिक जीवन शैली है इसमें पारिवारिक संरचना ही ऐसी हो गई है कि इन गीतों की गूंज जैसे गायब हो रही है, पहले की तुलना में कम होती जा रही है। बहुत सारे लोकगीत हैं, लोरियां हैं ऐसी जिन्हें आज की पीढ़ी ने शायद सुना भी नहीं होगा, और बच्चे के रोने पर माँ का उसे गोद में उठाकर धीरे धीरे गुनगुनाना, जैसे कि चंदा मामा आरे आवा पारे आवा नदिया किनारे, फिर वो मतलब अपने जैसे उस बच्चे का नाम लेके कि अपने बच्चे का नाम
1: उसमें
0: कि
1: उसके नाम जोड़े जाते थे,
0: कहाँ किसी का नाम जोड़ दिया, तो ये होता था और ये सब याद करने की जरूरत नहीं होती थी, सहज निकलता था मुँह से। और लोरी के शब्द भी बड़े सरल होते थे लेकिन उनमें भावनाओं की बड़ी गहराई होती थी। कभी माँ बच्चे के भविष्य के सुंदर सपने देखा करती थी उसे में, और कभी उसके लिए सुख समृद्धि की कामना भी करती थी, और कभी प्रकृति चांद सितारों और पक्षियों को अपनी लोरी का हिस्सा बना लेती थी। और बहुत सारी महिलाएं जिनमें गीत और कविता की प्रवृत्ति होती थी उन्हें पता भी नहीं होता था कि उनके भीतर एक कवि
1: छिपी हुई प्रतिभा है जी। और दादी नानी की लोरियों में तो उनके अपने जीवन के अनुभव भी घुल जाते थे ममता जी, इसलिए लोरी बच्चे को नींद देने के साथ साथ परिवार की स्मृतियों को भी जीवित रखती थी। और फिर पारंपरिक गीत भी, हर अवसर पर पारंपरिक गीत गाए जाते थे, विवाह गीत, शादी के अवसर पर महिलाएं मिलकर गाती थी, बन्ना बन्नी के गाने गाते थे। और
0: आपको याद है क्या बन्ना बन्नी? तो कभी हम लोग तैयारी से आएंगे और एक दूसरे को सुनाएंगे,
1: बट ढोलक चाहिए उसमें साथ में।
0: तो ठीक है, ढोलक की व्यवस्था कर लेंगे और पारंपरिक गीत और इसी पर एक सखी सहेली हम करेंगे। अब देखते हैं हमारे श्रोता क्या कहते हैं कि उनको ऐसा वाला प्रोग्राम चाहिए या नहीं,
1: पसंद आएगा या नहीं।
0: जी
1: और है ना ममता जी, इन गीतों में हंसी मजाक, भावनाएं, रिश्तों की मिठास और बेटी की विदाई का दर्द भी दिखाई देता था।
0: बारिश के मौसम में झूले पड़ते थे, महिलाएं मिलकर सावन के गीत गाती थी, और कोई जो पटना बोलते पटोहा
1: जी,
0: तो उसको झूले को झुलाते थे, और इनमें प्रकृति प्रेम और मायके की यादों का सुंदर चित्रण भी मिलता था उन गीतों में
1: जी। और साथ ही घर में बच्चे के जन्म पर खुशी व्यक्त करने के लिए मंगल गीत गाए जाते थे, ये परिवार के सामूहिक खुशी का प्रतीक होते थे। और त्योहारों के गीत पे होली, दीपावली, तीज, गणगौर, नवरात्रि और अन्य पर्वों पर भी अलग अलग क्षेत्रों की अपनी लोकगीत परंपराएं भी रही है।
0: स्कूलों में लोकगीत और लोरी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी, बच्चों को स्थानीय भाषा और लोकगीतों से परिचित कराया जाता था, याद है कि नहीं?
1: बिल्कुल याद है।
0: और विवाह और त्योहारों में रिकॉर्डेड संगीत के साथ पारंपरिक गीतों को भी स्थान दिया जाता था।
1: और अगर इन गीतों को भी अभी भी अगर स्थान मिले तो कितना अच्छा होगा ममता जी।
0: बिल्कुल अच्छा होगा, ये रहा। भई हमारा तो ये कहना है कि ये जो गीत कम सुनने को मिलते हैं लोरी की शक्ल में, श्रोता इन्हें साथ में गुनगुना सकते हैं।

0: भाई देखिए सुना लीजिए, हमारे श्रोताओं को तो ये लोरी पूरी याद है, अगर आपको याद नहीं है तो आप भी याद कर लीजिए और हमें भी याद है। तो हमारे एक श्रोता ने पूरी लोरी लिख भेजी है। अच्छा। तो इनका हम शुक्रिया अदा कर देते हैं। और जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज पर हैं, ये लोरी वहां से लेकर अपने बच्चे को आज सुना सकते हैं और अपने बच्चे को, अपने पोते को, नाती को, जो भी घर में छोटा बच्चा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे बच्चे जब छोटे थे तो सोते समय कोई न कोई लोरी, जैसे चंदा मामा दूर के लल्ला लल्ला लोरी, कोई गीत गाते हुए सुलाती थी। अगर मैं रुक गई तो कहते थे मम्मी गाओ ना, जब तक गहरी नींद न हो जाए मुझे गाना ही पड़ता था। पर अब वही बेटियों को लोरी गाने का टाइम नहीं है, बस एक ऑडियो लगाकर बगल में रख देती हैं और कामकाजी लड़कियों को नौकरी से टाइम बेटाइम घर आना पड़ता है, घर के कामकाज, बच्चे लोरी गाने का टाइम ही नहीं, बच्चों के लिए लोरी गाने का टाइम ही नहीं है। देश विदेश में रहने के कारण या दूसरे शहरों में रहने के कारण दादी नानी भी पास नहीं रहती हैं। भाई यहाँ हम ये कहेंगे कि अगर महिलाओं की नौकरी तो वो आजीविका के कारण करती हैं, मजबूरी है और करना भी चाहिए, तो लेकिन पिता हैं घर में तो पिता को सुनाना चाहिए।
1: हाँ।
0: दादा दादी हैं,
1: सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है,
0: बिल्कुल। हाँ। जो घर में है उसे सुनाना चाहिए। और मान लीजिए कि दादी दादी को नानी को बहुत सारी लोरियाँ याद है, तो अब तो फोन का जमाना है, फोन पर वीडियो कॉल करके भी
1: सुना सकते हैं। एक हमारी सखी ने लिखा है कि लोरियों से अपना बचपन और अपने बच्चों का बचपन याद आ गया, और साथ ही कहती थी कि सोने की कटोरिया में दूध भात ले ले, आवा बबुआ के मुहुआ में घुटुक, ए चंदा मामा आ रे आओ। एक सखी ने लिख कर भेजी।
0: और जब घुटुक, जिसमें दूध पिलाने के नाम पर माए बच्चे को करती है घुटुक, अपने बच्चे का नाम लेगा तो कई बच्चे मुंह पर हाथ लगा लेते हैं कि नहीं घुटुक नहीं,
1: दूध पिलाएंगे,
0: घुटुक नहीं बोलो, बस बाकी लोरी सुनाओ, ये भी होता था।
1: एक साथी कहते कि हमारे यहाँ बेटा होने पर जो मंगल गीत गाए जाते हैं उन्हें हमारे यहाँ सोहर गीत कहा जाता है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि लोरियां विलुप्त हो गई हैं लेकिन पारंपरिक गीत तो अभी भी बरकरार हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो शादी ब्याह नामकरण कुआं पूजन वगैरह, उसमें आज भी बड़े बुजुर्गों के द्वारा पारंपरिक गीत गाए जाते हैं जिनके बिना आयोजनों में आनंद नहीं आता। ये पारंपरिक गीत अपनी लोकल भाषाओं में गाए जाते हैं जिनको सुनना एक अलग ही एहसास कराया जाता है। भाई अभी तो जब शादी ब्याह होते हैं तो बहुत सारे रस्म होते हैं कई दिन, और उसमें छोटे छोटे रस्म के मंदिर जाती हैं महिलाएं,
1: कुआं पूजन,
0: हाँ, फिर वो मिट्टी की मिट्टी होती है तो मिट्टी पूजन करती हैं, वहाँ एक लोकगीत होता है, फिर वो एक मतलब सात महिलाएं एक बर्तन को पकड़ती हैं जिसे क्या बोलते हैं, सिकहुली बोलते हैं या फिर भौरी बोलते हैं, तो वो उठाती हैं तो उस समय एक गाना गाया जाता है, फिर वहाँ से निकलती हैं तब सड़क पर जब चलती हैं तब एक गाना, फिर दरवाजे पर आती हैं तो
1: तब गाना,
0: बहुत सारे गाने हैं। लेकिन हाँ, इन परंपराओं को, इन गीतों को आने वाली पीढ़ी को बताना उन्हें
1: हमारी जिम्मेदारी है,
0: बिल्कुल
1: जी। एक हमारे साथी ने लिखा, ममता जी, लोरी एक शांत मधुर और सौम्य गीत होता है जिसे माँ या अभिभावक अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए, शांत करने के लिए गाते हैं। पर आज आधुनिक जीवन शैली, एकल परिवार और डिजिटल मीडिया के बढ़ते उपयोग के कारण पारंपरिक लोरिया और लोकगीत विलुप्त होते जा रहे हैं। स्मार्टफोन और टीवी पर सिर्फ लोरी मिलती है आत्मीयता और प्यार नहीं, नई पीढ़ी का अपनी क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृति से दूर होना भी तो इन मौखिक परंपराओं के लुप्त होने का एक मुख्य कारण है।
0: एक हमारी सखी है जो लिख रही है कि दुनिया बदली सो बदली, मगर ताज्जुब ये कि अब शायद ही कोई माँ अपने बच्चे को लोरी गाकर सुलाती हो। माँ और बच्चे के रिश्ते में पालना और लोरी का अटूट संबंध रहा है। लोरी की दुनिया दरअसल सपनों की दुनिया है। माँ की लोरी में ऐसे हसीन और सुहाने वादे होते हैं कि माँ के चेहरे पर आते भाव से रीझ कर हर बच्चे के चेहरे पर पहले मुस्कान और फिर आंखों में नींद आ जाती है, और नींद में

0: उपकथा कहानी सुनकर वो बड़ा हुआ है, मेरी स्वरचित कहानी भी सुना है, इससे बच्चों में कल्पनाशीलता तो बढ़ती ही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जब आप एक इसका एक तरीका और है कि आप कहानी सुनाने लगती हैं तो 2-4 लाइन सुनाइए और फिर पूछिए बच्चे से फिर क्या हुआ।
1: हाँ, तो फिर, वो भी उन, हाँ, उसमें तो, शामिल होंगे उसमें।
0: बिल्कुल वो लाइन जोड़ेंगे कि एक जंगल था, जंगल में एक शेर था और वो जब दहाड़ता था तो बहुत सारे वहाँ जानवर डर के मारे दुबक जाते, फिर क्या हुआ, तो बच्चे वहाँ पर बताएंगे आपको, इससे उनकी कल्पनाशीलता का विस्तार होता है।
1: एक साथी ने कहा, चंदा मामा आरे आवा बारे आवा नदिया किनारे आवा भोजपुरी की सबसे लोकप्रिय पारंपरिक लोरी गीतों में से एक है। ये गाना बच्चों को सुलाने और उनका मन बहलाने के लिए पीढ़ियों से गाया जाता है। 50 साल पहले जिनका बचपन बीता होगा शायद ही कोई बच्चा इस लोरी के बिना सोया होगा, या माँ अपनी माँ, दादी माँ, बुआ नानी, मौसी की गोद में खेलते हुए इस लोरी को नहीं सुना होगा, ऐसा नहीं होगा।
0: तो चलिए फिर ये लोरी एक बार फिर से सुनते हैं।

0: ये वाली लोरी कितने श्रोताओं को याद है जरा बताइए, अगर याद है तो पूरा लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर, क्योंकि ये तो सुरक्षित रहता है, जब भी श्रोता चाहेंगे आपके इस कमेंट को पढ़ सकते हैं। और देखिए ना सोनाली जी, बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं इसके लोरी के लिए
1: जी।
0: कि एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे जहाँ बेटा होने पर मंगल गीत गाए जाते हैं उन्हें हमारे यहाँ सोहर कहा जाता है, बेटा नहीं बल्कि बेटा बेटी क्योंकि बेटी के पैदा होने पर भी अब सोहर गाए जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है ढोलक वाला प्रोग्राम तो अवश्य पसंद आएगा। देखिए आ गई टिप्पणी, तो आप तैयार हैं?
1: हाँ बिल्कुल तैयार हूँ।
0: हाँ तो अगली बार ढोलक लेके
1: ढोलक लेके बैठेंगे।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि सोने की कटोरिया में दूध भात ले ले आवा, बबुआ के मुहा में घुटुक। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आज तो हम उन दिनों को याद कर रहे हैं जब हम ये गाया करते थे और सुना करते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि बेटा हो या बेटी हो सोहर खिलौना सभी के जन्मोत्सव छठी बरही में गाया जाता है।

0: और एक श्रोता ने लिखा है कि आज भी बहुत माँ को देखा है बच्चों को लोरियाँ सुनाती हैं और आजकल तो अलेक्सा भी आ गई है, तो मेरा पोता छोटा था तो अलेक्सा पर हम लोग लोरी लगा देते थे और सुनता था। एक श्रोता ने लिखा है कि गुजराती लोरी है जो हमारे भाभी जी गाकर अपने बेटे को सुनाती थी, भाईलो मारो डायो पाटले बेसी नायो, पाटलो गयो खसी भाईलो मारो गयो हसी, ये लोरी सुनाती
1: यानी कितनी मिठास है ना, जो भी भाषा होती है क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें एक अलग ही मिठास होती है, फिर वो हमें भले ही समझ ना आए पर उसकी मिठास हमारे दिल तक पहुंच जाती है।
0: सोनाली जी अब देखिए आपको ढोलक की तैयारी करनी पड़ेगी, हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है ढोलक संगत के साथ सभी सखियों सहेलियों के गाने के प्रोग्राम कीजिए ना, सृजन भारती में भी ऐसा प्रोग्राम हो आनंद आ जाएगा। तो चलिए अब तैयारी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो टिप्पणियां आ रही हैं
1: जी
0: उसे पढ़ दिया।
1: अब जैसे कहा, एक श्रोता ने कहा कि हमारे बेटे के जन्म होने पर वो जो खास
0: सोहर
1: गाया जाता है, तो वे बेटी के जन्म पर भी गाना चाहिए, बेटे बेटी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक साथी ने लिखा है कि मेरे तो 3 बेटियां ही है, किसी भी भेदभाव की जरूरत ही नहीं थी, मैंने बहुत अच्छे से बेटियों को पालने की कोशिश की थी, अच्छे से अच्छे भोजन, एजुकेशन, साफ सफाई, अच्छा पहनना, ओढ़ा, सभी बहुत बेहतर करने की कोशिश की, एजुकेशन पर बहुत जोर दिया, जिसके कारण आज बड़ी बेटी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है और एक कथक डांस स्कूल भी चला रही है और दूसरी बर्लिन में सीनियर साइंटिस्ट है, दूसरे के बेटों से बेहतर है, वो भी वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट है, क्या बात है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि ये पुरानी मान्यता गलत साबित हो चुकी है कि बेटा ही बुढ़ापे का सहारा बनता है, असलियत में बेटियां विवाह के बाद भी माता पिता से भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जुमलों के कारण काफी सुधार आया है, लोग बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं।
1: एक हमारे साथी ने कहा है कि कभी कभी मुझे खुद महसूस होता है कि बेटे और बेटी को लेकर मेरी सोच अलग क्यों हो जाती है, बेटे के लिए मन थोड़ा निश्चिंत रहता है लेकिन बेटी की बात आते ही कई चिंताएं घेर लेती हैं, चिंता का कारण न्यूज़पेपर में आते समाचार, फिर खुद से पूछती हूँ कि जब प्यार दोनों से बराबर तो सोच में फर्क क्यों, शायद ये भेदभाव जानबूझकर नहीं बल्कि बरसों से चली आ रही सोच का असर है, अब कोशिश है कि दोनों को सिर्फ बराबर प्यार नहीं बराबर भरोसा भी दे सकूं, अब बेटियां इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वह एरोप्लेन उड़ाने के साथ साथ देश के लिए बंदूक लेकर भी खड़ी है।
0: बिल्कुल सही कहा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें खुशी है कि हमने यानी कि मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने कभी भी बेटी और बेटे में भेदभाव नहीं किया है, सबको बराबर कॉलेज स्कूल में शिक्षा दिलाई है, सबको उनकी रुचि के अनुसार हायर एजुकेशन कराया और बेटे अभी डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहे हैं और बेटियाँ भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, सभी विरोधों को दरकिनार करते हुए बेटियों को पहले आत्मनिर्भर होने का पूरा मौका दिया है।
1: क्या बात है। एक सखी ने लिखा है मेरे ससुराल में बेटियां बहुत कम है, मेरी बेटियों के होने पर बहुत खुशियां मनाई गई, मेरे सास ससुर नंद बहुत खुश हुए थे, कभी हमने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि इनके तो बेटियां ही है। कितनी अच्छी उदाहरण है।
0: बिल्कुल। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि कभी कभी मुझे खुद महसूस होता है कि बेटे और बेटी को लेकर मेरी सोच अलग हो जाती है, बेटे के लिए मन थोड़ा निश्चिंत रहता है लेकिन बेटी की बात आते ही कई चिंताएं घेर लेती हैं, चिंता का कारण न्यूज़पेपर में आते समाचार हैं, फिर खुद से पूछती हूँ जब प्यार दोनों से बराबर है तो सोच में फर्क क्यों।
1: एक साथी ने लिखा है कि बेटे बेटी में भेदभाव ये क्यों होगा, जब लड़का लड़की सब बराबर है तो आजकल सभी क्षेत्र में दोनों बराबरी से अपनी भागीदारी देते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि हम ऐसा क्या ढूंढ लेते हैं बेटे और बेटी में जो हमें भेदभाव सिखाए, मैं तो बेटा और बेटी दोनों की माँ हूँ इसलिए मेरे लिए सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं किसी भी बच्चे के लिए भेदभाव नहीं होता, जितनी बेटी लाडली है उतना बेटा भी है, दोनों को एक जैसी एजुकेशन दे रहे हैं।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि अगर बेटी बेटे में भेदभाव की बात करें तो आज के युग में भेदभाव रखने का प्रमाण कम होता जा रहा है क्योंकि आज की बेटियां बेटों के समकक्ष हो गई हैं, जो नौकरी करते हुए पूरा घर पूरा परिवार संभाल रही हैं, इसलिए उसे नारायणी भी कहते हैं, कोई अतिशयोक्ति न होगी, ये भेदभाव पुराने जमाने में ज़रूर था और माना जाता था कि केवल बेटा ही वंश आगे बढ़ा सकता है जबकि बेटी को पराया धन माना जाता था। असल में पुराने ज़माने में भी बेटियों को बाकायदा सक्षम बनाया जाता था, बहुत सारी महिलाएं वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज किया गया है, महारानी लक्ष्मीबाई का नाम कौन भूल सकता है। तो ये समय है, हाँ ये ज़रूर है कि अब जो समय है इसमें बेटियों को भी बराबरी का मौका मिल रहा है, तो जो लोग

0: जो जिन घरों में अभी भी भेदभाव है, मुझे लगता है कि आज के इस प्रोग्राम से, इस चर्चा से वो भेदभाव करना छोड़ देंगे।
1: और अब गीत सुन ले,
0: सुनते हैं ये गाना।

0: भाई हमारे भी अब जाने का वक्त हो रहा है, कुछ कहना है?
1: एक सखी ने लिखा है कि लोरी और पारंपरिक गीत के विषय ने सखी सहेली में चार चांद लगा दिए।
0: क्या बात है, आपकी टिप्पणियों ने चार चांद लगा दिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतिया या गाना सुनवाए, लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, संगीत जब आपकी पसंद का हो तो गीत और भी खास हो जाता है ना? तो आइए आज के इस फरमाइशी सफर में शामिल होते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद के गीत, आपकी प्यारी बातें और साथ ही हमारे एहसास। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ही कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से
1: रहीम मिस्त्री बात कर रहे हैं, हुजूर साहिब नांदेड़ से।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रहीम जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं देखिए, और हेलो फरमाइश के जरिए और भी अच्छे हो जाते हैं आप सभी श्रोताओं से बात करके।
1: हाँ जी हाँ, सही, आपका हमारा मनोरंजन तो इतना बढ़िया, इतना भारी आता है विविध भारती, इतना अच्छा मजा आता है जब चलता है, तो ऐसा लगता नहीं कि हम कहीं और है, ऐसा है कि हम हमेशा रात के 11 बजे तक विविध भारती के प्रोग्राम सुनने में बड़ा मजा आता है।
0: अच्छा, तो क्या करते हैं साथ में आप विविध भारती का प्रोग्राम? हाँ, तो सुनते हैं
1: है, मिस्त्री के साथ में बांधगा वगैरह बनाते हैं, घर बनाते हैं।
0: बहुत बड़ा काम करते हैं आप, है ना? सर्दी गर्मी धूप बरसात कोई भी मौसम हो और घरों में बनाने के लिए आप तैयार रहते हैं।
1: जी हाँ, सही, देखिए हम तो अच्छा रहना चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं, जैसा सर्व धर्म संभाव बोल के चलते हैं, और हम सभी से कहते हैं कि अपने माता पिता के साथ रहो, माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा में स्वर्ग है जन्नत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कई बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता को थोड़े थोड़े बातों पे दुख दे रहे हैं, कभी उन्हें थोड़ा दुख हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम हमारे सबसे ज्यादा दुनिया में दूसरा रूप भगवान का माता पिता होते हैं, और माता पिताओं के साथ में रहना ये हमारा कर्तव्य है और ये हमारा भविष्य है।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही, अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी होगी और निश्चित रूप से आपने भी अपने माता पिता का ख्याल रखा होगा।
1: जी हाँ
0: जी, बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: जिनका नाम है मिस्टर नटवर लाल, परदेश किया ये सच्चे किया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है ये, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, अपना नाम बताइए, कौन बोल रही हैं?
1: जी दीदी, कहते हैं नफरत की तस्वीर मिटा दो, पी लो प्यार का जाम। नफरत की तस्वीर मिटा दो, पी लो प्यार का जाम। मैं तेरी खुशबू हूँ, आरजे शबनम अब्बासी है मेरा नाम। दीदी
0: क्या बात है, क्या बात है, शबनम जी बोल रही हैं, आरजे हैं आप?
1: जी जी दीदी। दीदी आज आपसे बहुत टाइम के बात हो रही है, मतलब लगभग एक साल हो चुका है मुझे कॉल करे हुए। दीदी जी दीदी, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्या करें दीदी, मतलब पार्लर में हम काम करते हैं तो थोड़ा बिजी रहते हैं, इसलिए हमें टाइम नहीं मिलता।
0: कोई बात नहीं, तो अपना काम पहले है ना, काम ही तो पूजा है। आप अपना काम कर रही हैं, वो आपकी रोजी रोटी होगी।
1: दीदी आपकी आवाज जब गूंजती है तो ये दिल करता है बस जल्दी से दीदी से बात हो जाए।
0: आवाज तो आपकी भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, मुझे भी लग रहा है कि मैं आपसे घंटों बात करती रहूं।
1: थैंक यू, हमें बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम, हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, हमारे पार्लर में रेडियो बजता रहता हो, हम सुनते रहते हैं, कस्टमर भी सुनते हैं।
0: क्या बात है, तो एक बात बताइए, कस्टमर के साथ किस तरह से व्यवहार करती हैं आप?
1: जब हम प्यार से उनसे बात करते हैं, जैसे हमारे पास कस्टमर आते हैं, जब हम प्यार से बात करेंगे तो वो हमारे पास दोबारा आएंगे। हम उनका मतलब जैसे पहले आते हैं तो हम उनको पानी पिलाते हैं, फिर प्यार से बात करते हैं, पूछते हैं ठंडा लोगे या गर्म लोगे, तो हमें हमारे पास वो जरूर आते हैं। दीदी
0: क्या बात है, जब आप प्यार दोगे तो लोग आपके पास जरूर आएंगे, क्योंकि प्यार बांटने से आपको सम्मान और प्यार वापस मिलता है ना?
1: देखो बड़ा हो या छोटा हो, जब हम प्यार देंगे तो प्यार लेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा। अब बताइए कौन सा गाना सुनेंगी आप?
1: ये फिल्म का नाम रहेगा दिल तेरा आशिक, उसका टाइटल सॉन्ग है, यही सुनवा देना दीदी।
0: आइए सुनते हैं ये बड़ा मस्ती भरा गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: हम राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोड़िया, तहसील नवाबगंज, झुमका सिटी, बरेली, उत्तर प्रदेश से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं मैम जी।
0: जी बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: मैम जी हम तो बस अभी तो ड्यूटी चल रही है हमारी।
0: ड्यूटी चल रही है कहाँ?
1: जो लाइसेंस बनते हैं, हाँ, गाड़ियों के, वाहन के, चाहे चार पहिया हो या दो पहिया हो या जितने बड़े वाहन हो, सभी के जो बनते हैं
0: वो काम करते हैं?
1: नहीं, इसमें ड्यूटी चल रही है।
0: अच्छा, क्या टाइमिंग्स रहते हैं आपकी ड्यूटी के?
1: ड्यूटी तो खैर इसमें तो अभी तो चालू होने में बता रहे हैं कि इस महीने बाद चालू हो जाएगा। अभी तो हम अकेले ही हैं, बाकी 24 घंटे रहना पड़ता है मैम जी।
0: बहुत कठिन काम है ये तो। फिर परिवार के साथ समय बिता पाते हैं?
1: नहीं मैम जी, हम अकेली हैं, परिवार तो हमारा अंत है।
0: तो दैनिक दिनचर्या क्या रहती है आपकी?
1: दैनिक दिनचर्या यही रहती है कि सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, टहलते हैं, टहलने में और काम भी करते रहते हैं मैम जी।
0: और अपने स्वास्थ्य और अपनी दिनचर्या का कितना ख्याल रखते हैं?
1: वह बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं कि अगर जैसे अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है तो ना ज्यादा धूप है, ना ज्यादा गर्मी है, ना ज्यादा सर्दी है, मीडियम सॉफ्ट है। जब मौसम बदलेगा तो हानिकारक तो होगा ही मैम जी। नींद भी पर्याप्त समय पे लेते हैं, जैसे 7 से 8 घंटे नींद तो जरूरी है मैम जी।
0: बिल्कुल अच्छी बात है। तो
1: हाँ
0: बताइए
1: जी,
0: गाना कौन सा सुनना पसंद करेंगे आप?
1: मूवी का नाम है सौदागर, जाने के बोल हैं, तेरी याद आती है मैम जी, तो लाइनें हैं, बोलने इजाजत हो आपकी।
0: सुनाइए।
1: जिंदगी का हर दिन खास है, बस नजरिए की बात है, जो मुस्कुरा के जी ले आज को, उसका कल भी उसके साथ है।
0: तो सुनते हैं आपकी पसंद।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: आपका जिंदा श्रोता नांदेड़ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ जी। मुंडा जी,
0: नाम क्या है आपका?
1: बालाजी दोनकले।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: नांदेड़ महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। नांदेड़ से हमारा गांव 60 किलोमीटर है।
0: अच्छा, नांदेड़ से 60 किलोमीटर अंदर है आपका गाँव?
1: हो ग्राम विभाग का छेड़गाँव है।
0: क्या नाम है?
1: खंडा गाँव।
0: अरे वाह, बड़ा सुंदर नाम है।
1: अभी तो नया तालुका है, नया गांव, इसमें खंडगांव गांव है।
0: अच्छा, तो बताइए अपने गांव के बारे में, कैसा है आपका गांव?
1: अच्छी, सब आदमी, सभी गांव, सभी किसी के सुख दुख है। कौन सा ही कुछ दुख आया शादी के लिए, कुछ अनेक अनेक जो अलग कार्यक्रम है, कुछ है तो सभी आदमी मिलके करते हैं। कोई वाद नहीं, संटे नहीं, कोई नहीं। सभी आदमी इलेक्शन में हो या कौन सा ही कारण हो, एक दिन में न हो कि सभी आदमी एक तरफ बैठ के सभी कार्यक्रम करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम। बहुत अच्छे आदमी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो छोटे छोटे शहर हैं, गांव हैं, वहाँ पर आज भी ये मानवता जिंदा है, सब मिलकर रहते हैं।
1: वो मंडा जी,
0: जी
1: आपने जो आज के फन करे ना कार्यक्रम, क्या बढ़िया कार्यक्रम है। और मंचे है जी,
0: वो भी अच्छा लगता है आपको?
1: हो, और सेहत नामा का डॉक्टर है ना, उसकी जानकारी मिलती है हर दवा के बारे में। हमारे ग्रामीण भाग में, हर टाडा बस्ती वाले में डॉक्टर का विचार क्या कर रहा है क्या नहीं, सब सुख दुख के कारण में सभी पहुँचते है ना।
0: बहुत अच्छी बात कही। सेहत नामा में आपको पूरी जानकारी दी जाती है, और उस डॉक्टर से हम ये भी कहते हैं, जो भी डॉक्टर साहब आते हैं, कि हमारे ग्रामीण तबके के लोग भी इसे सुन रहे हैं, तो कृपया उस बात को इस तरीके से समझाइए कि हमारी ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण पुरुष, ग्रामीण बच्चे भी उस बात को समझ पाए।
1: और इसीलिए जो महिला का तो तुम्हारा सखी सही नहीं ना, हमारी महिला, हमारी पत्नी सभी मिलके वो कार्यक्रम सुनते हैं। हेलो सखी,
0: सखी सहेली भी सुनते हैं। अरे वाह, क्या बात है, हेलो सहेली सुनते हैं, है ना? बहुत अच्छी,
1: पूरा जानकारी मिलती है ना हर आदमी की। हर कहाँ से फोन लगा, कृष्ण मैडम ने हमारे जो बहन रहते बहन, उन्हें कहाँ से बात कर रहे हैं क्या नहीं, सब मिलता है ना हमारे लेडीज को।
0: हाँ बिल्कुल मिलता है, खुराक मिलती है आपको, मानसिक खुराक देता है विविध भारती आपको, है ना?
1: वो भारत का सबसे बड़ा लोकप्रिय चैनल बोले तो विविध भारती देश में कहाँ भी जाओ।
0: चलिए, आपकी खुशी को हम महसूस कर रहे हैं, आप कितने खुश हैं विविध भारती को सुन के। अब बताइए कौन सा गाना आपके लिए आज पेश करें?
1: गोरा और काला धीरे धीरे बोल कोई।
0: सुनिए ये प्यारा सा गीत, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी दीदी, हम ग्राम चिड़ावत कंजर डेरे से बात कर रहा हूँ। मैं देवास जिला मध्य प्रदेश से।
0: जी नाम बताइए अपना।
1: संतोष जी हाड़ा।
0: कैसे हैं आप? संतोष रखते हैं अपने जीवन में?
1: जी जी दीदी, आप लोगों का शुक्र है, बिल्कुल संतोषी है।
0: बस यही होना चाहिए ताकि जो है जीवन अच्छे से चले। क्या करते हैं आप संतोष जी, बताइए?
1: खेती गृहस्थी करते हैं दीदी।
0: तो अभी क्या है आपके खेत में, क्या बोया है?
1: जी दीदी, सोयाबीन बोया था, अभी कटाई हुई है 4 दिन पहले।
0: और सोयाबीन के अलावा कुछ नहीं?
1: नहीं, अब सोयाबीन की कटाई हो गई है, हम अब गेहूँ चना लहसुन प्याज की तैयारी करेंगे।
0: अच्छा, गेहूँ चना लहसुन प्याज की तैयारी करने वाले हैं, तो इसके लिए पहले की तैयारी क्या होती है? जब आपको लगता है कि अब तो हमें खेत में ये बीज डालने हैं, तो किस तरह तैयार करते हैं आप अपने आप को?
1: दीदी इसमें क्या होता है, पहले तो 2 से 3 बार खेत को हाँकना पड़ता है, उसके बाद में रोटा रोटर एक मशीन है जो उसको मिट्टी को बिल्कुल एक में कर देती है, उसको ढाक के और फिर हम सरिया बना के पालियां, और उसमें जैसे लहसुन बोना है तो उसको चौपाई होती है, प्याज की चौपाई होती है, और गेहूं चना तो डायरेक्ट मशीन से डाल देते हैं और उसमें पानी छोड़ के पैदावार करते हैं।
0: मौसम खेती बाड़ी के लायक है?
1: हाँ, खुला है और हमारे इधर सूखा घोषित हो गया है दीदी, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी गिरा था बरसात में, हमारे सोयाबीन पैदा हो गए और होल अभी से ही कमजोर चल रहे हैं।
0: अच्छा,
1: ऊपर वाला यदि पानी गिरा देता है तो बहुत फायदा हो जाएगा, जो हमारा देवास जिला है उसमें बहुत पानी कम है।
0: अच्छा, पर हिम्मत नहीं हारनी है आपको, मन छोटा नहीं करना है।
1: नहीं, नहीं, नहीं।
0: हाँ, चलिए गाना बताइए कौन सा सुनेंगे।
1: बटवारा फिल्म का है दीदी, सारे वास्ते रे ढोला नैन मेरे जागे रे।
0: अरे वाह, ये गाना मुझे इतना पसंद है, आपने तो मेरी पसंद का गाना ही कह दिया यार। चलिए आपके साथ मैं भी इस गाने को जरूर सुनूंगी। आपको आपकी पसंद का गीत हम सुनवा देते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: जम्मू कश्मीर सोना मार्ग से लतीफ अहमद रैना बोल रहा हूँ।
0: लतीफ जी, स्वागत है आपका। मौसम कैसा है बताइए?
1: यहाँ आज तो मौसम लगे बहुत गर्मी है, दिन में तो गर्मी रहता है, सुबह शाम ठंड रहता है।
0: तो ठंड कितनी रहती है? स्वेटर पहनना पड़ता है, शॉल ओढ़ना होता है या चलता है थोड़ा सा?
1: नहीं, वार्मल तो पहनना पड़ता है सुबह शाम, तो दिन में तो बहुत गर्मी रहता है, पसीना आ जाता है इतना गर्मी।
0: दिन की गर्मी परेशान कर देती है। आप क्या करते हैं लतीफ जी?
1: बस मैं तो खेती किसानी करता हूँ मैडम।
0: अच्छा, क्या है आपके खेत में अभी?
1: आज तो सरसों का बुआई करते हैं यहाँ पे।
0: अच्छा, और कुछ नहीं होता?
1: और होता है तो फसल की कटाई खत्म हो चुकी है ना सितंबर का महीने में, धान और मक्के की।
0: अच्छा, खेत में ही रहते हैं दिन भर?
1: नहीं, बाकी बाकी काम कर लेता है ना, जैसा अखरोट का अभी गिरी का मौका है, अभी गिरी निकालते हैं, अखरोट ये पैकिंग करते हैं, ऐसा
0: हाँ,
1: ऐसा रहता है।
0: कैसे निकालते हैं
1: हाँ
0: अखरोट की गिरी, थोड़ा बताएंगे हमें?
1: ये थोड़ा निकालते हैं ना, अखरोट उठाते हैं, उसमें तो दो फाट गिरी निकालते हैं, वो निकालते हैं, तो फिर डब्बा में भरते हैं।
0: अच्छा, कोई मशीन होती है?
1: नहीं, हाथ से निकालते हैं
0: अरे,
1: पत्थर पे। हाँ,
0: अच्छा, कितने अखरोट
1: पत्थर
0: को
1: पे
0: तोड़ लेते हैं?
1: बस ये लगभग 1 क्विंटल किसी को निकलता है, 1 क्विंटल किसी को निकल जाता है, 40-50 किलो ऐसा ऐसा रहता है।
0: तो एक बात बताइए, जैसे अखरोट को जब हम तोड़ते हैं, हल्का हल्का एक नट क्रैकर आता है, उससे हम दबाते हैं तो टूट जाता है ना? आप कह रहे हो हाथ
1: हाँ
0: से करते हैं?
1: हाँ हाँ हाथी वो तो हल्का हो, उसको उतना ये नहीं होता है, ये छिलका पत्थर पे रखते हैं, फिर तो हथेड़ी से दब मारते वो तो तोड़ जाता है, फिर उसमें गिरी निकालते हैं।
0: तो गिरी चूरा भी नहीं होनी चाहिए निकालते समय, इस बात का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना?
1: बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
0: बहुत मुश्किल काम है ये भाई।
1: अब तो मशीन आया ना इसका, उससे भी तोड़ते हैं।
0: चलिए, बहुत
1: हाँ जी,
0: महत्वपूर्ण और बहुत ही मुश्किल काम करते हैं आप।
1: हाँ, बहुत मुश्किल मेहनत तो अब यही है, रोजगार
0: बिल्कुल, फिर
1: मेहनत
0: भी
1: करनी पड़ती।
0: आपने समय निकालकर विविध भारती आप सुनते हैं, हमें फोन करते हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है?
1: हाँ हाँ सही बात, सही बात। मैं दिल से सुनता हूँ, पिटारा ज्यादा सुनता हूँ, हेलो फरमाइश, सेहतनामा प्रोग्राम बहुत पसंद भी करता हूँ। सारे
0: बताइए।
1: प्रोग्राम सुबह से लेके शाम तक प्रोग्राम आते हैं, वो मैं सुनता रहता हूँ, आज की फनकार भी सुनता हूँ।
0: अरे वाह, बहुत खूब। गाना बताइए जो हम आपको सुनवाएं आपकी पसंद का।
1: फिल्म का नाम है किंग अंकल, लता मंगेशकर की आवाज में है वो, इन जहां की तुम्हारी आंखें।
0: तो बहुत ही प्यारा गीत सुनना चाहते हैं, हम मिलके सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते, कौन जनाब बोल रहे हैं?
1: जिलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से मुकेश जिंदर बोल रहा हूँ मैं।
0: क्या करते हैं मुकेश जी?
1: भाई टू व्हीलर गाड़ी जो है सीट कवर के काम है।
0: तो क्या डिजाइन वाले बनाते हैं सीट कवर? आजकल तो कई तरह के डिजाइन आ गए हैं सीट कवर में मोटर बाइक के।
1: डिजाइन वाले बना देते हैं और ज्यादा प्लेन पसंद करते हैं।
0: प्लेन पसंद करते हैं
1: जी हाँ।
0: अच्छा, कपड़े का या वो जो वेलवेट आता है उसका या किस तरह?
1: वो लेदर के आते हैं अलग से, वो सीट कवर बनते हैं जो पानी वानी नहीं जाते हैं। लेदर वाले भी बनते हैं, सीट कवर वेलवेट वाले भी बनते हैं।
0: ज्यादा कौन से प्रचलन में है?
1: ये सीट कवर ही जो नॉर्मल आते हैं, ब्लैक कलर के आते हैं जो।
0: अच्छा, पर एक बात बताइए मुकेश जी, जब मैं स्कूटी चलाती थी तो उसमें ये जो सीट कवर नायलॉन के होते थे, या ये गर्मी के दिनों में तो हम बैठ ही नहीं पाते थे, जब बाहर आए ऑफिस से और हमने अपने स्कूटी या मोटर बाइक स्टार्ट की तो इतनी गर्म सीट हो जाती थी कि कई बार पानी डाल के ठंडा करना पड़ता था पहले उसे।
1: अभी क्या एक नेट वाला कवर आ रहा है, जाली वाला, तो वो लगाते हैं गर्मी के दिनों में, बरसात
0: हाँ,
1: के दिनों में।
0: हाँ,
1: कुछ तो जाली वाला आता है जो वो थोड़ा ठंडक रहता है, उसमें गर्म नहीं होती।
0: ये पते की बात कही है आपने, क्योंकि वो सीट कवर इतना गर्म हो जाता था कि उससे तो कई दिक्कतें आ जाती थी और आदमी ढंग से चला भी नहीं पाता था दुपहिया वाहन। तो ये बदलाव आ गए हैं और आप बनाते रहते हैं तरह तरह के, तो कितने बना लेते हैं एक दिन में सीट कवर?
1: ये मेरी दुकान है, गराज के ऊपर है, गराज जितने आए जितने टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का काम करता हूँ, ऊँटों के हुड वुड में सीट कवर ये भी बनाता हूँ।
0: तो फोर व्हीलर की जो सीट कवर बनते हैं या टू व्हीलर, इसमें कुछ अंतर होता है जो आप नहीं बना पाते हैं या?
1: सीटें बड़ी होती है, गाड़ी खड़ी रखने की भी जगह होनी चाहिए। हमारी छोटी दुकान है, छोटी गाड़ी टू व्हीलर आराम से खड़ा रह जाता है, दो गाड़ियाँ तीन गाड़ियाँ चार गाड़ियाँ खड़ी रह जाती है आराम से। उसके लिए जगह की भी स्पेस चाहिए ज्यादा बड़ी गाड़ियों के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए, आप तो उदयपुर में रहते हैं झीलों की नगरी में, कैसा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: उदयपुर में फिल्माया गया गाना है राजपूत का।
0: कौन सा?
1: मेरे संग संग आया यादों का मेला।
0: अरे वाह, ये उदयपुर में फिल्माया था?
1: उदयपुर राजस्थान, किशोर कुमार।
0: चलिए सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप भी अच्छा है। मैं कम से कम एक महीने से प्रयास कर रहा था मैडम, तो इसके बाद इतना ब्रस्ट तो आज लगा है, तो बड़ा मुश्किल से लगा था, चला अच्छा हुआ लग गया मैडम। और सबसे पहले आपको दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, आने वाले छठ पूजा की ढेर ढेर हार्दिक शुभकामनाएं।
0: अरे इतनी सारी शुभकामनाएं एक साथ दे दी, कहाँ रखेंगे हम?
1: क्या बोलते कि खुशी में रखिएगा, बांटते हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल, आपको भी सभी शुभकामनाएं आने वाले त्योहारों की, पर्वों की। क्या करते हैं आप चंद्रभान जी?
1: मैं साउथ ईस्टर्न कोर्ट फील्ड में नौकरी करता हूं मैडम, और नौकरी पीरियड में कई केंद्रों में फोन करता हूं, लाइव फोनिंग कार्यक्रम में जुड़ता हूं, रिकॉर्डिंग में जुड़ता हूं, ईमेल में जुड़ता हूं, बड़ा मोबाइल में बात करता हूं, छोटा मोबाइल में प्रसारण सुनता हूं, सभी केंद्र का सुनते रहता हूं। बहुत केंद्र का मेरा प्रसारण आया मैडम, और आपके केंद्र में लगा बहुत अच्छा लगा। आज मैं दिशा मूर्ति में मनोरंजन के साथ अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम, और गीत के बोल है खींच मेरी फोटो, गायिका है नितिन मोहन, दर्शन रावल और अन्य गायक हैं।
0: तो आप सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हाँ नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
1: काइले नगर से बात कर रहा मच्छिंद्र हरिदास चांडवले। मैं को जो गाना देने का राजा और रंग चित्रपट का, तो पहली पहचान करने वाली अपनी गुरु होती है माता जी, उसके बाद पिताजी होते है, पिताजी के बाद शिक्षक होते है, शिक्षक के बाद जो अपने को आध्यात्म वाला जो गुरु मिलता है उसको हम बोलते है जो आपने आँख पे जो मोती बिंदु की पट्टी रहती वो निकलने वाला गुरु मांगता जिंदगी में, तो वो सही रहती वो माँ, सब सुख दुख झेल के सब काम करके अपने को छोटे से बड़ा करती, तो आप उन सबका कर्ज अदा कर सकते, माँ का दूध का कर्ज जिंदगी में कभी अदा नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो।
1: हमारे माँ से पिताजी से जो संस्कार आए ले, हमने हमारे माता जी पिताजी को कभी नहीं बोले।
0: बहुत अच्छी बात बताई आपने मच्छिंद्र जी।
1: अभी मेरा विद भारती का दुकान में कार्यक्रम चालू है, मेरा टेलर काम का बिजनेस है, तो मैं ये बिजनेस कर रहे ले 50 साल से,
0: बचपन
1: से स्कूल में चौथी में से था जब तक तो आज तक लेके हम विविध भारती बचपन से सुन के बड़े होते आए ले। और आप जो लोग जो कार्यक्रम करते हैं एक से एक तक का सही सब कार्यक्रम, मेरा सबसे पसंदीदा कार्यक्रम त्रिवेणी में को जो गाना देने का राजा और रंग चित्रपट का।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी दीदी, सबसे पहले तो जबलपुर मध्य प्रदेश संस्कार धानी से प्यार भरा नमस्कार।
0: किसका?
1: अभिषेक सिंह ही बोल रहा हूँ मैडम। सबसे पहले तो दीदी, मैं सभी विविध भारती परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको मैं जो स्थापना दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा।
0: चलिए, अच्छी बात है, हम आपकी शुभकामनाएं स्वीकार करते हैं। लेकिन ये बताइए, क्या आपने वो स्थापना दिवस का जो लाइव ब्रॉडकास्ट था 11 बजे से शाम 4 बजे तक?
1: बहुत ही शानदार प्रोग्राम थे, बहुत ही अच्छा लगा, दिन भर बहुत ही आनंद आता रहा। हम तो दिन भर चालू करके लगातार सुन ही रहे थे। जो प्रस्तुति थी और जिन कलाकारों को बुलाया गया दीदी, बहुत ही काबिले तारीफ। विविध भारती में राष्ट्रीय सेवा परिवार का मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आगे भी ऐसी ही चीजें आती रहें, बहुत ही अच्छा लगता है जी।
0: आपने उसमें अपने विचार प्रकट किए थे, कुछ लिखा किसी विशेष के लिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, ये शिरकत की थी?
1: जी, सभी सभी प्रोग्राम में जितने भी लाइव चल रहे थे सभी में कमेंट और सभी में किया हुआ दीदी। मैं नियमित श्रोता फेसबुक से भी जुड़ा रहता हूँ, हर प्रोग्राम हर पोस्ट पे आपको कमेंट रहेगा दीदी।
0: हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लगभग जो कार्यक्रम है वो श्रोताओं को फेसबुक से हम लोग जुड़े रहते हैं और तब करते हैं, तो आपकी जो टिप्पणियां हैं, संदेश हैं, वो बहुत जरूरी हो जाते हैं किसी खास प्रोग्राम के लिए जब वो लाइव हो।
1: जी दीदी, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम थे।
0: तो हम भी अपने सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने लगातार इस कार्यक्रम में शिरकत की, हमें संदेश भेजते रहे और हमारे इस खुशी में वो भी शामिल थे, क्योंकि उन्हीं की है विविध भारती। बताइए अभिषेक जी, कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: 1989 की पिक्चर है भ्रष्टाचार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने संगीत दिया, आनंद बख्शी जी के बोल हैं, और अनुराधा पोरवाल और सुरेश वाडेकर जी ने गीत को गाया है। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं।
0: आइए सुने आपकी पसंद का ये गीत।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222867088, 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक का, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: सेहत के कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4।
2: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को है। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में समाचार और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
4: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें AI के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग से समाज को अधिक लाभ मिलेगा। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भाग ले रहे हैं। बैठक में GST विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा जारी है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा पुनर्जीवन पर गठित सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नमामि गंगा कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और नदी पुनर्जीवन में तेजी लाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए CR पाटिल ने कहा कि नदी पुनर्जीवन के लिए प्रदूषण नियंत्रण से परे जाकर जल उपलब्धता, पारिस्थितिकी स्वास्थ्य, भूजल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण, सतत शहरी विकास और सामुदायिक भागीदारी को सहमति करने पर एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठन करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने ये निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिए जिसमें दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच अनैतिक व्यवहारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11/2008 के मुंबई और पहलगाम आतंकी हमले को नहीं भूली है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। आर्किटेक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान की रिको गुंजी को हराया। हालांकि तन्वी शर्मा को महिला और थरुण मन्नेपल्ली को पुरुष सिंगल्स में हार का सामना करना पड़ा। पारादीप तट पर सरेक्स 26 समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि ने आज पारादीपी तट के 12वें राष्ट्रीय सुरक्षा खोज और बचाव अभ्यास सरेक्स 26 का अवलोकन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। Prime Minister Narendra Modi has said the platform of Indian Mobile Congress has played an important role in the country's progress in the telecom sector and digital connectivity. Mr. Modi highlighted that over the years, it has emerged as a platform showcasing India's progress and its aspirations. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi today. Mr. Modi said, today 5G connectivity has reached every district in the country. He said that the government is now working to connect around 25 crore students through various digital and online education platforms.
4: 2022 mein, isi month se humne desh mein 5G ki shuruaat ki thi. Phir 2023 mein maine bataya tha ki Bharat kaise 5G rollout se 5G रीच आउट की दिशा में आगे बढ़ रहा है और आज हम सभी देख रहे हैं देश के हर जिले तक 5G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। आज 5.5 लाख से अधिक बेस स्टेशन भारत में हैं जहां से 5G नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है और मोबाइल इंटरनेट स्पीड 2022 की तुलना में 10 गुना बड़ी है।
5: Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav today said that a consultation paper on the future regulation of artificial intelligence will be floated within the next month. Mr. Vaishnav was speaking to media after releasing the World Development Report 2026, The Promise of Artificial Intelligence. Mr. Vaishnav said the proposed consultation paper will focus on AI safety, cybersecurity, benefits and potential harms. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said that India recorded exports worth $863 billion last year and aims to export $1 trillion this year. The minister said this while addressing the curtain raiser of the 31st CII Partnership Summit in New Delhi. The summit will be held in Visakhapatnam on the 12th and 13th of the next month. Mr. Goyal said that the growth represents nearly 16% growth in a year, especially at a time when the global economy remains vulnerable to shocks and global growth is expected to fall below 3%. He said that the Reserve Bank of India had once again raised its growth projections for the current year. He also expressed confidence that India would continue to grow at over 7% and remain the fastest growing large economy. India has accused Pakistan of double speak on terrorism, saying Islamabad is attempting to gloss over its support for terror groups by announcing a reward for information on Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar. India said the world has not forgotten the 9/11, 26/11 and Pahalgam attacks. Exercising its right of reply in the UN General Assembly, India's first secretary Raghu Puri said terrorism cannot be defeated through declarations and called for action against its perpetrators, financiers and sponsors. The nation is celebrating the 94th anniversary of the Indian Air Force today. Established on the 8th of October in 1932, this momentous occasion marked the beginning of a vision for air power that would shape the nation's defense for decades to come. Addressing the gathering at Hindon Air Force Base in Ghaziabad on the occasion, Air Chief Marshal A.P. Singh recalled the Indian Air Force's combat operations during Operation Sindoor. He said the country saw firsthand the destructive power as well as the effective air defense operations of the Air Force during the operation. Veteran actor Nana Patekar passed away at the age of 75 after suffering a severe cardiac arrest at his residence in Goa this morning. Patekar, one of India's most acclaimed actors, was known for his performances across Hindi and Marathi cinema with a career spanning several decades. Benchmark domestic equity indices extended losses today amid weak global cues. The Sensex tanked 1,045 points or 1.44% to close at 71,593. The Nifty dropped 371 points or 1.64% to settle at 22,232. And that is the end of this news bulletin.
2: एक सौ 3.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। सायंकालीन सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्मों से भजन। राम तेरी गंगा मैली फिल्म से ये भजन आपको सुनवा रहे हैं, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

फिल्मों से भजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लगान फिल्म से ये भजन सुनिए, लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा है और संगीत दिया है AR रहमान ने।

सोनू निगम के गाए पीके फिल्म के इसी भजन के साथ आज का फिल्मों से भजन कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। 5:25 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम युवा मंच।

नमस्कार युवा साथियों, गुड इवनिंग। 103.4 मेगाहर्ट्ज एफएम धर्मशाला पर हम आप सबका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का आपका ये दिन अच्छे से गुजरा होगा और आपने जो सारे आज के लिए काम शेड्यूल करके रखे होंगे वो सभी काम आपने निपटा लिए होंगे, क्योंकि पूरी दिनचर्या हम सुबह ही बना लेते हैं और आज हमने ये सारे काम करने हैं। और अगर कुछ काम आज नहीं भी बना है तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कल कर लीजिएगा उन कामों को। लेकिन इसे हमें अपनी आदत नहीं बनाना है कि कल काम करेंगे। आप सब जानते ही हैं कि कल कभी नहीं आता, तो आज का काम आज ही करने की आदत बनाइए। एक दोहा है जो आपने सुना होगा या स्कूल टाइम में आपने पढ़ा भी होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। और इसका मतलब तो आप सभी जानते ही होंगे। वैसे एक बहुत ही अच्छा सा गाना इसी से रिलेटेड मेरे जहन में आ रहा है, गाने की हर लाइन को जरा महसूस करके सुनिएगा। युवा साथियों, हमारा ये कार्यक्रम आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन रहे हैं, तो हम उन सभी युवा श्रोताओं का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रोग्राम युवा मंच में। और मैं हूँ जी आपकी रेडियो दोस्त संगीता। तो सुनिए इस गीत को और फिर आपके लिए रोजगार से संबंधित जानकारी हम शेयर करने वाले हैं जो आपको आपकी पसंद की जॉब पाने में हेल्पफुल होगी। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए FM धर्मशाला के संग। आज थर्सडे है और आज होते हैं रोजगार समाचार और विज्ञान जगत की बातें।

0: लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल्लल् डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
1: इसे एनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ, और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
0: जी डॉक्टर साहब,
1: सिर्फ इसे नहीं, सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
2: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
4: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
3: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
5: युवा मंच प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। युवा साथी, सपने देखना बहुत आसान है, लेकिन उन सपनों के पीछे भागना और उन्हें हकीकत में बदलना, असली मज़ा तो उसी में है। तो अगर आप भी ढूंढ रहे हैं एक सही दिशा, एक नया मौका और करियर की एक मजबूत शुरुआत, तो आपके लिए हम लेकर आए हैं ताज़ा तरीन रोज़गार समाचार। तो डायरी पेन लेकर बैठ जाइए, और अगर आपकी मेमोरी बहुत शार्प है तो कानों से सुनकर माइंड में स्टोर कर लीजिए। आपका माइंड भी AI से कम नहीं है, वैसे AI को बनाने वाले भी आप जैसे युवा साथी ही हैं। और यहाँ पर आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि आप जैसे युवा साथी ने ही AI को तेज ही नहीं बल्कि जवाब देने से पहले सोचना सिखाया है, और ये कारनामा किया है भारत के युवा त्रपित बंसल ने, जिन्होंने 2007 में IIT कानपुर में दाखिला लिया, 2012 में डिग्री पूरी की और फिर बेंगलुरु में IISc में मशीन लर्निंग लैब में रिसर्च असिस्टेंट बनकर AI की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। AI को गहराई से समझने की चाह में उन्होंने मेटा में खास जगह बनाई। OpenAI के 01 रीजनिंग मॉडल की नींव रखने वाले त्रपित बंसल ने AI को सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि जवाब देने से पहले सोचना सिखाया और AI की दुनिया में इतिहास रच दिया। और आपको ये बताते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि AI के उभरते बाजारों में भारत टॉप 10 देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। तो युवा साथियों, अब बढ़ते हैं रोजगार समाचारों की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। पटवारी के 574 पदों की भर्ती प्रक्रिया इसी माह पूरी की जाएगी। इसके लिए 1,90,00,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं और ये भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग HPRCA के माध्यम से आयोजित की जा रही है। इसके लिए योग्यता 10+2 है और लिखित परीक्षा नवंबर 2026 तक पूरी की जाएगी। तो जिन्होंने आवेदन कर दिया है वे लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू कर दे, आपके पास 1 महीने का टाइम है, तो मजबूत

0: प्रणीति के साथ, अभ्यास के साथ परीक्षा की तैयारी करें। और कुछ पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो उसकी भी तैयारी आप आज ही से कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश वन विभाग इस वर्ष 500 सहायक वन रक्षकों यानी असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती कर रहा है, और 8 साल की नियमित सेवा पूरी करने के बाद उम्मीदवारों को फॉरेस्ट गार्ड के पद पर प्रमोट किया जाएगा। इसमें लिखित परीक्षा के साथ ग्राउंड टेस्ट भी शामिल होगा। अधिक जानकारी के लिए आप gov.gov पोर्टल पर अपडेट देख सकते हैं। ये भर्तियां शीघ्र निकलने वाली हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद अगली हम जानकारी जो है आपके साथ साझा करेंगे।
1: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
2: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
3: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
4: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
5: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
6: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: युवा मंच प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और रोजगार समाचारों की बात हम कर रहे थे। आर्मी पब्लिक स्कूल APS योल में PGT, TGT, PRT और बाल वाटिका टीचर्स के लिए अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन आप APS योल की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके भर सकते हैं, और ऑफलाइन आवेदन फॉर्म जमा करवाने की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर 2026 है, यानी कि कल तक का समय आपके पास है। और बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में वेल्थ एग्जीक्यूटिव और क्रेडिट एनालिस्ट के 1,100 पद खाली हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2026 है। आयु सीमा 21 से 33 वर्ष है, और baroda.bank.in इस वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और रोजगार समाचार और भी हैं, पहले एक गीत आपको सुनवाते हैं।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्युत टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: यार दो दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है
3: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
4: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
3: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
4: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: युवा मंच प्रोग्राम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और हमारे बहुत से युवा साथी न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास रोज़गार की जानकारियां हैं। स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर झारखंड हेल्थ मिशन सोसाइटी JRHMS ने 306 स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर पदों के लिए अधिसूचना जारी की है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 8 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक किए जा सकते हैं। और बिहार लोक सेवा आयोग स्कूल शिक्षकों के पदों के लिए भी आपको मौके प्रदान कर रही हैं। कुल रिक्त पद हैं 32,338। जी हाँ, 32,338। बिल्कुल भी देर ना करें, 26 अक्टूबर 2026 अंतिम तिथि है आवेदन करने की। 18 से 21 वर्ष तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट है bihar.gov.in। तो ये थी जानकारियाँ रोजगार से संबंधित।
6: क्या ऐसी कोई पॉलिसी है जो दे लाइफ टाइम सम अशर्ड के 10% का एनुअल इनकम और शॉर्ट और फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म चूज करने की फ्रीडम
7: है? ना LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी।
6: अच्छा, और अगर मुझे लिक्विडिटी की फैसिलिटी जैसे लोन अगेंस्ट पॉलिसी, टैक्स बेनिफिट और डेथ कवर भी चाहिए हो तो?
7: है ना LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी।
6: अरे इतना सब कुछ एक ही पॉलिसी में, ये पॉलिसी है ऑलराउंडर।
8: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी।

युवा मंच प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और युवा साथियों, अब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं विज्ञान जगत की जानकारियाँ। युवा साथियों, विज्ञान और विज्ञान जगत बहुत ही अनोखा, अनसुलझा और रहस्यमय है। इसे हम जितना जानते हैं उतना ही कम लगता है। आज हम बात करेंगे उस जीव की जिसके बच्चे उसके पेट से नहीं बल्कि उसकी पीठ से पैदा होते हैं। हाँ, आपने सही सुना, बच्चे पीठ से पैदा होते हैं। दरअसल ये है सूरीनाम फ्रॉग। ये मेंढक अपने बच्चों को अपने पेट में नहीं बल्कि अपनी पीठ के अंदर पालता है। और इसका मदरहुड शायद नेचर का सबसे अजीब एक्सपेरिमेंट है। और जब मेटिंग होती है तो मेल पहले एग्स को फर्टिलाइज्ड करता है और फिर एक एक करके उन अंडों को फीमेल की पीठ पर केयरफुली चिपका देता है। लेकिन असली चमत्कार इसके बाद होता है। फीमेल मेंढक की स्किन धीरे धीरे हर एग को चारों तरफ से घेरने लगती है और बढ़ने लगती है और उन्हें अपनी पीठ के अंदर छोटे छोटे प्रोटेक्टिव चैम्बर में सील कर देती है। यहीं उन चैम्बर्स में उनके अंदर बेबीज पूरी तरह डेवलप होते हैं। सबसे हैरानी की बात, ये नॉर्मल फ्रॉग की तरह टेडपोल स्टेज से नहीं गुजरते हैं और सीधे पूरी तरह बने हुए छोटे छोटे फ्रॉग्स बन जाते हैं। और करीब 3 से 4 महीने के बाद फीमेल फ्रॉग की पीठ हिलने लगती है और फिर एक एक करके दर्जनों टाइनी फ्रॉग्स उसकी पीठ से बाहर निकलते हैं और सीधे पानी में छलांग लगा देते हैं। यानी नेचर ने इस मेंढक को सिर्फ एक माँ ही नहीं बनाया बल्कि उसकी पूरी पीठ को एक लिविंग नर्सरी में बदल दिया। और शायद इसी वजह से नेचर की कुछ चीज़ें कल्पना से भी ज़्यादा अजीब होती है। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको रुचिकर लगी होगी।

युवा साथियों, अंत में यही कहना चाहेंगे कि सफलता के पीछे भागे नहीं, बल्कि हर पड़ाव में सीखते हुए आगे बढ़ें। सवाल पूछने और नई चीज़ें खोजने की आदत डेवलप करें। नई चुनौतियां ही नई ताकत पैदा करती हैं। इसी के साथ कार्यक्रम को संपन्न करते हैं और आपको बता दें कि कार्यक्रम प्रस्तुति डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सांझ, मौजा गराएं दिया। ये कार्यक्रम होगा 6:30 पर। आज बातचीत का विषय है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान वाणी कार्यक्रम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा शाम 7:10 पर। रात 8 सुनिएगा मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस। देशभक्ति गीत आपको सुनवाएंगे रात 8:30 पर। एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे अभिनेता अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत फिल्मों से गीत रात 9:15 पर। रंगे गजल ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा 9:30 पर। हिमाचली गीत और लोक गीत प्रसारित किए जाएंगे रात 10 और पुरानी फिल्मों से गीत हम आपको सुनवाएंगे रात 10:30 पर। शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात 8:45 पर समाचार संध्या, 9 News@9, रात्रि 11 हिंदी में समाचार और सभा के अंत में 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्री रामचरितमानस गान आपको आप सुनेंगे 6:40 पर। सुबह सुहानी कार्यक्रम होगा 7:10 पर। कल 8:30 पर आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। सुनो सखी ये कार्यक्रम कल प्रसारित किया जाएगा 12:30 पर। युवा मंच कार्यक्रम कल आप सुनेंगे 5:25 पर। ये थी आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 6 को है, थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली की यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है। उन्होंने कहा कि इस मंच ने दूरसंचार क्षेत्र में भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इतने वर्षों में ये मंच भारत की प्रगति और उसकी आकांक्षाओं को प्रदर्शित करने वाला मंच बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है।
1: 2022 में इसी मंच से हमने देश में 5G की शुरुआत की थी। फिर 2023 में मैंने बताया था कि भारत कैसे 5G रोल आउट से 5G रीच आउट की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और आज हम सभी देख रहे हैं देश के हर जिले तक 5G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। आज 5.5 लाख से अधिक बेस स्टेशन भारत में है, जहां से 5G नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, और मोबाइल इंटरनेट स्पीड 2022 की तुलना में 10 गुना बड़ी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के रोहडू और रामपुर विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 15.75 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत इन क्षेत्रों के प्रवास के दौरान भटवाड़ी और काशापाट में स्थानीय लोगों व बच्चों से किए वायदों को पूरा करने के लिए ये धनराशि जारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम केवल जनसंवाद का माध्यम ही नहीं बल्कि जन समस्याओं के समाधान और मौके पर किए गए वायदों को धरातल पर उतारने का प्रभावी माध्यम बन गया है। सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने कहा है कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए गंभीरता से कार्य किया जा रहा है और इस संबंध में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। धर्मशाला में आज कांगड़ा हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस दौरान हवाई अड्डे के सुचारू संचालन, विस्तार, आधुनिक सुविधाओं के उन्नयन और नई हवाई सेवाएं शुरू करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। राजीव भारद्वाज ने बताया कि वर्तमान में कांगड़ा हवाई अड्डे से 6 उड़ानें संचालित हो रही हैं और नई उड़ानें शुरू करने के लिए विमानन कंपनियों की ओर से सामने रखी गई समस्याओं के समाधान को केंद्रीय स्तर पर उठाया जाएगा।
2: जमीन का अधिग्रहण है वो हो चुका है, उसके आगे का प्रोसेस जारी है। आज की परिस्थितियों में 6 फ्लाइट्स आ रही हैं, 6 जा रही हैं। नई फ्लाइट्स कैसे आए उस विषय पे कंपनी के अधिकारी सब लोग बैठे थे, उन्होंने कुछ अपनी समस्याएं बताई हैं। उन समस्याओं के समाधान के लिए भी मैं माननीय मंत्री जी से दिल्ली में मिलकर इन सभी विषयों पर चर्चा भी करूँ और उसका समाधान करने का प्रयत्न भी करवाऊँ।
0: चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने कहा है कि टीबी मुक्त भारत व हिमाचल के लक्ष्य को पूरा करने में ग्राम पंचायतों और जन प्रतिनिधियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने आज टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत चंबा में जोश अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उपायुक्त ने क्षय रोग मुक्त घोषित 19 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को भी सम्मानित किया। मुकेश रेपसवाल ने पंचायत प्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्रों में टीबी के संभावित मामलों की पहचान कर लोगों को जांच व उपचार के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। सिरमौर जिले के नाहन शहर में बेसहारा पशुओं की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए नगर परिषद ने मुहिम तेज कर दी है। शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं को हटाकर अब गौ अभयारण्य कोटला बड़ोग भेजा जा रहा है। नगर परिषद अध्यक्ष उपमा धीमान ने लोगों से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शहर में बेसहारा पशुओं की समस्या लंबे समय से बनी हुई है और इसके समाधान के लिए नगर परिषद लगातार प्रयास कर रही है।
3: नगर परिषद द्वारा जो नाहन में जो हमारे बेसहारा पशु है इनको काउ सेंचुरी भेजा जा रहा है। नाहन में बहुत सारे पशु हैं जो कि इधर उधर के लोगों द्वारा छोड़े जाते हैं। मैं नाहन के सभी लोगों से भी ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर कोई इस तरह का दिखे कि जो अपने जो पशुओं को इधर उधर से हाके जो शहर के अंदर डालता है, तो अगर वो भी हमें किसी तरह पता चलता है तो उस पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी।
0: इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
4: एक 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। सुरमई सांझ कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं।

1942 अ लव स्टोरी फिल्म के इस गीत के साथ कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं। जावेद अख्तर ने गीत को लिखा है, कुमार सानू ने गाया है और संगीत है पंचम दा का।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी
2: सिरमई सांझ कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। मैंने प्यार किया इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। गीत की धुन बनाई है राम लक्ष्मण ने, आवाजें हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की।

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, है एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी। जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो, वहां भी दिल कहने से डरता है।

श्रोताओं, अब आपको समीर का लिखा हुआ गीत सुनवा रहे हैं। हम हैं राही प्यार के, इस फिल्म का ये गीत है। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, संगीत है नदीम श्रवण का।

कुमार सानू अलका याग्निक के गाए हम है राही प्यार के फिल्म के इसी गीत के साथ सुरमई सांझ कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम मौजा गिराए दिया।

मौजा गराइंदिया कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खेती में सबसे बड़ी परेशानी मेहनत नहीं होती, कई बार परेशानी होती है सही समय पर पैसा मिलना। सोचिए, बुआई का समय आ गया और बीज खरीदने हैं, खाद डालनी है, कीटनाशक लेना है, लेकिन जेब में उस समय पूरे पैसे नहीं हैं। अब किसान क्या करेगा? किसी रिश्तेदार से उधार मांगेगा या फिर ब्याज पर किसी साहूकार से पैसे लेगा। लेकिन रुकिए रुकिए, अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC है तो ऐसी ज़रूरत के समय में बैंक की क्रेडिट फैसिलिटी आपके काफ़ी काम आ सकती है ना। तो आज के कार्यक्रम मौजा गराइंदिया में हम आसान भाषा में समझेंगे किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, किसे ऋण मिल सकता है, कितना लोन मिल सकता है, ब्याज कितना लगता है और सबसे ज़रूरी बात, KCC के लिए अप्लाई कैसे करना है। नमस्कार किसान साथियों, आप सुन रहे हैं FM धर्मशाला पर मौजा गराइंदिया कार्यक्रम और आप हमारा ये कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन रहे हैं। आज आपके साथ मैं हूँ संगीता। तो अब सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड क्या है। इसे आप खेती किसानी के लिए बैंक की तरफ से मिलने वाली एक क्रेडिट फैसिलिटी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़ गई बीज की, खाद की, कीटनाशक की, सिंचाई की या फिर खेती से जुड़े ज़रूरी खर्चों की। ऐसे में हर बार किसी से उधार लेने के बजाय अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड की अप्रूव्ड लिमिट है तो आप उस लिमिट के हिसाब से क्रेडिट फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आसान भाषा में कहें तो KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड खेती के समय किसानों के लिए एक रेडी बैकअप हो सकता है। KCC कोई ऐसा ATM कार्ड नहीं है जिससे हर किसान को ऐसी रकम मिल जाए जिससे वो खुश हो जाए। आपको जितनी कितनी लिमिट की रकम मिलेगी, आपके पास खेती के लिए कितनी ज़मीन है, इस पर ये लिमिट निर्भर करती है। तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे इस लोकगीत के बाद।

0: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC पर जानकारी हम आज के कार्यक्रम में आपके साथ साझा कर रहे हैं और हमारा ये कार्यक्रम मौजा गराइंदिया आप सुन रहे हैं FM 103.4 MHz आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। तो चलिए किसान साथियों आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे किसान क्रेडिट कार्ड की। ये कोई ATM कार्ड नहीं है जिससे हर किसान को एक ऐसी रकम मिल जाए जिससे वो खुश हो जाए। आपको जितनी कितनी लिमिट मिलेगी ये आपकी खेती पर निर्भर करता है। अच्छा, इस बात को हम और अच्छे से समझते हैं और उदाहरण के साथ समझते हैं। देखिए, मान लीजिए रामलाल जी एक किसान है, बुआई शुरू होने वाली है, उन्हें बीज खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए लगभग 60,000 रुपयों की ज़रूरत है और अगर उनके पास पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड है तो ज़रूरत पड़ने पर उन्हें हर बार महंगे ब्याज पर उधार लेने की ज़रूरत कम हो सकती है। यही वजह है कि बहुत से किसान साथियों के लिए KCC खेती के साथ साथ समय काफ़ी और काम की सुविधा भी दे सकती है। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड खेती करने वाले हर किसान को, हर व्यक्ति को नहीं मिल जाता है और इसके लिए पात्रता होनी भी ज़रूरी है। तो चलिए अब जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड कौन कौन ले सकता है। देखिए किसान साथियों, KCC मुख्य रूप से खेती के पात्र किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके अलावा डेयरी फार्मिंग, मत्स्य पालन करने वालों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा उपलब्ध हो सकती है। यानी आप खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, डेयरी चलाते हैं या फिर मछली पालन करते हैं तो आप अपनी पात्रता चेक कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की अधिकतम लिमिट 5,00,000 रुपए तक होती है, लेकिन हर किसान को कितनी लिमिट मिलेगी इसे बैंक तय करता है और बैंक कई चीज़ों को देखता है, जैसे आपके पास कितनी ज़मीन है, कितनी फसल आप उगाते हैं, खेती करने में खर्च कितना आता है, आपकी ज़रूरत क्या है, लोन चुकाने की आपकी क्षमता कितनी है। यानी सिर्फ 5,00,000 रुपए तक की मैक्सिमम लिमिट देखकर ये मत सोचिए कि हर किसान को इतनी रकम मिल जाएगी। तो ये लिमिट जो है वो आपकी पात्रता, ज़रूरत और लोन चुकाने की क्षमता के हिसाब से तय की जाती है। और किसान क्रेडिट कार्ड के और क्या क्या फ़ायदे हैं इस पर भी और बात करेंगे इस लोकगीत के बाद।

0: बच्चों हमेशा रखो याद, चॉकलेट मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में दो बार, सुबह और शाम डेली दो मिनट दो बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है, खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली दो बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
3: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
4: मौजा गराइंदिया कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। किसान क्रेडिट कार्ड की आज हम बात कर रहे हैं और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आपको 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए ज़मीन या कोई दूसरी चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। आप केवल नियम और पात्रता के अनुसार 1,60,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं, लेकिन अब ये लिमिट बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है और किसानों और छोटे किसानों को ये सुविधा प्रदान की गई है। अब जब आपको लोन मिल जाता है तो उसे चुकाने का समय भी बैंक तय करता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि किसानों की इनकम हर महीने सैलरी की तरह नहीं आती है। किसान की कमाई फसल तैयार होने और बिकने के बाद आती है, इसलिए रीपेमेंट यानी लोन की किस्त का समय भी उसी हिसाब से तय किया जाता है। छोटी अवधि की फसलों जैसे धान, गेहूं और दूसरी मौसमी फसलों के लिए लोन की किस्त फसल चक्र के हिसाब से तय की जाती है। वही लंबी अवधि वाले फसलों के लिए ज़्यादा समय मिल सकता है। इसका फ़ायदा ये है कि किसान को फसल तैयार होने से पहले किस्त देने का दबाव सहना नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ एक और ज़रूरी बात है, समय मिलने का मतलब ये नहीं है कि लोन की किस्त को ही भूल जाना है। लोन आखिर लोन ही होता है और समय पर किस्त देना बहुत ज़रूरी होता है। और अब बढ़ते हैं आगे, किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधाओं पर नज़र डालते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा लंबे समय तक जारी रहती है। बैंक समय समय पर आपकी क्रेडिट लिमिट की जांच करता रहता है। सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना ही काफ़ी नहीं है, आपकी खेती, आपकी ज़रूरत और लोन की किस्त देने के आधार पर आपका क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल हो सकता है। इसीलिए इसे सावधानी से इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। छोटे किसानों के लिए, उनके लिए अगर हम बात करें तो उनके पास बहुत ही कम ज़मीन होती है, तो उन्हें इसके अंतर्गत 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। और यहाँ सिर्फ ज़मीन की कीमत को देखकर फ़ैसला नहीं किया जाता है, किसान की ज़रूरत और लोन की किस्त चुकाने की क्षमता को भी देखा जाता है। यानी छोटे किसान भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। देखिए किसान साथियों, आज खेती सिर्फ हल और बैल तक सीमित नहीं है। आज किसान मोबाइल पर मौसम की जानकारी देखता है, मिट्टी का परीक्षण करवाता है, नई खेती की तकनीक सीखता है। इसीलिए खेती से जुड़ी मॉडर्न ज़रूरतों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने पर ध्यान दिया जा रहा है।

और अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब हर किसान जानना चाहता है कि किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन तो मिल जाएगा पर ब्याज कितना देना होगा, यानी छोटी अवधि के लोन के लिए ब्याज की दर जो है वो 7% सालाना हो सकती है, लेकिन अगर किसान समय पर लोन चुका देता है तो ब्याज दर में राहत मिलती है, यानी समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को 4% तक के सालाना ब्याज का फायदा मिल सकता है। और अब बात करते हैं आवेदन की। किसान साथियों, किसी भी सरकारी या निजी बैंक की निकटतम शाखा में जाकर आप किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भी आप भरना चाहते हैं तो आप पीएम किसान पोर्टल से आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो आप नज़दीकी सीएससी सेंटर यानी लोक मित्र केंद्र में जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज़ों की अगर हम बात करें तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ज़मीन के कागज़ जिसमें कि खसरा और खतौनी नंबर होना चाहिए, साथ ही पासपोर्ट साइज़ के 2 या 4 फोटो और फसल घोषणा पत्र जिसमें खेत में उगाई जाने वाली फसल की जानकारी हो, इन सारे प्रमाण पत्रों के साथ आप आवेदन कर सकते हैं और किसान क्रेडिट कार्ड बनवा कर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में हमने आपके साथ जानकारी साझा की किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, और उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको रुचिकर लगी होगी। तो अब बारी आती है एक और लोकगीत की।

मौजा अगर आई दिया कार्यक्रम में आज हमने आपके साथ जानकारी साझा की किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, और उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी रुचिकर लगी होगी। और अब आपसे अनुमति चाहेंगे। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें दिया विकास पठानिया ने, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जतेंद्र पाल सिंह। और अब संगीता को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
2: GST Council today has recommended.
3: GST परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए के निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
2: Pending notices below the said threshold.
1: परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी है। जुर्माने और कार्यवास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत की विवेक पर छोड़ दिया गया है। कर फाइलिंग में देरी, गलती या भुगतान करने में विलंब करने वाले करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली की यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दीक्षा प्लेटफॉर्म से भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
4: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है, हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है, इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार केंद्र हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने युवाओं से भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने कौशल, रचनात्मकता और नवाचार क्षमता का सदुपयोग करने का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज एक संस्थान में श्री मुरुगन ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की केंद्रीय भूमिका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले वर्ष $863 अरब का निर्यात किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य है। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में 31वें

0: सीआईआई साझेदारी शिखर सम्मेलन के पूर्वावलोकन में ये बात कही। ये शिखर सम्मेलन 12 और 13 नवंबर को विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा पुनरुद्धार पर गठित सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और नदी पुनरुद्धार के कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं की नेतृत्व वाली सामूहिक भागीदारी मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। दो दिन का सम्मेलन आज शुरू हुआ। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. GST Council has removed power of arrest of tax officers and the Council has raised the threshold for prosecution from 1 crore rupees to 5 crore rupees. The punishment, whether fine or imprisonment or both, has been left to judicial discretion in every case. A taxpayer who files late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery, interest and proportionate penalty. Addressing media following the GST Council meeting in New Delhi this evening, Finance Minister said the Council recommended removing arrest powers under GST and raising the prosecution threshold. Finance Minister said no rate changes has been made in GST Council meeting and the rate structure is settled.
2: GST Council today has recommended common standards for notices and proceedings and no notices below the prescribed monetary threshold of 10,000 rupees, including withdrawal of pending notices below the said threshold. We will not be issuing any notices for monetary threshold of 10,000 or below.
1: Prime Minister Narendra Modi has said India's telecom sector is steadily moving towards greater self-reliance. He said the India Mobile Congress has played an important role in the country's progress in the telecom sector and digital connectivity. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi today. Emphasizing the critical importance of telecom and digital technology, Mr. Modi stressed that phone and network security must remain a priority. He also highlighted the growing challenges of deepfakes and cyber fraud and called for the development of a global framework to tackle the threat.
3: Deepfakes kitni badi chunauti ban chuki hai, ye bhi hum dekh rahe hain. Isliye zaruri hai ki hum iske liye ek global framework par kaam kare. Sarkare, technology companies, telecom operators, sabhi ko is framework se judna hoga. मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाए जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
1: Electronics and IT Minister Ashwin Vaishnav has said a consultation paper on the future regulation of artificial intelligence will be floated within the next month. Speaking to media after releasing the World Development Report 2026, the promise of artificial intelligence today, Mr. Vaishnav said that the proposed consultation paper will focus on AI safety, cybersecurity benefits and potential harms. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India recorded exports worth $863 billion last year and aims to achieve $1 trillion in exports this year. The minister said this while addressing the curtain raiser of the 31st CII Partnership Summit in New Delhi today. The summit will be held in Vishakhapatnam on the 12th and 13th of next month. Minister of State for Information and Broadcasting Dr. L. Murugan today called upon young Indians to harness their skills, creativity and innovative potential to contribute to the vision of Viksit Bharat by 2047. The minister was addressing students and learners at an institute in Noida today. 42

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से किसान वाणी कार्यक्रम रिले किया जाएगा।

इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी लाइव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का किसानों में बहुत बहुत स्वागत है। आज के किसान वाणी कार्यक्रम का विषय रखा गया है कीवी की उन्नत खेती। इस कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ फोन कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और कॉल करने के लिए फोन नंबर रहेंगे 280-81-52 और दूसरा नंबर रहेगा 280-80-34 और शिमला का एसटीडी कोड रहेगा 0170। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर के प्रमाणिक जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र शिमला से पधारे। डॉक्टर के प्रमाणिक जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
7: नमस्कार
6: डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कीवी की खेती की जब बात आती है तो कीवी की खेती की क्या क्या संभावना हिमाचल प्रदेश में रहती है?
7: हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा अशोक जी। देखिए, हिमाचल प्रदेश सेब का राज्य का हिसाब से माना जाता है
6: जी।
7: तो सेब शीतोष्ण फल में अंदर आता है
6: जी।
7: तो सेब के साथ साथ जैसे आपका अलग फसल नाशपाती का

0: गुठलीदार फलों का फसल, नट क्रॉप्स का सब कुछ आ जाता है। तो उसमें क्या है जी, इसको हम बोलते हैं जी पहाड़ी फल।
1: जी
0: तो कीवी जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये है बंगलोर में लालबाग गार्डन में एक ऑर्नामेंटल ट्री का हिसाब से इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वहाँ बर्ड बस्ट नहीं हो रहा था।
1: जी
0: तो उसको जब शिमला कंडीशन में ले आया गया तो शिमला में इसका बर्ड बस्टिंग हो गया, फ्रूटिंग भी आ गया। तो इसका मतलब कीवी भी एक सीटोसन फलों के अंडर आता है।
1: जी
0: ये मेरा बोलने का मतलब है, जहाँ पर ही आप सेब नाशपाती गुठलीदार फलों का जहाँ पर आपका शीत तापमान का मिनिमम एक टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है, तो वहाँ जैसे वहाँ भी आप कीवी का उगा सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा संभावना है क्योंकि आजकल जलवायु परिवर्तन हो रहा है,
1: जी
0: बागवानी में विविधीकरण आ रहा है, तो सब जगह में ये कीवी फल का आपका शिमला कंडीशन में और हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर ही आपका शीतोष्ण फल होता है वहाँ पर बहुत अच्छा संभावना है।
1: जी डॉक्टर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कीवी फल की जब बात आती है तो कीवी फल की गुणवत्ता क्या रहती है?
0: हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, कीवी फल का इतना अच्छा गुणवत्ता वाला फल है, आप जब हम लोग कोरोना के टाइम में सब लोग का एक पैनिक आ गया था
1: जी
0: तो डॉक्टर ने रेकमेंड करता था जी विटामिन सी और
1: जी
0: जिंक, ये दोनों चीज़ आपको लेना पड़ेगा।
1: जी
0: आपको पता ही है जी उसी टाइम में विटामिन सी या जिंक का टैबलेट हर डॉक्टर ने रेकमेंड करता था। तो हमारा जो कीवी फल के अंदर इतना ज़्यादा विटामिन सी है, भरपूर विटामिन सी,
1: जी
0: तो और कुछ कम कमी में उसका जिंक है। लेकिन और भी एक कीवी फल का है जो हमारा जो डेंगू डिजीज होता है
1: जी
0: जो मच्छर काटने से,
1: जी
0: एम्स का डॉक्टर रिकमेंड किया जी ये फल खाने से आपका जो डेंगू में जो ब्लड प्लेटलेट काउंट घट जाता है ना, ये कीवी फल खाने से उसको स्टेबल कर देते हैं,
1: बहुत गुणकारी फल है।
0: बहुत गुणकारी। और बाकी इसके अंदर और भी कुछ चीज़ है, जैसे हम डायबिटिक पेशेंट के लिए बोलते हैं जी जहाँ पर आपका शुगर का और फ्रुक्टोज का लेवल का मतलब सोडियम पोटेशियम लेवल आपका, जिसका आँखों में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू से कीवी सीड के अंदर ओमेगा थ्री फैटी एसिड जो अखरोट में डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कीवी
1: जी
0: सीड के अंदर भी उसको पाया जाता है।
1: जी
0: तो हम कीवी जब खाता है वो सीड के साथ ही खाता है,
1: जी
0: उसको सीड को तो अलग अलग नहीं करता है ना। तो इसके इतना गुणवत्ता है जी, आप एस्टमा डिजीज देखिए, हार्ट पेशेंट देखिए, आपका कोरोना पेशेंट देखिए, डेंगू में कोई पेशेंट है, सबके लिए कीवी फल बहुत अच्छा महत्व लगता है।
1: जी डॉक्टर साहब, इस बीच मैं किसान भाई को बताना चाहूँगा कि ये हमारा किसान वाणी कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और फोन कॉल के द्वारा आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आज का विषय रखा गया है कीवी की उन्नत खेती और इसके लिए फोन नंबर रहेंगे 280-81-52 और दूसरा नंबर रहेगा 280-80-34। तो किसान भाई, आप इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपसे अब मैं ये जानना चाहूँगा कि कीवी की खेती की जब बात आती है तो कीवी की खेती जब किसान करता है तो उसे जो है क्या क्या सावधानियाँ इसमें रखनी होती है?
0: हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, कीवी बेल का तरह पौधा होते हैं,
1: जी
0: जैसे कि अंगूर का आपका बेल देखा
1: जी
0: तो कीवी का भी इसी तरह बेल के तरह। तो उसके पौधे इसको खेती करने से पहले आपको एक ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जिसके ऊपर पौधे चढ़ेगा इसी तरह आपका एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा,
1: जी
0: पहले उसको डिसाइड करना है। तो इसलिए इनिशियल थोड़ा कॉस्ट लग जाता है, लेकिन एक परमानेंट स्ट्रक्चर बन गया ट्रेनिंग का तब तो आप कभी भी इसका जो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बाकी जो है कीवी में एक है जी, इसमें नर और मादा ये दो प्रकार का वो इसका कीवी का पौधे होते हैं। और लगाने के टाइम में आपको ध्यान देना पड़ेगा जी, नौ मादा पौधे के साथ एक नर पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है।
1: जी
0: तो जब आपको कोई किसान भाई इसको खेती करेंगे इसको थोड़ा ध्यान दे। और इसका फल बहुत गुच्छा में लगता है, गुच्छा में लगने से क्या होता है जी फ्रूट साइज ठीक नहीं पाया जाता है। तो
1: जी
0: आपको हम रिकमेंड करते हैं जी इसको फ्रूट साइज को हैंड थिनिंग करके, जैसे कि आपको एक गुच्छा में 6-7 फ्रूट

0: रख दिया तो उसका साइज बहुत अच्छा मिल जाता है, तो वो ध्यान रखना चाहिए। और कभी कभी होता है जो लोग बोलते हैं जो हमारा गुच्छा में ही फ्रूट साइज को इंक्रीज करना है, तो बायो रेगुलेटर आजकल बाजार में आता है, जैसे कि साइटोफिक्स केमिकल्स होता है
1: जी
0: इसी तरह जो
1: डॉक्टर साहब,
0: आता
1: इस
0: है।
1: बीच एक फोन कॉल लेना चाहेंगे।
0: अच्छा जी,
1: हेलो।
2: हेलो,
1: हेलो जी, नमस्कार जी, अपना नाम बताएं।
2: खेमचंद कश्यप बात कर रहा था जनाब, घेनी के डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार खेमचंद जी, कैसे हैं?
2: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है
0: हाँ
2: ना
0: हाँ मैं ठीक
1: जी?
0: हूँ, बताइए।
2: अच्छा, आप ये थोड़ा सा, ये जो नर वैरायटी है वो मीडियम हिल के लिए कौन सी बढ़िया रहती है?
0: देखिए, हमारा का डोमर वैरायटी इंडिया में अभी दो वैरायटी बहुत अच्छे चल रहे हैं, एक तो है
2: जी
0: आपका तुमड़ी और एक
2: जी
0: मतुआ, ठीक है ना। लोग एलिसन मेल का हिसाब से भी दे रहे हैं कुछ, पहले क्या है एलिसन वैरायटी के साथ जो मेल प्लांट हम दे दिया तो उसके हिसाब से
2: जी
0: एलिसन मेल चल रहा है, तो बाजार में
2: जी
0: उसी हिसाब से एलिसन मेल भी आपको मिलेगा। तो हमारा जो मीड हिल्स का आप जो बात कर रहे हैं, टुमड़ी है और एलिसन मेल आप जो अभी उसका नाम से भी चल रहा है, तो ये दोनों ही चलेगा
1: जी डॉक्टर साहब, हम उम्मीद
0: ना। और
1: करें
0: एक चीज मैं
1: जी।
0: खेमचंद जी को बोलना चाहूंगा, आपका बाई चांस आपके ऑर्चर्ड में मेल का कमी है ना खेमचंद जी?
1: जी जी बोलिए आप।
0: हेलो।
1: जी,
0: हाँ, जो आपको बागीचा में जो मेल का कमी है रेशियो, तो आप क्या कर सकते हैं, कीवी का जो टेनिया है ना, जो डिफरेंट ब्रांचेस है, वो ब्रांचेस में आप मेल को, फीमेल का आपके पास प्लांट ज्यादा है तो उसमें जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस में आप मेल को बार्डिंग व ग्राफ्टिंग करके उसका पूरा कर सकते हैं, ये
1: जी
0: ध्यान रखिए।
1: जी डॉक्टर साहब, इस बीच एक श्रोता हमारे साथ फोन कॉल पे और जुड़ रहे हैं।
0: अच्छा,
1: हेलो।
2: हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी, अपना नाम बताएं सर।
2: जी, मैं योगेश बोल रहा हूँ, शिमला से बोल रहा हूँ
1: जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपनी समस्या बताएं डॉक्टर साहब के पास।
2: जी। धन्यवाद। जैसा कि आप कीवी के बारे में बात कर रहे थे तो मेरा भी इंटरेस्ट जागा इसको सुनने में। आपने
1: बिल्कुल
2: बताया
1: जी,
2: कि
1: बिल्कुल
2: जहाँ
1: बिल्कुल
2: जहाँ सेब की खेती की जा सकती है वहाँ पर भी कीवी की खेती की जा सकती है। तो मैं ओरिजिनली करसोग जिला मंडी का हूँ, तो वहाँ पर भी मेरे गांव में सेब की खेती होती है, लेकिन कीवी के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। मैंने आज तक भी कोई कीवी का फल वहाँ नहीं देखा, तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पर भी कीवी की खेती की संभावना हो सकती है। अभी जैसे मैं अभी शिमला में हूँ, तो कभी मैं घर भी जाऊँगा 1-2 हफ्ते के बाद, तो मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर भी क्या मुझे शिमला में मिल सकते हैं कीवी, किस तरह से होती है, या बीज होते हैं क्या होते हैं, ये प्रोसेस मैं।
0: हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा जोगेश जी।
2: जी
0: देखिए, कीवी में बीज नहीं है। देखो, कोई भी फलदार पौधे को आप तैयार करने के लिए आपको बीज से भी उगा सकते हैं, और लेकिन बीज में क्या प्रॉब्लम है फलदार पौधे के लिए, जैसे कि क्वालिटी आप चाहेंगे ना, एक एक बीज से जो सीडलिंग बनता है तो वो सीडलिंग में एक एक दूसरा सीडलिंग से बहुत डिफरेंट आ जाता है, ठीक है ना। इसलिए फलदार पौधे को हम क्या करते हैं, बार्डिंग ग्राफ्टिंग मतलब कलम के द्वारा कटिंग इसी तरह करते हैं, जो पौधे जैसे चाहेंगे, खाली कीवी का नहीं है, आप चाहोगे कोई अच्छा वाला सेब का पौधे, अच्छा वाला नाशपाती का पौधे, अच्छे वाला अखरोट का पौधे, तो वो पौधे से आपको उसमें बार्डिंग ग्राफ्टिंग कटिंग टिश्यू कल्चर इसके थ्रू जो पौधे बनेगा ना, वो जैसे आप चाहेंगे ऐसे बनेगा, जो हम बोलते हैं ट्रू टू टाइप, जैसे आप चाहोगे ऐसे पौधे। और सीड से जब उगाएगा कोई पौधे, उसमें वेरिएशन आ जाता है, कभी फ्रूट साइज बड़ा हो सकता है, कभी छोटा हो सकता है, कोई खट्टा ज़्यादा हो सकता है, मतलब आपको पसंदीदा ना भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। और पौधे आप जो बोला, पौधे उपलब्ध तो आपका शिमला में जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का क्षेत्र केंद्र है वहाँ से पौधे उपलब्ध कर सकते हैं ना, हमारा जो डॉक्टर वाईएस पाडवान यूनिवर्सिटी नौनी से है वहाँ से ले सकते हैं, डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है नवबहार में वो लोग भी पौधे उपलब्ध कराते हैं, फिर रजिस्टर्ड जो नर्सरी होता है ना वहाँ से भी आप पौधे ले सकते हैं। अभी बात हो रहा है जी आपका एरिया में आप कोई नहीं लगाया, देखिए कभी कभी होता है जी, हिमाचल प्रदेश एक सेब का राज्य का हिसाब से माना जाता है, जहाँ पर जाओगे सब लोग सेब के ऊपर ही, इतना अच्छा इसका प्राइस मिलता है, लोग उसी हिसाब से सेब का ही अपनाया है ना। अभी क्या होता है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, फिर आपका बागवानी में विविधीकरण आ रहा है। एक कभी भी आपका फ्लावरिंग के टाइम में, सेब का फ्लावरिंग के टाइम में बाई चांस आपका टेम्परेचर घट गया बा ओले हो गया आ गया, तो फसल नष्ट हो सकता है पूरा फसल। तो इसलिए हम बोलते हैं जी एक ही फसल ना लगा के आपका जायगा होगा तो थोड़ा थोड़ा करके विविधीकरण करिए। तो इसी हिसाब से आप कीवी का खेती भी कर सकते हैं। देखो कीवी में एक और भी जो एडवांटेज है, जे कीवी ज़्यादा सड़ने वाला फसल नहीं है, जैसे सेब का भी लंजेविटी मतलब सेल्फ लाइफ ज़्यादा है, तो इसी तरह आपको कीवी का भी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छा है। जब कीवी में शिमला कंडीशन में, जब ठंडापन एरिया में कीवी तोड़ने के बाद 3 महीने ऐसी रूम टेम्परेचर रह जाता है, बाकी आप इसको कोल्ड टेम्परेचर में रखोगे इसको तो कितना सा महीने में चलेगा, वो तो लॉन्ग डिस्टेंस में भी इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और आपको पहले भी मैं बताया कीवी का गुणवत्ता इतना ज़्यादा है जो लोग आजकल कीवी का पीछे चल रहा है, बहुत सारे जो प्लेन एरिया में जहाँ पर कीवी नहीं होता है वो हिल एरिया में डिपेंड करते हैं। तो आप इसको वेंचर ले सकते हैं, तो लेकर इसका फायदा उठा सकते हैं।
1: जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर के प्रमाणिक जी। आपसे अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल की जब बात आती है तो कीवी फल बागीचों में क्या क्या कार्य जो हमारे किसान भाइयों को करने होते हैं।
0: देखिए कीवी में आजकल तो फल पौधे में है,
1: जी
0: मतलब अभी तोलन का समय का हो रहा है। जैसे आपको एक तो है कीवी में अभी कुछ कीवी जो लोअर बेल्ट में हो रहा है,
1: जी
0: जो कुछ मिड हिल्स में हो रहा है, कुछ हाई हिल्स में हो रहा है। तो वो किस्में, कौन से वाला किस्में जो लोअर बेल्ट में लग रहा है वो डिपेंड करेगा। ये नहीं है जो ऊंचाई वाला क्षेत्र में जो किस्में अच्छा देंगे वो नीचे वाला क्षेत्र में नहीं देंगे, अगर नीचे वाला क्षेत्र में जो किस्में अच्छा देंगे वो ऊपर वाला क्षेत्र में नहीं देंगे। ये आपको डिपेंड करेगा आपको कितना हाइट में आप पौधे लगा रहे हैं, कितना एस्पेक्ट में आप पौधे लगा रहे हैं, ये बहुत सारे फैक्टर इसमें आ जाता है। लेकिन आजकल पौधे जो निचले वाला हिस्सा में है कि भी वो हार्वेस्टिंग शुरू हो गया, तो हार्वेस्टिंग शुरू होने के टाइम में एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि
1: जी
0: ये प्रॉपर मैच्योर हो। जब तोलन के पहले इसका ऊपर जो आपका हेयर्स होता है ना कीवी में,
1: जी
0: एक रुआ टाइप होता है, तो वो हेयर्स इजीली रिमूव हो जाता है। जैसे कोई कपड़ा कीवी के ऊपर लगाएगा तो सारे हेयर्स झड़ जाएगा, ये एक क्राइटेरिया ये है। बाकी जिसके पास कोई हैंड रिफ्रेक्टोमीटर, एक आजकल बहुत सारे बागवान भाई या किसान भाइयों के पास है, तो उसमें से देखोगे जे 6.5 मिनिमम TSS जो डिग्री ब्रिक्स का एक लेवल वो आ रहा है,
1: जी
0: वो इजीली फ्रूट को हाथ दोगे तो फ्रूट हाथ में आ रहा है,
1: जी
0: मतलब उसका जो पेडिसेल से नीचे आ रहा है। तो वही सब देख के एक मैच्योरिटी इंडिसेस हम बोलते हैं जी हाँ फल को तोड़ने का लायक हो गया। तो अभी फल तो तोड़न हो रहा है, तुरंत के बाद आजकल पैकेजिंग मतलब पैकिंग और मार्केटिंग का जमाना है। जो प्रॉपर आप पैकेजिंग करेगा, पैकेजिंग और ग्रेडिंग ठीक से करेंगे तो आपको मार्केटिंग अच्छा मिल होता है। क्योंकि कभी कभी हमारे पास बागवान भाइयों बोलते हैं जो हमारे पास तो बहुत कीवी हुआ, कीवी आप क्या, लेकिन भाव नहीं मिल रहे,
1: जी
0: तो क्या कारण है? तो उसको जब पूछा भाई मार्केट में कैसे ले गया, वो बोला जी बोरिया में भर के ले गया।
1: जी डॉक्टर साहब, इस बीच में आपको रोकना चाहूँगा, एक फ़ोन कॉल हम ले लेते
0: हाँ
1: हैं।
0: जी
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार जी, अपना नाम बताएं।
2: सर, मेरा नाम हेमंत शर्मा है,
1: जी हेमंत शर्मा जी, बताएं आप।
2: मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन के अरकी से बोल रहा हूँ सर।
1: जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
2: हाँ जी
1: डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहेंगे आप?
2: सर, मुझे मालूम पड़ा कि आज कीवी फल के बारे में कुछ बताएंगे आप।
1: जी, पूछिए आप प्रश्न, पूछिए
0: बताइए।
2: अपना। हाँ जी,
1: प्रश्न पूछिए आप अपना।
2: हाँ, मैंने बात करनी थी सर कि ये जो कीवी के जो फल है ना,
1: बिल्कुल जी,
2: कीवी के जो पौधे हैं, इनकी रोपाई हम कब कब करें और ये पौधे कहाँ से मिल सकते हैं?
1: जी डॉक्टर
0: अच्छा
1: साहब,
0: जी हाँ, देखिए बहुत अच्छा, अब आपका जानकारी देने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो कीवी का पौधे ये है पतझड़ हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डोरमेंसी आ जाता है, सुप्त अवस्था में चला जाता है। तो ये पौधे जैसे हम सेब नाशपाती गुठलीदार फलों को हम जैसे देते हैं, ये दिसंबर एंड से लेकर फेब्रुअरी तक आप इसको पौधे को लगा सकते हैं, ठीक है ना?
2: जी
0: ये पौधे आप उपलब्ध होंगे, हमारा पास भी है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्र केंद्र शिमला में, हमारा ढांडा में फार्म है, वहाँ से उपलब्ध हो सकता है, उपलब्ध हो सकता है नौनी में डॉक्टर वाइस पार्वन यूनिवर्सिटी जो नौनी में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ से उपलब्ध हो सकता है, फिर आपका नवबहार में जो डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर वो लोग भी पौधे उपलब्ध कराते हैं, बाकी आपका जो रजिस्टर्ड नर्सरी है ना वहाँ से भी
2: जी
0: पौधे उपलब्ध कर सकते हैं।
2: मतलब नियरेस्ट हमारे को ढांडा से मिल सकते हैं सर, ये ना।
0: हाँ ढंड से मिल सकते हैं, लेकिन
2: और
0: आपको आपको
2: ये
0: एक पहले से ही एक एप्लीकेशन देकर, क्योंकि आप देखिए जे इस साल का पौधे ये तो रेडी मतलब हो गया, जो पौधे ये कितना पौधे आएगा वो जब पौधे अपलोड करते हैं तभी पता चलता है, लेकिन एक नेक्स्ट ईयर के लिए जैसे आपका डिमांड आएगा तो पता चलेगा जे नेक्स्ट ईयर कितना डिमांड हो रहा है, तो इस साल आपको जैसे ही आपको अक्टूबर नवंबर में से ही आपको डिमांड आना आ जाना चाहिए था, आ जाना चाहिए जे नेक्स्ट ईयर के लिए कितना पौधे और उगाएगा, इस बार आप डिमांड दे दीजिए जितना होगा तो आपको दिया जाएगा।
2: मतलब एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, एक
0: हाँ
2: लेटर देना
0: तभी
2: पड़ेगा।
0: पता चलेगा ना जो, हाँ एक्चुअली एप्लीकेशन बेसिस में ही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व उसी हिसाब से हम बनाते हैं, जे जो जो एप्लीकेशन जैसे आया हमारा पास उस हिसाब से
2: जी
0: हम कॉल करते हैं। एक्चुअली 3 दिन हमारा प्रोग्राम होता है ढांडा में ये प्लांट सेल का और प्रशिक्षण का, तो उसी
2: ठीक है
0: हिसाब से हम जैसे हमारा सपोज हमारा पास 500 फार्मर्स का एप्लीकेशन आ चुका है तो फर्स्ट डे में 150 को बुलाए, नेक्स्ट डे अनदर 150 को, और थर्ड डे में अनदर 150 को, इसी तरह हम बुला के सबको कोशिश करते हैं कुछ कुछ पौधे सबको मिल जाए।
2: अच्छा,
0: जी
2: अगर ये पौधे हमें कुछ जैसे मान लो मिल गए तो ये फिर अभी अगले अगले महीने जैसे नवंबर दिसंबर में इनकी रोपाई कर देंगे सर?
0: नहीं, दिसंबर एंड में, मैं क्या बोल रहा हूँ, पौधे हम देंगे तो दिसंबर एंड से या जनवरी फर्स्ट वीक में ही देंगे ना,
2: अच्छा अच्छा ठीक
0: उसका
2: है,
0: डेट आपको बता देंगे, जनरली हम जनवरी फर्स्ट वीक में ही देते हैं, कोई
2: अच्छा
0: दूसरा
2: अच्छा
0: जगह से आपको पौधे मिल गया तो दिसंबर एंड से आप लगाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना।
2: जी।
0: हाँ
2: अच्छा
0: ऐसे नहीं
2: ये
0: है, जब तक पूरा पतझड़ नहीं हो जाएगा जो पौधे तैयार हो रहा है उसके बाद जब सुप्तावस्था में चला जाता है डोरमेंसी में उसके बाद ही ये सब शीतोष्ण फलों को पौधे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसी टाइम में लगाना पड़ता है, सैपफ्लो से पहले ही आपको जो भी ट्रेनिंग पूर्णिंग करना पड़ता है कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा वो भी ध्यान देना पड़ेगा, उससे पहले जब सैपफ्लो शुरू हो जाएगा उसी टाइम में आप कोई कॉन्टैक्ट कर दिया फिर आपको नुकसान हो सकता है। जी
2: बहुत बहुत बढ़िया बात बोली आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। एक चीज और पूछनी थी आपसे कि ये जो पौधे हैं ये कब तक फल देना शुरू कर देते हैं सर? 1-2 साल में
0: देखिए
2: फल देना
0: 4 साल
2: शुरू?
0: में फल देना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ
2: अच्छा
0: कुछ में जो फ्लावर प्राइमर्डिया मतलब उसमें हो जाता है वो तो 2 साल में भी फ्रूटिंग आ जाता है। आप जब नया ऑर्चर्ड कर रहे हैं और चीज ध्यान रखिए इसमें नर और मादा पौधे अलग होते हैं, तो उसका उसका
2: अच्छा
0: आपको लगाने के टाइम में ध्यान रखिए जे 9 मादे पौधे के साथ एक नर पौधे लगाना बहुत जरूरी है,
2: अच्छा 9 मादा पौधे और 1 नर
0: एक
2: पौधा।
0: नर।
2: अच्छा
0: हाँ
2: अच्छा ठीक है। और ये मतलब 4 साल या 3 या 4 साल
0: तीन,
2: में
0: हाँ
2: ठीक
0: कभी कभी 3 साल में भी फल दे देते हैं ऐसे।
2: है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर
0: अच्छा
2: जी।
0: जी धन्यवाद।
1: हेमंत जी, फोन करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कीवी फल की जब बात आती है तो कौन कौन सी किस्में जो है इसमें अच्छी रहती हैं जो कि अच्छा उत्पादन देती है?
0: देखिए आजकल हमारा तो पुराना किस्में 5 तो हिमाचल प्रदेश क्यों, आपका जम्मू कश्मीर बताइए, उत्तराखंड बताइए,
2: जी
0: अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सब जगह में ये जो दार्जिलिंग ये 5 किस्में तो आ गया, 5 किस्मों में जैसे हार्वर्ड हो गया, मंटी हो गया, एलिसन हो गया, ब्रूनो हो गया, एबॉट हो गया, ये 5 किस्में तो है, लेकिन आजकल फार्मर्स क्या है ये 5 किस्में जो है इसका जो फ्रेश है ना खाने वाला फ्रेश ये हरा हरा पीला टाइप होता है, लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं गोल्डन कीवी आपका रेड कीवी इसी तरह डिमांड हो रहा है, तो इसी तरह इंजा रेड बोल के रेड कीवी का फ्रेश और एक जेपरी जो न्यूजीलैंड का है वहाँ से आपका गोल्डन कीवी का फ्रेश आ रहा है।
1: जी डॉक्टर साहब, इस बीच एक फोन कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो
2: हेलो,
1: हेलो,
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार
2: नमस्कार,
1: नमस्कार जी सर, अपना नाम बताएं।
2: मैं रमेश बोल रहा हूँ जी, मशोबरा से।
1: मशोबरा से
2: हाँ
1: स्वागत है आपका
2: बताइए
1: कार्यक्रम में, क्या पूछना
2: डॉक्टर साहब।
1: चाहेंगे डॉक्टर साहब
2: नमस्कार
1: से?
2: जी, डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार।
2: डॉक्टर साहब, मैंने ये कीवी के पौधे 5-6 पौधे लगाए थे, तो
0: हाँ
2: डॉक्टर साहब वैसे तो वो ये ठीक चल रहे हैं, पर जब इसमें फूल आता है सर ना,
0: हाँ
3: उस टाइम फिर ये झड़ जाता है, इसमें कोई कोई रोग लग जाता है, इसमें चींटियां वगैरह लग जाती है कुछ?
0: नहीं, अब पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो पांच छह पौधे हैं,
3: जी
0: ये पौधे का आपको पता है, ये मतलब नर पौधे है कि मादा पौधे है, ऐसे कुछ आइडिया है?
3: सर, जो जिसमें फूल लगता है उसी में तो
0: ना
3: फूल
0: ना ना
3: लगता
0: ना
3: है
0: ना ना ना, मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ आपको। ये
3: जी
0: मादा में भी फूल आएगा, नर में भी फूल आएगा, लेकिन दोनों
3: जी
0: में अंतर है फूल का ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ
3: अच्छा
0: जे आपको सारे पौधे एक जैसी है कि थोड़ा फूल में अलग अलग है, ये
3: मतलब
0: ध्यान
3: मैं
0: देना
3: कभी
0: पड़ेगा। क्योंकि
3: सर
0: मैं
3: इसको
0: पहले से ही
3: हमने
0: बता
3: देखा
0: रहा हूँ
3: नहीं
0: जे
3: है।
0: आपको ये परागण का होना चाहिए, जे नर और मादा का रेशियो, जैसे मैं पहले से ही बोल रहा हूँ जे नर मादा के साथ एक नर पौधे लगाना बहुत जरूरी है। कभी
3: अच्छा वो
0: गलती
3: तो
0: से
3: है जी
0: आपके सारे पौधे नर ना आ गया, बस सारे पौधे मादा ना आ गया, इसलिए आपको जब फ्लावरिंग हो गए, वो फूल को लेकर हमारे पास आप आ जाइए, बा फूल का फोटो लेकर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो मैं बताऊंगा आपको क्या ये वाला सिचुएशन है। कि
3: जी
0: और
3: जी जी
0: ऐसे नहीं है जी आप बोलेंगे जी मैं गलती कर लिया तो इसको सारे पौधे काटना पड़ के फिर दूसरा पौधे लगाना पड़ेगा, मतलब जो
3: जी
0: रेशियो मैं बता रहा हूँ ऐसे नहीं है। आपका जो
3: जी
0: मादा पौधे आ गया तो आपको छह पौधे में एक पौधे को नर पौधे में आपको ग्राफ्टिंग बडिंग करके कन्वर्ट कर देंगे, बा आपको अलग अलग जो टहनिया है ना, ब्रांचेस है, एक एक नर पौधे का आपको ब्रांच लगा दीजिए, छह में छह ब्रांचेस में एक एक नर आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एक ब्रांच में, तो वो ग्राफ्टिंग
3: अरे
0: बडिंग आपको आता है तो वो कर सकता है। नर होगा तो मादे पौधे का
3: इसमें
0: ग्राफ्टिंग करिए, और मादा हो गया तो नर पौधे को उस पौधे को ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा, लेकिन आपको
3: जी सर इसके
0: जब
3: अलावा
0: फूल
3: मैं
0: आएगा
3: एक
0: फूल देख के ही पता चलेगा।
3: जी सर, इसमें आपने बताया ना जो ग्राफ्टिंग का, सर तो इसमें ग्राफ्टिंग का क्या सीजन रहता है?
0: ग्राफ्टिंग मतलब कलम, कलम
3: जी जी बिल्कुल
0: ग्राफ्टिंग बडिंग उसका, जैसे आपको मैं कीवी का ही ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा, जो वैरायटी आपको नर उसमें नर पौधे होगा तो मादा पौधे का कोई ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा, और मादा पौधे हो गया तो नर पौधे का ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा।
3: जी सर, इसका सही समय कौन सा है सर, कौन सा मंथ है?
0: हाँ, ये ग्राफ्टिंग का जो है आपका जनवरी फरवरी महीने बहुत अच्छा रहता है।
3: जनवरी फरवरी में।
0: हाँ जी,
3: और सर इसमें जो इसकी जो फेंसिंग लगती है सर, इसमें कोई सरकार द्वारा कोई सब्सिडी या कुछ ऐसा दिया जाता है विभाग द्वारा?
0: एक्चुअली हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट में हाँ कीवी का प्लांटेशन, न्यू प्लांटिंग करने के लिए कुछ ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो इनिशियल स्टेज में जरूरत पड़ता है ना,
3: जी
0: जो
3: जी
0: टी बार बा अलग अलग आपका जो पारगोला सिस्टम, आर्ट सिस्टम जो भी है, बावर
3: जी
0: सिस्टम, वो करने के
3: जी
0: लिए मेरे ख्याल से टी बार सिस्टम के ऊपर हिमाचल गवर्नमेंट का एक स्कीम चल रहा था लास्ट टाइम हम जब आपके आप लोग के पास विकसित भारत का जो विकसित कृषि भारत मिशन में हम लोग जाता था, तो इसी तरह कुछ स्कीम के बारे में स्टेट गवर्नमेंट से जो हमारा पास वो था हॉर्टिकल्चरिस्ट जो हमारा था, उन्होंने बताता था जी न्यू ऑर्चर्ड के लिए कुछ दे रहे हैं, उसके लिए मिनिमम कितना पौधे लगाना है, कितना एरिया है, वो करना पड़ेगा आपको जानकारी।
1: जी रमेश जी, शोभरा से फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच में एक सानवे को बताना चाहूँगा कि ये हमारा कृषि लाइफ फोन इन कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज का विषय रखा गया है कीवी की उन्नत खेती, और फोन कॉल के द्वारा सानवे आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हमारे फ़ोन नंबर रहेंगे 280-81-52, और दूसरा नंबर रहेगा 280-80-34। और अगर आप शिमला के बाहर से फ़ोन करें तो शिमला का एसटीडी कोड 0117 आप जरूर लगाएं। जी डॉक्टर साहब, इस बीच आपसे ये मैं जानना चाहूंगा कि कीवी की किस्मों की जब हम बात कर रहे थे तो इसमें कौन कौन सी अच्छी किस्में रहती हैं?
0: हाँ, मैं पहले बता रहा था आपको, उसी टाइम में फोन कॉल भी आ गया।
1: जी
0: अभी तो पांच किस्में चल रहे हैं,
1: जी
0: पांच किस्में, इसमें जो है हवर्ड है, मोंटी है, एलिसन है, बुनो है, एबॉट है, तो पांच किस्में, ये पांच जो किस्में हैं ये अलग अलग हाइट में जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जैसे कि ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हार्वर्ड वैरायटी चाहिए, क्योंकि इसका ज़्यादा चिलिंग रिक्वायरमेंट जो हम ठंडा तापमान का ज़्यादा जरूरत पड़ता है, तो उसी हिसाब से थोड़ा मंटी रहेगा, बीच में एलिसन रहेगा और एबॉट रहेगा, नीचे वाला में क्षेत्र में बुनो रहेगा,
1: जी
0: तो ये है आपका अलग अलग हाइट के लिए अलग अलग किस्में। लेकिन आजकल फार्मर्स के पास डिमांड आ रहा है गोल्डन कीवी, रेड कीवी,
1: जी
0: तो
1: डॉक्टर साहब,
0: गोल्डन कीवी के लिए न्यूजीलैंड से जेपरी आ गया और रेड कीवी के लिए एंजर रेड।
1: जी डॉक्टर साहब, इस बीच में आपको रोकना चाहूंगा, एक फोन कॉल ले लेते हैं।
0: हाँ जी,
1: हेलो हेलो
3: हेलो,
1: नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी।
1: नमस्कार सर, अपना नाम बताएं आप।
3: मेरा नाम बी एस चौहान है जी।
1: जी कहाँ से बात कर रहे चौहान साहब आप?
3: मैं चायल से बोल रहा हूँ जी।
1: जी क्या जानना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से?
3: हाँ, मैं जानना चाहते ना जी, कीवी के जो पौधे जी,
1: जी डॉक्टर साहब क्या बताएंगे आप?
0: हाँ देखिए, बहुत अच्छा सवाल आप पूछा। एक तो है जो हम टीबर, एक कीवी तो बेल जैसे होते हैं, अंगूर का बेल जैसे होते हैं, ये तो आपको पता होगा ना।
3: जी हाँ जी
0: हाँ, अभी कीवी का जब आप टीबर सिस्टम में पौधे लगाएंगे, ये 6 मीटर बाई 6 मीटर डिस्टेंस में, पौधे टू पौधे डिस्टेंस रहेगा 6 मीटर, और
3: अच्छा जी
0: रो टू रो में जो डिस्टेंस होगा 4 मीटर डिस्टेंस में आप लगाएंगे, ठीक है ना।
3: ठीक है सर जी
0: और बाकी आपको तो पहले ही पता है जो नर पौधे का रेशियो, आप उसी हिसाब से प्लांटिंग करेंगे जी। और ध्यान रखिए जी, टीबर में करेंगे तो ये डिस्टेंस, बाकी में तो आपको थोड़ा डिस्टेंस को अलग से, अलग तरीका से, अलग ट्रेनिंग में करना पड़ेगा, ठीक है
3: ठीक है सर जी, धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत।
0: ना। अच्छा,
1: जी
0: धन्यवाद।
1: चौहान साहब जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नया बगीचा लगाने के लिए किस तरह से जो है रूपरेखा हमारा किसान तैयार कर सकता है।
0: ठीक है, नया बगीचा के लिए का जो भी सिचुएशन फॉलो का बगीचा तैयारी करने के लिए जरूरत पड़ते हैं, पहले तो आपको सबसे पहले मिट्टी का जांच करना चाहिए।
1: जी
0: कोई भी खेती बाड़ी करने के लिए मिट्टी का जांच बहुत जरूरत पड़ता है। और एक चीज़ आपको नया बगीचा जब करेंगे तब एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। आजकल 3 प्रकार का खेती चल रहा है, आपको पता ही है, एक प्राकृतिक खेती, एक है जैविक खेती, और
1: जी
0: एक है रासायनिक खेती। तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए जो आप कौन से खेती करना चाहेंगे,
1: जी
0: ठीक है, क्योंकि तीनों खेती का अलग
1: जी
0: अलग
1: डॉक्टर साहब,
0: इसको।
1: इस बीच एक फोन कॉल ले लेते हैं
0: हाँ जी,
1: जी। हेलो हेलो
2: हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी, अपना नाम बताएं
2: सर, मेरा नाम सनी चौहान है सर।
1: जी, प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से।
2: सर मैं प्रश्न पूछना चाह रहा था कि ये जो रेड कीवी है तो
0: हाँ जी
2: इस को किस कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं हम? लगा सकते हैं, मैं रोडू से बात कर रहा हूँ, 5200 फुट हाई।
1: जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप?
2: हाँ
0: देखिए, अभी इंडिया में मैं क्या बोल रहा हूँ जो आजकल ये सब चीज़ चल रहा है, जो रेड कीवी भी आ रहा है, गोल्डन कीवी भी आ रहा है, ठीक है ना। हम लोग रिकमेंड तभी करते हैं जो बाहर से कोई भी किस्में जब इंडिया में आ जाता है, उसके जो प्रॉपर इवेल्युएशन होता है ना, हमारा ये है शोध कार्य करने के बाद ही हम फार्मर्स के पास देते हैं। तो डायरेक्ट हम लेकर कोई पौधे को नहीं देते हैं, ये ध्यान रखिए। अभी जो आ रहे हैं, जो भी रेड और गोल्डन की भी आ रहे हैं, बाहर से डायरेक्ट फार्मर्स लेकर आ रहे हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर के प्रमाणिक जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने कीवी की उन्नत खेती के बारे में हमारे किसान बागवान भाई बहनों के प्रश्नों के उत्तर दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उन श्रोताओं का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अब मैं अपने सहयोगी कुलदीप के साथ अनुमति चाहूँगा, नमस्कार, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
4: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिले

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
4: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर।

0: अंदाज वही, कुछ अल्फाज है बदले,
1: सौगात नई, कुछ नए तराने,
2: तभी तो दिल ढूंढे आपसे मिलने के बहाने।
0: अब छिड़ेगी हिमगुंजन में लोक

0: गीतों की सुरीली तान
1: गूंजेगा खेल जगत और नॉन फिल्मी गीतों से सारा जहां
2: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला पर आप और हम में दीजिए अपनी राय और सुझाव।
0: सरकारी योजनाओं और नीतियों का कार्यक्रम होगा विकास संवाद।
1: ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी धर्मशाला पर
0: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला, वही आपकी अपनी जानी पहचानी सी रेडियो फ्रिक्वेंसी
2: जो पहुँचे दिल से दिल तक।
3: विद्युत आपूर्ति संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 1-800-180-8060 या 1912।
4: बिजली के खंभों और तारों की कोई समस्या हो
3: या बिजली के बिलों से संबंधित कोई समस्या हो
4: या हो कम या अधिक वोल्टेज की समस्या,
3: टूटी हो सर्विस तार
4: या समस्या हो ट्रांसफार्मर की,
3: विद्युत संबंधी हर तकनीकी समस्या का समाधान होगा टोल फ्री नंबर 1-800-180-8060 या 1912 पर।
4: ये सुविधा IVRS और कॉल सेंटर के माध्यम से उपलब्ध है।
3: हम आपकी सुरक्षा एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सदैव तत्पर हैं।
4: हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा पब्लिक इंटरेक्शन कार्यक्रम के तहत जनहित में जारी।
5: हम आकाशवाणी की धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। 7:45 होने को है। अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय हिमाचल प्रवास के बाद दिल्ली लौटी। राज्यपाल ने प्रदेश में बिताए बहुमूल्य समय के लिए राष्ट्रपति का जताया आभार। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रोहडू व रामपुर विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 15.75 करोड़ रुपए की राशि की जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जोश टीमों का किया शुभारंभ। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने कांग्रेस के प्रदर्शन को सियासी ड्रामा दिया करार, कहा पंचायत चुनावों में जनता ने किया कांग्रेस का सूपड़ा साफ। और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा श्रमिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में ट्रेड यूनियनों की अहम भूमिका। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के बाद आज दिल्ली लौट गई हैं। इस दौरान राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने मनाली स्थित DRDE हेलीपैड पर उन्हें गरिमापूर्ण विदाई दी। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रपति की प्रदेश में उपस्थिति प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का विषय रही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का ये दौरा देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद और हिमाचल की जनता के बीच गहरे व आत्मीय संबंधों की अभिव्यक्ति भी रहा। राज्यपाल ने राष्ट्रपति द्वारा हिमाचल प्रदेश में बिताए गए बहुमूल्य समय के लिए उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के रोहडू और रामपुर विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 15.75 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत इन क्षेत्रों के प्रवास के दौरान भटवाड़ी और काशापाट में स्थानीय लोगों व बच्चों से किए गए वायदों को पूरा करने के लिए ये धनराशि जारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम केवल जनसंवाद का माध्यम ही नहीं बल्कि जन समस्याओं के समाधान और मौके पर किए गए वायदों को धरातल पर उतारने का प्रभावी माध्यम बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं की नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पहले चरण में युवाओं के नेतृत्व में सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने और तपेदिक मुक्त भारत के संदेश को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के उद्देश्य से 11 राज्यों के 55 जिलों में जोश टीमें शुरू की जाएंगी। जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि भारत में तपेदिक के उपचार की दर बढ़कर 92% हो गई है, जो वैश्विक स्तर पर 78% की तुलना में काफी अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वयंसेवकों से स्वच्छता, स्वस्थ जीवन शैली और तंबाकू व नशीले पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया।
7: मैं वॉलंटियर से ये निवेदन करूंगा कि आपने लोगों में भय

समाप्त करने पर बहुत जोर। लोग भय के कारण अपने जांच नहीं कराते, डरते हैं, उस भय से मुक्त करना है। बस उनको लेकर के आना है और उनके थूक का जांच हो जाए इसकी इसको सुनिश्चित करना है, या एक्सरे उनका हो जाए इसकी इसको सुनिश्चित करना है। जितनी स्क्रीनिंग बढ़ेगी उतना ज्यादा हम

0: परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में बात कर रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ भारत के नए सामान्य सिद्धांत के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है और न्यू नॉर्मल तय कर दिया है।
1: ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करे। तीसरा, हम आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
2: दीदी, आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
3: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
2: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
3: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
4: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
6: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
5: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
6: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
5: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
6: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
5: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
6: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
5: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में, भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा कांग्रेस द्वारा चुनाव आयुक्त के खिलाफ किए गए प्रदर्शन को सियासी ड्रामा करार दिया है। हमीरपुर से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की वोट चोरी की असली साजिश प्रदेश की पंचायतों में बेनकाब हो चुकी है और उसका दोहरा चरित्र अब देश व प्रदेश की जनता पूरी तरह जान गई है। राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव बैलेट पेपर से हुए हैं और इसी छोटी संसद में जनता ने राज्य सरकार के 3 साल के रिपोर्ट कार्ड पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर उसे आईना दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिला हमीरपुर में ही जिला परिषद की 19 सीटों में से कांग्रेस केवल एक ही सीट जीत पाई। राजेंद्र राणा ने कहा कि भाजपा ने SIR से देश को निष्पक्ष व्यवस्था दी है और फर्जी वोटर बेनकाब हुए हैं, जो कांग्रेस का वोट बैंक था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब अपनी हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने के बजाय पंचायत चुनावों में मिली हार पर चिंतन करना चाहिए।
7: पूरे देश में और खास तौर पर हिमाचल प्रदेश में जिस कांग्रेस पार्टी वोट चोरी का नारा देके जिस तरीके से नौटंकी कर रही, कुछ महीने पहले हिमाचल प्रदेश में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, 12 जिलों में से 11 जिलों पे भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनका अपना गृह जिला हमीरपुर है, वहाँ 19 जिला परिषद की सीटों में से एक सीट मात्र वो कांग्रेस पार्टी जीत पाई। इसके अलावा 12 जिलों में से 11 जिलों पे जिला के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के बने, तो वहां कहां वोट चोरी हो गई? और दूसरा, SIR को लेकर

0: जिस तरीके से हवाला कर रहे हैं, इससे पहले भी कई बार ऐसा ही हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश में 3.5-4 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी तब इलेक्शन कमीशन ठीक है, तब ईवीएम भी ठीक है।
1: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि श्रम कल्याण बोर्ड के माध्यम से प्रदेश के कामगारों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। घुमारवीं में आज प्रदेश इंटक की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि पात्र श्रमिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में ट्रेड यूनियनों की अहम भूमिका है। राजेश धर्माणी ने कहा कि श्रमिक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके अधिकारों व सामाजिक सुरक्षा का संरक्षण सरकार और श्रमिक संगठनों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय हिमाचल प्रवास के बाद दिल्ली लौटी। राज्यपाल ने प्रदेश में बिताए गए बहुमूल्य समय के लिए राष्ट्रपति का जताया आभार। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रोहडू पर रामपुर विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 15.75 करोड़ रुपए की राशि की जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जोश टीमों का किया शुभारंभ। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने कांग्रेस के प्रदर्शन को सियासी ड्रामा दिया करार, कहा पंचायत चुनावों में जनता ने किया कांग्रेस का सूपड़ा साफ। और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा श्रमिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में ट्रेड यूनियनों की अहम भूमिका। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
2: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले,
3: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण,
2: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
3: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। रोजगार समाचार सुनिए। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार विभाग में एमएलटी यानी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 के 18 पद बैच वाइज आधार पर भरे जाने हैं। ये पद जॉब ट्रेनिंग आधार पर भरे जाएंगे। आवश्यक योग्यताएं इस प्रकार से हैं। आवेदक ने मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10.2 की परीक्षा विज्ञान विषय में उत्तीर्ण की हो। आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थान से बीएससी एमएलटी अथवा बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी या एमएससी मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में डिग्री पूरी की हो। इन योग्यताओं के लिए उम्मीदवार का हिमाचल प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना आवश्यक है। वांछनीय योग्यताओं में आवेदक को हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाजों, रहन सहन और बोलियों का ज्ञान तथा प्रदेश में प्रचलित विशिष्ट परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता होना जरूरी है। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2026 तथा जनजातीय क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए 20 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी आप विभाग की वेबसाइट www.hphealth.nic.in पर प्राप्त कर सकते हैं। कुल पदों की संख्या 18 है, जिनमें सामान्य श्रेणी की 9 पद, सामान्य श्रेणी EWS का 1 पद, सामान्य वर्ग WFF का 1 पद, अनुसूचित जाति के 5 पद तथा अनुसूचित जनजाति के 2 पद भरे जाने हैं। रोजगार समाचार समाप्त हुए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से

हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि की 8 बजे हैं। श्रोताओं, लीजिए अब हम पेश कर रहे हैं आपके लिए विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लीजिए सुनिए अरविंद पाल कौर का गाया हुआ ये गीत।

लक्की अली का गाया हुआ गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अगला गीत इला अरुण की आवाज में।

आलिशा चिनॉय के गाए इस गीत के बाद लीजिए अब सुनिए रूना लैला को। कार्यक्रम है विविध संगीत का सबरस।

0: जसविंदर नरूला और साथियों के गाए इसी गीत के साथ विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस यहीं पर संपन्न होता है।
1: अंदाज वही, कुछ अल्फाज है बदले,
2: सौगात नई, कुछ नए तराने,
3: तभी तो दिल ढूंढे आपसे मिलने के बहाने।
1: अब छिड़ेगी हिमगुंजन में लोक गीतों की सुरीली तान,
2: गूंजेगा खेल जगत और नॉन फिल्मी गीतों से सारा जहान।
3: 103.4 MHz आकाशवाणी धर्मशाला पर आप और हम में दीजिए अपनी राय और सुझाव।
1: सरकारी योजनाओं और नीतियों का कार्यक्रम होगा विकास संवाद।
2: ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी धर्मशाला पर
1: 103.4 MHz आकाशवाणी धर्मशाला, वही आपकी अपनी जानी पहचानी सी रेडियो फ्रिक्वेंसी
3: जो पहुंचे दिल से दिल तक।
0: 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

0: मुकेश और साथियों का गाया हुआ ये था हम हिंदुस्तानी फिल्म से देशभक्ति गीत।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
3: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
2: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: देशभक्ति गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये है देश प्रेमी फिल्म का गीत।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला,

0: टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को है। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार संध्या और 9 बजे News@9 रिले की जाएगी।
2: संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की। कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
3: The council recommended removing arrest powers under GST.
4: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
3: From 25,000 to ₹10,000.
2: कर फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
4: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए के निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
3: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
5: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
2: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया।
5: डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और

0: बल दिया। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी को बिना किसी सीमा के हासिल करना चाहिए। स्केल विदाउट बाउंड्रीज विषय के अंतर्गत इस कार्यक्रम में पॉलिसी, रेगुलेशन, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग से समाज को अधिक लाभ मिलेगा।
1: वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक एक्सटेंसिव स्टडी की गई है, किस तरह से समाज के उन वर्गों को एआई का बेनिफिट मिले जो नॉर्मली टेक्नोलॉजी से वंचित रहते थे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का एक मार्गदर्शन दिया है, उसी भावना के साथ कई ऐसे एग्जाम्पल, जैसे किसानों के लिए एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ है एआई का, जिसमें 40% के आसपास यील्ड बढ़ी है और पानी का उपयोग कम हुआ और साथ ही साथ फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट भी कम हुआ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका तथा वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: पत्र में चिंता व्यक्त की गई है कि भारत के संवैधानिक निकायों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये निहित राजनीतिक स्वार्थों द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत वैध है। उन्होंने बताया कि पिछला SIR लगभग 2 दशक पहले पूरा हुआ था और किसी ने भी उन संशोधनों को साजिश नहीं कहा था। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय ने SIR को वैध और चुनाव आयोग की शक्तियों के दायरे में माना है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे दावों की जांच पड़ताल और पुष्टि किए बिना अटकलों और अनुमानों को बढ़ावा ना दें। पत्र में संवैधानिक निकायों से दृढ़ रहने, पारदर्शिता बनाए रखने और राजनीतिक खींचतान से दूर रहने का आग्रह किया गया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवैधानिक पद पर 25 साल का लगातार कार्यभार लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक रिकॉर्ड है। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 2 दिवसीय नमो बुक फेस्ट को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12-13 वर्ष में दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी के बहुआयामी व्यक्तित्व में काफी दिलचस्पी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि दृष्टिकोण नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों के जरिए किस तरह कार्यान्वित हुआ।
3: वर्ष 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह देश में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के हर स्तर पर समान अवसर और प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे वर्षों से लंबित महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए मिलकर काम करें।
4: आज पंचायतों में, नगरपालिका में, महानगरपालिका बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही, समस्याओं का समाधान कर रही है। बहुत ही सक्षम नेतृत्व

0: दे रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार से राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि इस कानून के जरिए मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने का रास्ता खोल दिया है।
2: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित कर मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह केवल आरक्षण नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व एवं उनके सामर्थ्य पर विश्वास किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
1: नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। यह भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें देश के भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। कनाडा की लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान साहसिक और कल्पनाशील लेखन के लिए मिला है। स्वीडिश एकेडमी ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1,02,00,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: सेंसेक्स 1045 अंक गिरकर 71,593 पर बंद हुआ। निफ्टी 371 अंक लुढ़ककर 22,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ ₹96.79 पर बंद हुआ।
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीम का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
4: मोदी जी ने इस बात की चिंता की है कि हर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को हर महीने ₹1,000 दिए जाएंगे और साथ में खुराक की व्यवस्था दी जाएगी और मुफ्त दवाई दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की। अब हमारा काम यह है कि हम केस को डिटेक्ट करें और उनको दवाई तक पहुंचाएं और उनको दवा भी दिलाएं, खुराक भी दिलाएं। इस बात के लिए हम काम में जुटे। आज हमारे 55 जिलों में लगभग सभी ब्लॉक्स में 11 स्टेट्स में जोश की टीम को ये टास्क दिया गया है।
1: भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गन ने भारतीय पैरा तैराक और खेल जगत की जानी मानी हस्ती पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मुर्गन ने कहा कि सत्येंद्र सिंह का साहस, दृढ़ता और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन का प्रेरणादायक सफर देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की और कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashwani. I am VC Pramod with the news at 9. the headlines. GST Council scraps arrest power of tax officers, raises prosecution threshold to 5 crore from 1 crore rupees, no changes made to GST rates. Prime Minister Narendra Modi says growing use of digital technology makes stronger phone and network security essential, calls for global framework to tackle deepfakes and cyber frauds. Government to release consultation paper on artificial intelligence regulations within next month to ensure AI safety and tackle deepfakes, announces Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnaw. 42 former judges write open letter expressing concern over attempts to undermine Election Commission, judiciary and other constitutional institutions. Canadian poet Anne Carson wins Nobel Prize in Literature for bold and innovative work blending classical tradition with contemporary forms. And in badminton, PV Sindhu sails into women's singles quarterfinal of Arctic Open at Vantaa in Finland. The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi today, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 5 crore rupees to 1 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in the national capital this evening.
6: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crores and reducing the general penalty from 25,000 to rupees 10,000.
5: The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and a proportionate penalty. The finance minister said no changes has been made to GST rates at the meeting and that the rate structure is settled. She said the GST Council has recommended common standards for notices and proceedings.
6: GST Council today has recommended common standards for notices and proceedings and no notices below the prescribed monetary threshold of 10,000 rupees, including withdrawal of pending notices below the said threshold. We will not be issuing any notices for monetary threshold of 10,000 or below.
5: Ms. Sitharaman said the council has also taken steps to facilitate the smoother movement of goods. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that strengthening the security framework has become essential in view of the growing importance of telecom and digital technology. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi today.
7: Aajab telecom aur digital technology ka itna mahatva hai. तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबन करना बहुत आवश्यक है. फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी ये हम सभी की प्राथमिकता है. एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है. जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है.
5: Mr. Modi also highlighted the growing challenges of deep fakes and cyber fraud and called for the development of a global framework to tackle the threat.
7: Deep fakes kitni badi chunauti ban chuki hai ye bhi hum dekh rahe hain, isliye zaruri hai ki hum iske liye ek global framework par kaam kare. Sarkare, technology companies, telecom operators aur financial institutions sabhi ko is framework se judna. मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके.
5: Prime Minister Modi said India's telecom sector is steadily moving towards greater self-reliance. He said the Digital India campaign has been the core of the country's digital transformation, with the mobile phone placed at the center of the initiative to bridge the digital divide and make technology more accessible to all. Mr. Modi said that 5G connectivity has now reached every district of the country. Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnaw has said that the government plans to release a consultation paper on the future regulations of artificial intelligence, AI, within the next month, with a key focus on ensuring AI safety and addressing the growing threat posed by deepfakes. The minister was speaking to media after releasing the World Development Report 2026, titled The Promise of Artificial Intelligence Today.
8: AI ka regulation kis tarah se ho?
9: Decision on how AI regulation can be done in the time to come has been made. In the next month, a consultation paper will be floated on AI safety, cybersecurity, benefits and harms of AI, and benefits of AI to everyone. Protection from harmful things like deepfakes. On the basis of this consultation paper, AI regulation will be formed later. Suggestions from industry regarding AI-based curriculum for students, youth and young people have been received. We have sent it to the Ministry of Education. The Ministry, industry and universities together can upgrade their course curriculum so that students who enter colleges today can benefit from AI.
8: AI ke liye jo benefit mil sakta hai, wo benefit mile.
5: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India recorded exports worth $863 billion last year and aims to achieve $1 trillion in exports this year. The minister said this while addressing the curtain raiser of the 31st CII Partnership Summit in New Delhi today. The summit will be held in Visakhapatnam on the 12th and 13th of next month.
10: In the current year, after a record $863 billion of exports last year, when global growth is slated to come down to under 3%, international trade is expected to be soft. We have set a challenge and decided we will look at $1 trillion of exports in the current year. That's almost 16% growth in a year in which international trade is expected to barely grow by 2.5 or 3%. And we are very confident that the current year will give an upward of 7% growth, maintaining the fastest growing large economy.
5: Ports, Shipping and Waterways Minister Sarbananda Sonowal today said the Cochin Shipyard Limited has received orders to build over 40 ships from the multiple countries including US, Germany and Norway. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Sonowal highlighted that the Indian shipbuilders are earning credibility across the globe in shipbuilding. He said such orders reflect growing confidence of the nations. This is Akashwani giving you the news.
11: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
5: Forty-two former judges have written an open letter to the people of India expressing concern over attempts to undermine the Election Commission, judiciary and other constitutional institutions. In the letter, they have expressed concern that India's constitutional bodies are under sustained attack. They wrote that the Election Commission stands at the center of this and even the higher judiciary and statutory agencies have not been spared. They allege that this is a campaign driven by vested political interests with little regard for potentially devastating consequences of destabilizing the world's largest democracy. The letter highlighted that the special intensive revision of electoral rules is valid under Section 21(3) of the Representation of the People's Act 1950. They appeal to political parties to contest elections and not delegitimize them. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva, Se Desh Seva, and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through initiatives like the Nari Shakti Vandan Adhiniyam.
12: In 2023, Parliament passed the Constitution 106th Amendment Act Nari Shakti Vandan Adhiniyam, marking a historic milestone in its national journey to foster equitable representation of women in public life at all levels of the federal structure. This landmark legislation reserves one-third of all seats for women in the Lok Sabha and state legislative assemblies. In his Independence Day address this year, Prime Minister Narendra Modi appealed to all political parties to end decades of delay and swiftly implement the one-third legislative reservation for women in Parliament and state assemblies.
0: आज पंचायतों में नगर पालिका बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से आग्रह करता हूँ, आइए महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
12: टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज, राज्यसभा एमपी फ्रॉम बिहार धर्मशीला गुप्ता सेड दैट थ्रू दिस एक्ट द मोदी गवर्नमेंट हैज पेव्ड द वे फॉर हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन टू प्ले अ डिसाइसिव रोल इन पॉलिटिकल एंड पॉलिसी मेकिंग प्रोसेसेस।
2: नारी शक्ति वंदन अधिनियम,
13: द नारी शक्ति वंदन अधिनियम इज अ हिस्टोरिक स्टेप अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय एंश्योरिंग 33% रिजर्वेशन इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। द मोदी गवर्नमेंट हैज पेव्ड way for the participation of half of the country's population in politics and policy making.
2: निर्णायक भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया है।
12: The Nari Shakti Vandan Adhiniyam, once implemented, women's representation will rise substantially in the Lok Sabha and state assemblies. It is a decisive step towards empowering India's Nari Shakti with a stronger voice in decision making and a greater role in shaping the nation's future. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
5: India has condemned the attack over the past few days targeting Abha International Airport and King Khalid International Airport in Saudi Arabia's Riyadh, which have resulted in deaths of 3 civilians and injuring 36 others. In a statement, the Ministry of External Affairs said the targeting of civilian infrastructure is completely unacceptable. The 2026 Nobel Prize in Literature has been awarded to Canadian poet and essayist Anne Carson. The Swedish Academy, which announced the prize in Stockholm, said the author was honored for her bold and inventive work that, through a playful dialogue with the classical tradition, has created new norms for contemporary literature. The Nobel Prize in Literature carries a prize money of around $1.2 million. The nation is celebrating the 94th anniversary of Indian Air Force today. Addressing the gathering at Hindon Air Base in Ghaziabad on the occasion, Air Chief Marshal A.P. Singh highlighted the Indian Air Force's growing capabilities while stressing that its true strength lies not merely in advanced equipment and technology, but in its air warriors. On this occasion, the President, Vice President and Prime Minister extended greetings to all air warriors, veterans and their families. Veteran actor Nana Patekar passed away at the age of 75 after suffering a severe cardiac arrest at his residence in Goa this morning. One of India's most acclaimed actors, Patekar was known for his performances across Hindi and Marathi cinema with a career spanning several decades. His notable Hindi movies include Parinda, Praha, The Final Act, Tiranga, Krantivir, Khamoshi, The Musical, Ab Tak Chappan and Welcome. The President, Vice President and Prime Minister have expressed grief at the demise of the veteran actor. Benchmark domestic equity indices extended losses today amid weak global cues. The Sensex tanked 1,045 points to close at 71,593. The Nifty dropped 371 points to settle at 22,232. In badminton, two-time Olympic medalist P.V. Sindhu advanced to the quarterfinals of the women's singles at the Arctic Open Super 500 tournament at Vantaa in Finland today. Sindhu defeated Japan's Riko Gunji 21-15 in the second round. The six-seeded Indian will now face top seed and former world champion Ratnachok Itthanon from Thailand. However, the campaign came to an end for all Indian men's singles players. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. GST Council scraps arrest power of tax officers, raises prosecution threshold to 5 crore from 1 crore rupees. No changes made to GST rates. Prime Minister Narendra Modi says growing use of digital technology makes stronger phone and network security essential. Calls for global framework to tackle deepfakes and cyber frauds. Government to release consultation paper on artificial intelligence regulations within the next month to ensure AI safety and tackle deepfakes. 42 former judges write open letter expressing concern over attempts to undermine election commission, judiciary and other constitutional institutions. Canadian poet Anne Carson wins Nobel Prize in Literature for bold and innovative work blending classical tradition with contemporary forms. And in badminton, PV Sindhu sails into women's singles quarterfinal of Arctic Open at Vantaa in Finland. And that's all in the news at 9. Good night.
14: एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि की 9:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम एक ही कलाकार और एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत फिल्मों से चुनिंदा फिल्मी गीत।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना अभिमान फिल्म का गीत। एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत फिल्म से गीत। अमिताभ बच्चन, जिन्हें सदी का महानायक कहा जाता है, लेकिन इस उपाधि को पाने के लिए उन्होंने सालों का संघर्ष किया है। इनका जन्म हुआ 11 अक्टूबर 1942 में और 1969 में सात हिंदुस्तानी फिल्म से हिंदी सिनेमा में इन्होंने कदम रखा और ये फिल्म खास चली नहीं और फिर 1973 में आई फिल्म जंजीर।

श्रोताओं, आपको बता दें कि 1973 में आई फिल्म जंजीर और इसी फिल्म से वे रातों रात बड़े अभिनेताओं में शामिल हो गए और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दीवार, शोले, अमर अकबर, एंथोनी, डॉन जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया। अमिताभ, जिन्हें बिग बी भी कहा जाता है, जल्द ही 84 साल के होने वाले हैं और आज भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं।

0: एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुन रहे थे अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत फिल्मों से चुनिंदा गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर।
1: अंदाज वही, कुछ अल्फाज है बदले,
2: सौगात नई, कुछ नए तराने,
3: तभी तो दिल ढूंढे आपसे मिलने के बहाने।
1: अब छिड़ेगी हिमगुंजन में लोक गीतों की सुरीली तान,
2: गूंजेगा खेल जगत और नॉन फिल्मी गीतों से सारा जहान।
3: 103.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी धर्मशाला पर आप और हम में दीजिए अपनी राय और सुझाव।
1: सरकारी योजनाओं और नीतियों का कार्यक्रम होगा विकास संवाद।
2: ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी धर्मशाला पर
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी धर्मशाला, वही आपकी अपनी जानी पहचानी सी रेडियो फ्रिक्वेंसी
3: जो पहुंचे दिल से दिल तक।
0: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम रंगे गजल। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गाये गजल के साथ है।

ये खूबसूरत गज़ल आपने सुनी जिसे गाया था गुलाम अली ने। रंगे गज़ल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का गाया हुआ

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाय इस गजल के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं भूपेंद्र और अशोक की गाई हुई ये गजल।

पंकज उदास की गाए इसी गजल के साथ रंगे गजल कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए अब पेश है हिमाचली गीत और लोक गीत। हिमाचली गीत और लोकगीत, इसमें हम सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं करनैल राणा का गाया हुआ ये लोकगीत।

हिमाचली गीत और लोकगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अब सुनिए ओम प्रकाश और साथियों का गाया हुआ ये अगला लोकगीत।

ये लोकगीत आप सुन रहे थे, इसे गाया था वर्षा और साथियों ने। अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं, आवाज़ है सुनील राणा की।

कृष्णलाल सहगल का गाया हुआ ये लोकगीत अभी श्रोता सुन रहे थे। हिमाचली गीत और लोकगीत प्रसारित किए जा रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अब सुनिए विनय अबरोल को, और ये कार्यक्रम का आखिरी लोकगीत है।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीत और लोकगीत। एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में मैं संगीता आपका स्वागत करती हूँ। चित्रपट संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पुरानी फिल्मों से गीत। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं चोरी चोरी फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें हैं।

0: हेमंत कुमार का गाया 20 साल बाद फिल्म का ये गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। गीत और संगीत हेमंत कुमार का था।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
3: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
3: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
2: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
3: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
2: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
3: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई,
3: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
3: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
3: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
2: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
3: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
2: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
3: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम,

0: आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश। लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवा रहे हैं मुकेश और लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत। आर डी बर्मन का संगीत है, फिल्म है फिर कब मिलोगी।

बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

पड़ोसन फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज़ थी और आरडी बर्मन का संगीत। मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, इस फिल्म का गीत लीजिए अब सुनिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, गायक कलाकार हैं किशोर कुमार।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की मिली जुली आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे जीवन मृत्यु फिल्म का गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कार्यक्रम का आखिरी गीत पेश कर रहे हैं दो गुलाब फिल्म से। ये गीत हमने चुना है, आशा भोसले की आवाज़ है, संगीतकार हैं भप्पी लहरी।

0: इसी के साथ चित्रपट संगीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। संगीता को अनुमति दीजिए। नमस्कार, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि की 11 बजने को है अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। पहले हिंदी में समाचार और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
2: The council recommended removing arrest powers under GST.
3: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
2: From 25,000 to ₹10,000.
1: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए

0: में सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका और वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में भारतीय सेना की 94वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने वायु सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वायुसेना दिवस पर देश के सभी बहादुर वायु योद्धाओं को सलाम किया। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको कुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मान्यपली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi today, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 5 crore rupees to 1 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in National Capital this evening.
3: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crore. So prosecution is not going to happen for anything below 1 crore. Till now that's been the threshold. Now it's taken up to 5 crores.
2: The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will Minister said no changes has been made to GST rates at the meeting and that the rate structure is settled. She said the GST Council has recommended common standards for notices and proceedings. Ms. Sitharaman said the Council had also taken steps to facilitate the smoother movement of goods.

मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि की 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। अपनी कल की प्रसारण सभा के साथ प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी।